मीडियम वेव 205.7 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ज और FM 100.1 मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने को है, आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता नेनुआ की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। नेनुआ एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। नेनुआ की खेती संपूर्ण भारत में की जाती है। अपने यहीं भी नेनुआ की खेती दोनों मौसम में की जाती है, एक तो गर्मा मौसम में और बरसात के मौसम में भी इसकी खेती की जाती है। नेनुआ की किस्मों में घिया तुरई प्रमुख है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा यह

0: प्रस्तावित है। किस्म है पूसा चिकनी, 45 दिनों में फूलती है। काली तोरई में पूसा नसदार प्रमुख किस्म है, जो 60 दिन में तैयार होती है, और पंजाब सदाबहार किस्म भी है। काली तोरई में एक द्विलिंगी किस्म भी है, जिसमें सतपुतिया भी कहा जाता है। इसकी बुआई वर्षा ऋतु में जून जुलाई के मौसम में की जाती है। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखें। अधिक फैलने वाली किस्मों के लिए 4 मीटर की दूरी पर पौधों को लगाना चाहिए। एक जगह पर 2 बीजों की आप बुआई करें। सामान्य रूप से 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा और नेत्रजन की आधी मात्रा बोते समय तथा बची हुई नेत्रजन की आधी मात्रा बोने के 1 से 1.5 महीने बाद खड़ी फसल के रूप में जड़ों के पास देनी चाहिए। निकाई करके पौधों के पास से खरपतवार हरदम निकालते रहना चाहिए। वर्षा ऋतु में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में सिंचाई हर 5वें दिन पर करनी चाहिए। फली की छोटी अवस्था में ही तोड़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि फल जब कड़े हो जाते हैं तो उस समय जो है इनकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है और बाजार भाव भी आपको कम मिलते हैं। इस तरह से जो आप नेनुआ की खेती करते हैं तो उस पर कुछ कीड़ों के भी आक्रमण करने की संभावना होती है। कीड़ों में रेड पंपकिन बीटल, एपिलेकना बीटल, माहू, कैटरपिलर और स्टिक बग्स प्रमुख हैं। रेड पंपकिन बीटल जो कीड़ा होता है उसके प्रौढ़ पत्तियों को खाते हैं, अनियमित सुराग उसमें बना देते हैं। लार्वे भूमि में पड़े रहते हैं जो लताओं और फलों को प्रभावित करते हैं, इससे फल जो हैं सूख जाते हैं। इसके लिए आप कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें डिप्टेरिक्स दवा है, इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। और पंपकिन फ्रूट फ्लाई जो है, इस कीड़े की तितलियां फलों में सुराख कर देती हैं, जिससे उनमें सड़न हो जाती है। इसके लिए भी डिप्टेरिक्स दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। माहू कीड़े से आप भलीभांति परिचित हैं। माहू कीड़े रस चूसते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन फसल में इनका ज़्यादा आक्रमण होता है, वर्षाकालीन फसल में कम आक्रमण होता है। कैटरपिलर पत्तियों को खा जाते हैं और पत्तियों की नसों को खा करके जालीनुमा बनावट छोड़ जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए भी कीटनाशक दवाओं का आप प्रयोग करें। पाउडरी मिल्ड्यू सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है। इस बीमारी को रोकने के लिए कैराथेन दवा का आप प्रयोग करें या सल्फर चूर्ण का भुरकाव भी कर सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू रोग में पत्तियों की निचली सतह पर धब्बे पड़ जाते हैं और ये ऊपरी सतह पर भी धब्बे होते हैं, पीले रंग के बन जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आप बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सब्जियों की खेती जो करते हैं उससे आपको लाभ होगा।
1: खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत आपने वार्ता सुनी नेनुआ की खेती। वार्ता करते श्रीनिवास सहाय, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं।

0: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 205.7 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्स और FM 100.1 मेगा हर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।

0: एक बार महात्मा गांधी अपने आश्रम से निकल अपने सहयोगियों के साथ प्रातः भ्रमण में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक जगह गंदगी देखी, किसी ने शौच कर दिया था। गांधी जी रुक गए, थोड़ी मिट्टी उठाकर ले आए और उस गंदगी पर डाल दिया। बाद में वे कहने लगे कि इस गंदगी पर जो मक्खी बैठेगी वह दूर दूर तक गंदगी फैलाएगी, किसी के मुंह पर बैठेगी इससे बीमारी फैलेगी। वे बड़े दुखी हुए। अपने सायंकालीन प्रार्थना सभा में भी उन्होंने इसकी चर्चा की और कहा कि हमें हर हालत में बाहर शौच का सिलसिला बंद करना चाहिए, खासकर महिलाओं को विद्रोह कर देना चाहिए कि वे उस घर में नहीं रहेंगी जहां उन्हें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। गांधी जी की विशेषता थी कि वे जो कहते थे खुद उसे पहले अपने जीवन में उतारते थे। वे सदा कहते थे कि हम जहां रहते हैं उसके और आसपास की सफाई भी हमें करनी चाहिए, इसलिए वे खुद और आश्रमवासियों के साथ शारीरिक श्रम करते, झाड़ू देते थे और शौचालयों की सफाई भी करते थे। आज प्रायः देखा जाता है कि सफाई के मामले में हम में से बहुत लोग लापरवाह हैं। खुद अपने घर की सफाई हम नहीं करते और इसके लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जहां परिवार का प्रत्येक सदस्य सफाई के मामले में जागरूक है वहां उसका घर साफ सुथरा रहता है, और जहां सफाई रहती है वहां बीमारी भी जल्दी नहीं फटकती है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति या परिवार सफाई को लेकर लापरवाह है वहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज्यादा होती है। गांधी जी का कहना था कि हमारा घर ही हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जिस घर में सफाई रहती है वहां समृद्धि भी आती है। समृद्धि केवल धन ही नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा विचार भी समृद्धि की पहचान है। इसलिए उनका यह कहना कि 24 घंटे में कुछ समय में अपने घर आसपास और अड़ोस पड़ोस की सफाई के लिए जरूर निकालना चाहिए। अगर सफाई अभियान सम्मिलित रूप से किया जाए तब वह ज्यादा असरदार होता है। गांधी जी जहां भी जाते थे अपने प्रवचन में जिन बातों की चर्चा करते थे उसमें सफाई भी शामिल होती थी। एक कार्यालय का बड़ा रंग रोगन किया गया। जब उस कार्यालय का निरीक्षण करने बड़े अधिकारी आए तो वह यह देखकर बड़े दुखी हो गए कि इस कार्यालय को रंग रोगन किए गए 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं। सीढ़ी के कोने में पान खाने वालों ने पीक थूक कर गंदा कर दिया है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर पान खाने के शौकीन बाथरूम में लगे हाथ धोने के बेसिन को भी नहीं छोड़ते, वहां भी पीक थूक दिया करते हैं। इस गंदी आदत से सारा माहौल गंदा हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि लोग घर में जमा कूड़े सड़क पर डाल देते हैं। थोड़ी दूर चलकर कूड़ेदान में कूड़ा डालने का कष्ट वे नहीं करते। नतीजा यह कि देखा देखी उनके आसपास के घरों में भी यही होने लगता है। परिणाम सारा मोहल्ला कूड़े की बदबू से परेशान हो जाता है। सड़क पर चलने में भी कठिनाई होने लगती है। अगर थोड़ा कष्ट उठाकर घर का कूड़ा कूड़ेदान में डाला जाए तो ना तो बदबू की समस्या रहेगी और ना गंदगी की। यह भी देखा जाता है कि राह चलते हम खाली डब्बे या पैकेट फेंक देते हैं, केले के छिलके केला खाकर सड़क पर छोड़ देते हैं। कभी कभी इसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं, बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अगर हम साथ में छोटा झोला रखें जिसमें खाली पैकेट या छिलके डालते जाएं और बाद में उन्हें कूड़ेदान में डाल दें तो ये समस्या आए ही नहीं। अब पॉलीथीन के इस्तेमाल से उत्पन्न दुष्परिणामों को ही ले लीजिए। इसके बाद भी हम इसका उपयोग करते जा रहे हैं। पॉलीथीन के उपयोग को रोकने के लिए सरकार कानून बना रही है, लेकिन कानून के पालन की सफलता इसी पर निर्भर है कि हम यह दृढ़ता के साथ फैसला ले लें कि हम किसी भी हालत में इसका उपयोग नहीं करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान का भी यही उद्देश्य है कि सफाई के मामले में हम जागरूक हों।
1: आप सुन रहे थे चिंतन मनन, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आरंभ में सुनिए ये देश वंदना समूह स्वर में।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता मस्तिष्क ज्वर। वार्ताकार हैं डॉक्टर शिशिर कुमार पंजीकार।

एक अत्यंत ही खतरनाक एवं भयावह रोग होता है। इसमें अगर रोगी की जान बच भी जाती है फिर भी इसका कोई न कोई अंग भंग हो ही जाता है। इसकी चर्चा मैं पीछे करूंगा। मस्तिष्क ज्वर के कई कारण होते हैं, इसमें कई प्रकार भी हैं, परंतु मेनिंजाइटिस ही उसका मुख्य कारण माना जाता है। मस्तिष्क के अंदर एक झिल्ली होता है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन होने से सूजन हो जाता है। यह 4 साल के ऊपर के बच्चे को मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन के कारण होता है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को

0: हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक इन्फेक्शन से होता है और 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को निमोकोक की इन्फेक्शन के कारण होता है। मस्तिष्क ज्वर होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे मिडल ईयर इन्फेक्शन, नज़दीक से बात करने या बच्चों को चूमने से यह इन्फेक्शन हो सकता है जिसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। शरीर में चोट लगने, चोट के कारण सिर के अंदर किसी प्रकार का जख्म होने तथा काफ़ी दिनों से सिर के में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने से मस्तिष्क ज्वर हो सकता है। इस रोग के कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर हम सतर्क हो सकते हैं, जैसे तेज ज्वर 102 से 104, इसके साथ हल्का ठंड लगना, सिर दर्द काफ़ी तेज, ऐसा लगता हो कि सिर फट जाएगा, सिर में दर्द पीछे की तरफ शुरू होता है और कभी कभी यह रीढ़ की हड्डी में भी पहुंच जाता है। रोगी कभी बेचैन, काफ़ी बेचैन होता रहता है, लेकिन वह किसी डॉक्टर से इलाज भी कराना नहीं चाहता। रोगी रोशनी देखना नहीं चाहता और अंधकार में भी रहना नहीं चाहता है, रोशनी सामने नहीं पीछे रखना चाहता है। रोगी के हाथ पैर खींचने लगते हैं और कुछ वक्ता बोलता रहता है, गर्दन के पीछे की तरफ ऐंठता रहता है, गर्दन इतना कड़ा हो जाता है कि उसको सीधा करना बहुत ही कठिन हो जाता है, पूरा शरीर काट के समान कड़ा हो जाता है और खींचता रहता है, 3-4 आदमी मिलकर भी उसे स्थिर नहीं कर पाते। से श्वास तेज चलती है, नाड़ी की गति धीमी रहती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आँख की पुतली फैलने लगती है। कई घंटों के बाद आदमी कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने पर आँख की पुतली काफ़ी फैल जाती है, हाथ पैर ढीला पड़ जाता है, सांस तो स्वाभाविक ही रहता है लेकिन नाड़ी की गति धीमी हो जाती है, बुखार तेज बरकरार रहता है और बिछावन पर ही पेशाब और पैखाना हो जाता है। जैसे ही इस रोग की लक्षण दिखाई पड़े, किसी विशिष्ट डॉक्टर से जांच कराएं एवं उनकी सहमति से रोगी को किसी नर्सिंग होम या अस्पताल में भर्ती कराएं और उसे तब तक अस्पताल में रखें जब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ न हो जाए। यह एक संक्रामक बीमारी है, अतः कमजोर लोगों को रोगी से दूर रखना चाहिए। मेनिंजाइटिस और भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के कारण होता है और इसमें बुखार शाम के वक्त बढ़ता है, पर ये उतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि पहले वाले मेनिंजाइटिस हमने बताया। वायरल मेनिंजाइटिस जो है, इसका प्रभाव भी ख़राब होता है और इससे मेनिंजाइटिस में सूजन भी इससे होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है, और इसमें गला का गिल्टी फूला रहता है और लगभग एक समान का ही तरह का ही सिम्टम्स इसमें भी आता है। इससे बचने के लिए कुछ सावधानी बरतना जरूरी है, जैसे सिर में चोट लगे या पुराना कोई जख्म हो या सिर में बार बार दर्द होता हो, डॉक्टर से दिखाना तुरंत जरूरी है। किसी से सट कर बात नहीं करनी चाहिए, बच्चों को गंदी जगह में खेलने से मना करना चाहिए, सूखी जगह पर रहना चाहिए, गीली जगह से परहेज करना चाहिए। कुछ बीमारियों को छोड़कर सभी बीमारियां छूट जाती हैं और मस्तिष्क ज्वर भी ठीक हो जाता है, मगर इस रोग से छुटकारा पाने पर भी कुछ परेशानियां आ जाती हैं, जैसे हाइड्रोसेफेलस, परमानेंट ब्लाइंडनेस, परमानेंट डिफनेस, पागलपन, किसी न किसी प्रकार का सिर दर्द होना, कभी कभी तेज बुखार आने का सिम्टम, अर्थराइटिस, नेफ्राइटिस, निमोनिया इत्यादि। वैसे तो ये बीमारी बहुत खतरनाक होता है, इसलिए होम्योपैथी में इसका इलाज हम लोग करना उचित नहीं समझते हैं। इसके लिए एक अच्छा नर्सिंग होम, विशिष्ट डॉक्टर एवं इक्विप्ड हॉस्पिटल, इसमें रोगी को रखना अनिवार्य होता है। और चूंकि रोगी कोमा में रहता है इसलिए इसमें खतरे का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका एक सबसे बड़ा मुख्य इलाज ये है कि इसके बाद वाले परिस्थिति में जब हाइड्रोसेफलस, ब्लाइंडनेस, परमानेंट डिफनेस, पागलपन या अर्थराइटिस, नेफ्राइटिस, ये सब जो परेशानी बाद में जो लोग भुगतते हैं उससे हम लोग जरूर निजात दिलाते हैं। जैसे हाइड्रोसेफलस है, उसमें माथा बड़ा हो जाता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस है, रोग के होने के बाद बिल्कुल आदमी सुनना बंद कर देता है, तो उसके लिए हम लोग पर्याप्त इलाज करके उसको ठीक कर सकते हैं। परमानेंट डिफनेस है और पागलपन है, किसी न किसी प्रकार का सिर दर्द होना, ये सब जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस इसके बाद आती हैं, या फॉरगेटफुलनेस, ये सब सारी परेशानियों को हम लोग अपनी दवा से ठीक कर सकते हैं। दवाइयां तो इसके लिए बहुत सारी यहाँ हैं और हम लोग सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए सिम्टम्स के आधार पर जो हम लोगों को उचित समझ में जाता है उसको हम लोग देते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति इसका इलाज के लिए जाएं, किसी विशिष्ट होम्योपैथी डॉक्टर से ही इलाज करें, जिनका निबंधन हो, आम आदमी से इलाज न करें।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता मस्तिष्क ज्वर। वार्ताकार थे डॉक्टर शिशिर कुमार पंजीकार। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर।

अगस्त्य मुनि के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण। उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उन्हें भक्ति, वैराग्य अथवा ज्ञान कुछ भी प्राप्त है। चित्रकूट से पंचवटी जाते हुए श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के दर्शन जब मुनि सुतीक्ष्ण को प्राप्त हुए तो अपने आश्रम में ले आकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था कि वे किस प्रकार प्रभु की विनती करें। नील कमल के समान श्री राम का शरीर है, जिस पर मुनियों जैसा वेश और सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है। सुतीक्ष्ण की कामना है कि मोह रूपी वन को भस्म करने वाली आग तथा संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान प्रभु सदा मुनिगण की रक्षा करें। संशय रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए प्रभु गरुड़ हैं। अत्यंत कठोर तर्क से उपजने वाले विषाद का वो परिष्कार करते हैं। यद्यपि उनका निर्मल, व्यापक तथा अविनाशी रूप भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है, फिर भी मुनि सुतीक्ष्ण प्रभु के वनवासी रूप को ही अपने हृदय में बसाना चाहते हैं।

आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान, कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 7 बजे से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम।

प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें आप सुन सकते हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, काव्यांजलि और फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा, कलाकार होंगे श्यामानंद झा। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर लोकगीत का प्रसारण होगा, कलाकार होंगे विश्वेश्वर प्रसाद शर्मा। 10:45 पर आओ साथ चलें समन्वित कार्यक्रम हमारे पटना केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर गुलदस्ता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 12 बजे आप सुनेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। 1 बजे आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग, कलाकार होंगी कविता सिन्हा। 1:30 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण किया जाएगा। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। 3 बजे आप सुन सकते हैं रविंद्र संगीत, कलाकार होंगे चिन्मय चटर्जी। 5 बजे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी आप सुनेंगे, कलाकार होंगे सुनील कुमार। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकते हैं। 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से और 10:30 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, काव्यांजलि और फिल्म संगीत सुनेंगे। तो शुरू करते हैं रसरंग से। भोले शंकर झा की आवाज़ में सुनिए कबीर दास का ये भजन।

0: श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं मौसम का मिजाज। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 10 जून को जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत तथा दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। और पूर्वानुमान की अवधि में 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara with its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer. The horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: अब सुनिए मीराबाई का ये भजन। कलाकार हैं भोले शंकर झा।

0: श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं आज का इतिहास। 1986 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को टेस्ट मैच में पहली बार हराया था। राजा सुहेल देव का विजय दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। 1246 में दिल्ली की गद्दी पर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह आसीन हुए। 1875 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने सहयोगी थॉमस वाटसन के साथ पहली बार टेलीफोन के माध्यम से आवाज़ सफलतापूर्वक प्रसारित की थी। 1983 को मार्गरेट थेचर दूसरी बार ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुनी गई। 1908 में भारतीय सेना के छठे प्रमुख और हैदराबाद राज्य के सैन्य गवर्नर रहे जयंतोनाथ चौधरी का जन्म हुआ। विश्व नेत्रदान दिवस और राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: अब सुनिए सूरदास का ये भजन भोले शंकर झा की आवाज में।

0: श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कार्यक्रम काव्यांजलि। कवि हैं शंकर कुमार दास।
1: कविता है बात सत्तर पार, दो यार सत्तर पार कर रहे परस्पर इजहार, टूटी फूटी प्याली में तो नहीं हुए अब तक शुमार, कितनी दस्तकों पे खुलता घर का द्वार, कैसा है बच्चों का व्यवहार, दोनों ने माना कि सब कुछ ठीक के बावजूद देखभाल के नाम पर टोक टाक और हिदायतों का बड़ा है जो कारोबार, उससे कभी कभी भटक कर पूछता है दम ये कहाँ आ गया, फिर शुगर बीपी आया सूची में, चढ़ा प्रोस्टेट अल्जाइमर डिमेंशिया का रंग भी कूची में, कोलेस्ट्रॉल सहित योग से बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँची, क्या अभी भी कुछ कुछ होता है, क्या अभी भी कुछ कुछ होता है, फूटा चिंतन धार क्या सब कुछ है बस इसी पार, फूटा चिंतन धार क्या सब कुछ है बस इसी

पार एक मत भी नहीं हो सके। वो उम्र उनकी ज्यादा है या कम, बेहतर लगा बना रहे भरम। आश्वस्त हुए हुए कि समय के साथ उनका सूरज अगर झुका है पश्चिम की ओर तो इसमें उनका कोई दोष नहीं, कतई अफसोस भी नहीं कि उन्होंने तो इसी तरह खिलते ढलते मचलते फिसलते देखा है उसे बचपन से ही। दूसरी कविता है हमारा गांव। हमारा गांव अंगद का पांव, न कोई काँव झाँव न उठा पटक, हर साल जन्माष्टमी पर बेहिचक वही द्रौपदी चीरहरण नाटक धकाधक चकाचक। क्योंकि दुर्योधन बनने वाले मुखिया जी का इस पात्र से बेहद लगाव है, क्योंकि दुर्योधन बनने वाले मुखिया जी का इस पात्र से बेहद लगाव है। बचपन की वह बात उसे आज भी याद है। उसे याद है कि दुशासन को लेकर गांव वाले के मन में बसता था बहादुरी का डंका और रहती थी शंका कि इस बार कृष्ण शायद नहीं बढ़ा सके उतनी साड़ियाँ। रहती थी शंका कि इस बार कृष्ण शायद नहीं बढ़ा सके उतनी साड़ियाँ। बहुतेरे दर्शक तो साड़ी घटने की प्रतीक्षा में रहते, आंखें फाड़े मुंह बाए कि शायद मुखिया जी की दया हो तो अब की कुछ नया हो। बहुतेरे दर्शक तो साड़ी घटने की प्रतीक्षा में रहते, आंखें फाड़े मुंह बाए कि शायद मुखिया जी की दया हो तो अब की कुछ नया हो। लंबे अरसे बाद गांव में था, मुखिया जी अब धृतराष्ट्र बन चुके थे, मेरा हम उम्र उनका बेटा अब मुखिया था और दुर्योधन भी। लंबे अरसे बाद गांव में था, मुखिया जी अब धृतराष्ट्र बन चुके थे, मेरा हम उम्र उनका बेटा अब मुखिया था और दुर्योधन भी। मैंने चूहल की यार दुर्योधन, बहुत करा चुके चीरहरण, क्या हर्ज है अब कि वह संभलन जैसा ही कुछ हो। मैंने चूहल की यार दुर्योधन, बहुत करा चुके चीरहरण, क्या हर्ज है अब कि वस्त्र संभलन जैसा कुछ हो। पहले तो मंडली की ओर मुड़कर वह उनकी आंखों में यूं गिरा मानो हूँ मैं कोई सिर फिरा, फिर बगलगीर हो मित्र सरीखा आंख दबाते हुए फुसफुसाया भाया तुम तो निकल लोगे शहर। आंख दबाते हुए फुसफुसाया भाया तुम तो निकल लोगे शहर, मत घोलो मेरी शांत लंका में जहर। अभी तक परिवर्तन नाम की चिड़िया से हैं ये बेखबर, एक बार लगा नहीं स्वाद तो समझो मैं बर्बाद, तुमको मेरी दोस्ती का वास्ता चुपचाप करो नाश्ता। कि अभी तक परिवर्तन नाम की चिड़िया से ये हैं बेखबर, एक बार लगा नहीं स्वाद तो समझो मैं बर्बाद, तुमको मेरी दोस्ती का वास्ता चुपचाप करो नाश्ता, चुपचाप करो नाश्ता। अगली कविता है कुछ ना कहो। कुछ ना कहो कुछ भी नहीं, पट्टे पर चढ़ी क्रिकेट की तरह, यहाँ सब कुछ फिक्स है, अकबकाने वालों के लिए 4 और 6 है, अंपायर ने जब जो कह दिया तो कह दिया, मत जलाओ अपना दिया, कूदना व्यर्थ है इस पचड़े में कि किसने रखी थी आज़ादी तुम्हारे हाथ में। मत जलाओ अपना दिया, कूदना व्यर्थ है इस पचड़े में कि किसने रखी थी आज़ादी तुम्हारे हाथ में। बाप चाचा तक तय कर दियाने जैसी मसालेदार बातों में, वैसे भी सभ्य समाज में दुराग्रह के लिए कोई जगह नहीं कि आज़ाद मुल्क में सत्याग्रह की हो सकती वजह कहें। दरअसल ऐसी बातों से यहाँ की दालों पर अंकित सोने की चिड़िया के पंजों के निशान मिटते हैं, देश लहूलुहान होता है, गंगा जमुनी तहजीब का तिलस्मी आख्यान इतिहास के

0: पंख मत नोचो, सत्य असत्य से ऊपर उठकर सोचो, बनने दो भारत को फिर से विश्व गुरु, बजने दो तुरुरुरु तुरुरुरु की गजट में अपना भगत सिंह। आज भी यदि आतंकवादी है तो इसलिए कि अपना लोकतंत्र अभी बच्चा भी नहीं जच्चा है जी, माँ भो इसकी सुसुपोटी, गोद तो है भरी, छोड़ो भी मस्करी, मत कहो कि घना है कोहरा, वो ऊपर से लाख पारा है तो है। कसम तुम्हें संविधान की, भारत माँ के आन बान शान की, जमे रहो कुछ ना कहो, फिर भी पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ने जैसी लंबी प्रक्रिया का, धैर्य शौर्य तुम्हारे में है तो स्वागत है दोस्त। कुछ ना कहो फिर भी पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ने जैसी लंबी प्रक्रिया का, धैर्य शौर्य तुम्हारे में है तो स्वागत है दोस्त, वरना पिघले नहीं कि वह और बताने को समुद्र में बूंदों की औकात साक्षी है वर्षा, वरना पिघले नहीं कि वह और बताने को समुद्र में बूंदों की औकात साक्षी है वर्षा। अगली कविता है किरदार की वापसी। अनबंधों से बाहर निकल दशकों बाद, आकर मेले में खो गई यादों के रेले में। अनबंधों से बाहर निकल दशकों बाद, आकर मेले में खो गई यादों के रेले में। बचपन और यौवन के मुहाने पर वो सहेलियों संग मत्था जोड़ते हुए फुसफुसाना, खुलना और छोर वैसी बातों का जो खुलकर कहना यही हो सकता। खो गई यादों के रेले में, बचपन और यौवन के मुहाने पर वो सहेलियों संग मत्था जोड़ते हुए फुसफुसाना, खुलना और छोर वैसी बातों का जो खुलकर कहना यही हो सकता। वो बुढ़ा जामलाल भी है कितना सयाना, उसका एक टक घूरना भगवान बचाए। समाज के सफेद पोषों का ऐसा रसीला चरित्र चित्रण होता जिसमें सच्ची झूठी गढ़ी गढ़ाई बातों का मिश्रण, वे दिन ही कुछ और। वो झाल मुड़ी तीखा गोल गप्पा, रोकने के लिए कहना धप्पा, धूप में सने बुढ़िया बाल का आकर्षण जो मांगे मांगे रेस्टोरेंट भी नहीं दे सकते। अरे हाँ, याद आता है आज भी वो काहिया लंपट चूड़ी वाला। अरे हाँ, याद आता है आज भी वो काहिया लंपट चूड़ी वाला जो पहनाने के बहाने पकड़ता जब हाथ, शुरू करता ऐसी ऐसी बात मानो कोई इरादा ही न हो हाथ छोड़ने का, सच कहूँ अच्छा लगता था।
1: आपने काव्यांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत काव्य पाठ सुना। कवि थे शंकर कुमार दास। श्रोताओं, अब बारी है फिल्म संगीत की, तो सुनिए फिल्म दिल का ये गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। गीत समीर के हैं और संगीत रचना आनंद मिलिंद का।

0: श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं रेल सूचना। भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की सूचना। रेलवे स्टेशन भागलपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार, गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से चलकर जयनगर को जाने वाली भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:50 पर अपने सही समय से भागलपुर से जाएगी। गाड़ी संख्या 13016 जमालपुर से चलकर हावड़ा को जाने वाली हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:45 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार से चलकर भागलपुर को आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका भागलपुर आने का सही समय सुबह 8:15 है, ये गाड़ी 40 विलंब से पहुंचने की संभावना है। गाड़ी संख्या 15658 कामाख्या से चलकर दिल्ली को जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल, ये गाड़ी सुबह 8:05 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर से चलकर साहेबगंज को जाने वाली जमालपुर साहेबगंज पैसेंजर, ये गाड़ी सुबह 8:37 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 15648 भागलपुर से चलकर लोकमान तिलक टर्मिनल तक जाने वाली भागलपुर लोकमान तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, जिसका भागलपुर से चलने का सही समय सुबह 8:30 है, ये गाड़ी 3:14 विलंब से जाने की संभावना है। गाड़ी संख्या 13403 रांची से चलकर भागलपुर को आने वाली वनांचल एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9 अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 63431 साहेबगंज से चलकर जमालपुर को जाने वाली साहेबगंज जमालपुर मेमू, ये गाड़ी सुबह 9:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा से चलकर क्यूल को जाने वाली मालदा क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9:35 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13241 बांका से चलकर राजेंद्र नगर को जाने वाली बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 10:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर से चलकर आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 11:55 पर अपने सही समय पर भागलपुर से जाएगी।
1: टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क।

0: रही है।
1: दीवाना फिल्म का गीत सुनिए, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत समीर के हैं और संगीत रचना नदीम श्रवण का।

0: श्रोता, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां। सैन्य खर्च में भारत 5वें स्थान पर, अमेरिका विश्व में पहला। नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने एमए एमएससी का 24 जून तक परीक्षा फॉर्म भरे। बारह साल सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम रहने का रिकॉर्ड। 9013 दिन से सत्ता के शिखर पर रहने वाले एकमात्र नेता बने मोदी। फुटबॉल, ओलिस की हैट्रिक से फ्रांस ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 3-1 से हराया। T20, न्यूजीलैंड की अमेलिया नंबर 1 ऑलराउंडर हरमन टॉप 10 बैटर में। 12 जून से इंग्लैंड में महिला T20 वर्ल्ड कप। 12 टीमों में से निकल सकती है भविष्य की सुपरस्टार खिलाड़ी। पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रही 5 गेम चेंजर खिलाड़ी।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
0: Samir ke likhe geet ko suniye. संगीत रचना है अनु मलिक का। फिल्म है चोरी चोरी चुपके चुपके। आवाज़ जसविंदर नरूला की।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ

0: का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एकदिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
5: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi becomes longest serving elected Prime Minister of India. World leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Giramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who who first took oath as an elected prime minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected prime minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected prime minister in India's history. More details on this from our correspondent.
8: The achievement of Prime Minister Narendra Modi is particularly noteworthy given the scale and complexity of governance in India, a nation of over 1.4 billion people characterized by extraordinary diversity in language, culture, religion and geography. At a time when many countries have witnessed political churn, frequent changes in government and policy uncertainty, India has experienced continuity in leadership and governance. It reflects sustained public trust over three consecutive national mandates in the world's largest democracy. Independent global surveys have consistently ranked Prime Minister Modi among the world's most popular democratic leaders. He has also been conferred with the highest civilian honors of more than 30 countries. Prime Minister Modi's rise from a humble socio-economic background to the highest elected office without the support of a political dynasty is widely seen as an illustration of the opportunities and social mobility offered by India's democratic system. During Prime Minister Modi's tenure, nearly 250 million Indians moved out of multidimensional poverty and people saw rapid expansion of digital public infrastructure, large-scale infrastructure development, improvements in welfare delivery and broad-based socio-economic progress. During this period, India has strengthened its position as the world's fastest growing major economy, concluded major trade agreements with leading economies and emerged as a more influential voice on global issues including development, technology, climate action and the priorities of the global south. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
7: World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister of the country. We have a report.
9: World leaders have hailed Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anuradha Kumar Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. He also highlighted India's remarkable economic and social transformation and noted that Prime Minister Modi's vision has inspired many beyond India's borders, including Sri Lanka. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in a personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership.
10: Hello and greetings from Papua New Guinea to my friend Prime Minister Modi. Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous Prime Minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving Prime Minister of India. India remains a friend of Papua New Guinea. You personally have come here. I give respect to you as a senior leader of the Global South, and I am happy that you've now a whole record as the longest serving Prime Minister of India.
9: Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, also highlighted Prime Minister Modi's journey from humble beginnings to leading a nation of 1.4 billion people across three terms and underscored India's significant achievements in foreign policy, economic growth, infrastructure and socio-economic development. With Anupam and Rishu's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
7: A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. Our correspondent has more details on the meeting.
11: All constituents of the alliance beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
7: The centre has unveiled 1.25 lakh crore rupees push for rural development in the country. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan said that the central government has already allocated 30,000 crore rupees under MG Narega. He said in addition to this, an interim allocation of 95,692 crore rupees has been released to states and union territories. With this, the total allocation will exceed 1.25 lakh crore rupees.

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भारत के ऐसे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जो इस ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम देते रहे हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 13 मई 1952 को एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर रहते हुए खिदमात अंजाम दी। पंडित नेहरू की एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात की मुद्दत 4398 दिन रही। 26 मई 2014 से आज यानी 10 जून 2026 तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की लगातार मुद्दत-ए-कार 4399 दिन हो गई है। इस तरह वो भारत की तारीख में एक ऐसे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जो अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर भारत में जहां 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है और जहां जबान, सकाफत, मजहब और जोग्राफिये में गैर मामूली तनव पाया जाता है, हुक्मरानी के पैमाने और पेचीदगी पर नजर डाली जाए तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये एक काबिल जिक्र हसूलियाबी है। एक ऐसे वक्त जब बहुत से मुल्कों में सियासी उथल पुथल, हुकूमत में बार बार तब्दीलियां और सियासी गैर यकीनी पाई जाती है, भारत में क़यादत और हुक्मरानी में तसलसल पाया जाता है। दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत में आवाम की तरफ से लगातार 3 बार हिमायत दिए जाने से इस पर आवाम के एतमाद का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आजादाना तौर पर कराए गए आलमी जायजों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दुनिया के मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमाओं में लगातार शुमार किया जाता रहा है। उन्हें 30 से ज्यादा मुल्कों के सबसे ज्यादा शहरी एजाजात से भी नवाजा गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का एक मामूली समाजी और इक्तसादी पसमंजर से उठकर किसी मुंतखब आला तरीन ओहदे पर फाइज हो जाना, जबकि खानदानी तौर पर उनका कोई सियासी पसमंजर भी नहीं है, किसी करिश्मे से कम नहीं, और ये भारत जैसी किसी बड़ी जमहूरियत में ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुद्दत-ए-कार के दौरान तकरीबन 25 करोड़ भारतीय अफराद गुरबत के दायरे से बाहर निकले और लोगों ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की तौसी, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की, फलाही खिदमात में बेहतरी और एक वसी बुनियाद वाली समाजी और इकतसादी तरक्की का नज़ारा किया। इस अरसे में भारत ने दुनिया की तेज तरीन तरक्की वाली बड़ी मईशत के तौर पर इस्तेहकाम हासिल किया। सरकर्दा मईशतों के साथ बड़े तजारती समझौते किए और वो आलमी मामलात पर मजीद मुअसर आवाज बनकर उभरा, जिसमें तरक्की, टेक्नोलॉजी, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और आलमी जुनूब की तरजीहात भी शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भारत का सबसे तवील अरसे तक एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी, आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत और सबकी शमूलियत वाले और इक्तसादी तौर पर फ़ाल भारत की उनकी दूरअंदेशी को खिराज तहसीन पेश किया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने एक खत में कहा है कि ये हुसूलियाबी न सिर्फ जनाब मोदी के कई साल तक ओहदे पर रहने का नतीजा है, बल्कि उस भरोसे और एतमाद का भी इजहार है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अवाम ने उनकी क़यादत के तई जाहिर किया है। उन्होंने भारत की काबिले जिक्र इक्तसादी और समाजी तब्दीली का भी खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दूरअंदेशी से बहुत से लोगों को भारत की सरहदों के पार तहरीक हासिल हुई है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मरापे ने एक जाती वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक मिसाली शख्सियत और क़यादत की मिसाली शख्सियत करार दिया है। उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुरबत के दायरे से बाहर निकालकर उन्हें अच्छी जिंदगी बख्शे जाने को एक हैरत अंगेज कारनामा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म मरापे ने पापुआ न्यू गिनी की तरफ से गर्मजोशी और दोस्ती का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि दोतरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इसके अलावा ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की वज़ीर-ए-आज़म कमला प्रसाद डिसेसन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में भारत आलमी मामलात में एक कायदाना आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के एक मामूली पसमंजर से शुरू होने वाले सफर से

0: तीन लगातार मुद्दतों तक 1 अरब 40 करोड़ लोगों के एक मुल्क की क्यादत करने को उजागर किया और गैर मुल्की पॉलिसी, इक्तिसादी तरक्की, बुनियादी ढांचे और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के मैदानों में भारत की इन अहम हुसूलियाबियों का जिक्र किया। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबी मुल्क की आजादी के बाद की तारीख में एक अहम लम्हा है। साबिक सदर जमहूरिया ने एक रोजनामे में लिखे गए एक मजमून में अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि 2014 की अब तक की मुद्दत में हुक्मरानी, सियासत और अवामी बहस में हिंदुस्तानियत की जानिब एक फैसला कुन तब्दीली देखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम मोदी ने भारत की तहजीबी विरासत की शान में इजाफा किया है, उन्होंने जमहूरी रिवायात को उजागर किया है और कौमी इदारों में अवामी एतमाद को मुस्तहकम बनाया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने वजीर आजम मोदी को उनकी हुसूलियाबी पर मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ओहदे पर रहने की ये मुद्दत कार महज वक्त की पैमाइश नहीं है बल्कि इससे मुद्दत के तरक्याती सफर में यकसर तब्दीली लाने वाले दौर की अक्कासी होती है। जनाब राधा कृष्णन ने यह भी कहा कि जिस तरह अब्राहम लिंकन ने गुलामी की जंजीरों से लाखों लोगों को आजाद कराया था, हालिया दिनों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को शदीद गुर्बत के शिकंजे से बाहर निकालकर लाखों कुनबों को सबकी शमूलियत वाली तरक्की, उम्मीद, मौके और वकार बख्शा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आजाद भारत के सबसे तवील अरसे तक मुसलसल मुंतखब होने वाले वजीर आजम बनने पर साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि ये कामयाबी काफी अहम है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सियासी मुसाबकत, मखलूत हुकूमत की सूरत हाल और मीडिया की मुसलसल जांच पड़ताल के दरमियान हासिल हुई है। एक अंग्रेजी रोजनामे में अपने मजमून में जनाब नायडू ने स्वच्छ भारत, गरीबों के लिए मकानात, जनधन खातों, फवायद की बराह रास्त मुंतकली, UPI अदायगी और आयुष्मान का सहरा नरेंद्र मोदी की क्यादत के सर बांधा। आज नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की एक मीटिंग मुनाकिद होगी। ये मीटिंग हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम मोदी के भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम बनने का जश्न मनाने के लिए मुनाकिद की जा रही है। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: इस मीटिंग में इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टियों और वजीर आजम समेत BJP की आला क्यादत के शामिल होने की तवक्को है। NDA की मीटिंग में इत्तेहाद की हुक्मरानी वाली तमाम 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला और तमाम इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रामों और मोदी हुकूमत के 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील करने के विजन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकज ने मुल्क में देही तरक्की को आगे बढ़ाने के मकसद से 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने MGNREGA के तहत 30,000 करोड़ रुपए पहले से ही मुख्तस किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस रकम के अलावा रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 95,692 करोड़ रुपए की एक अबूरी रकम जारी की गई है। इसके साथ ही कुल रकम 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। जनाब चौहान ने ये बात रियासती देही तरक्की के वजीरों की एक वर्चुअल मीटिंग की सदारत के बाद कही। ये मीटिंग विकसित भारत GRAMJI पर अमल दरामद के बारे में थी। मुल्क में इस कानून का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के शोभा अहम शोभों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की।

तभी उभरा था एक प्रकाश स्तंभ जो आज भी वैसा ही खड़ा है जैसा तब था। काल के थपेड़ों में कभी डूबा कभी उतराया, पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूल मंत्र कभी न छोड़ पाया। जन जन से जोड़ा खुद को, बना प्रथम व्यक्ति से अंतिम।

दशकों तक फैली इस अद्भुत संस्था की अद्भुत यात्रा के कुछ लम्हों, कुछ पलों और एक छोटे से पड़ाव का साक्षी बना अदना बौना समय जन जन की वाणी इस महती महान आकाशवाणी को उसकी 90वीं जयंती पर करता हूँ शत शत नमन और अविरल वंदन। प्रार्थना है कि स्वीकार हो। शिवेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व सहायक निदेशक, आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व नेताओं ने श्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बीते 12 वर्षों में बिहार समृद्ध हुआ, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आगे भी जारी रहेगी विकास यात्रा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयास और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बिहार समृद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को लिखे एक पत्र में श्री चौधरी ने कहा कि राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ही संभव हुई है। मुख्यमंत्री ने श्री मोदी को 12 साल की स्वर्णिम कार्यकाल की बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी बिहार को उनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्र भारत के दीर्घकालीन प्रधानमंत्री होने का कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि करोड़ों देशवासियों के विश्वास की जीत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक

0: गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों और आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा एनडीए के सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। बिहार समेत एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी इसमें भाग लेंगे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर सरकार की भावी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के बीच समन्वय को और मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी विचार होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम जी राम जी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गाँव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी के तहत प्रदेश के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए अकुशल मजदूरी मद में राज्य सरकार ने 1,890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इधर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए डाक विभाग के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के विशेष विमानों से प्रश्न पत्रों को स्टेट हब तक सुरक्षित लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 34 जिलों के 35 शहरों में स्थित 331 परीक्षा केंद्रों पर 1,56,061 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं आर्थिक अपराध इकाई ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए छात्रों से अपील की है कि प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र उपलब्ध कराने के लिए कोई फोन, सोशल मीडिया या ईमेल से संदेश मिले तो तत्काल इसकी सूचना ईओयू या नजदीकी पुलिस थाने को दें। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान अररिया, कटिहार, किशनगंज,

0: मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान इन स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं दरभंगा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में भी आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही पटना, नालंदा और गया समेत दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में भी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार में कई स्थानों पर तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कटिहार जिले की मघेली पंचायत के ग्यारिका गांव में बारिश के दौरान एक घर पर पीपल का पेड़ गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला और चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में 1100 रुपये मासिक पेंशन की राशि भेजेंगे। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता भी उपस्थित रहेंगी। बिहार बोर्ड ने सत्र 2026-27 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण में विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी को अनिवार्य कर दिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक नवीन कुमार ने बताया कि सभी स्कूलों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने 30 जून तक सभी विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी निर्माण का लक्ष्य तय किया है। नई दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत द्वारा उनकी सजा पर सुनवाई 3 जुलाई को होगी। श्री सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। इससे पहले उनकी सजा पर सुनवाई 9 जून को निर्धारित थी। पटना स्थित एएन कॉलेज के पास हुए मैनहोल हादसे में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुटको ने संबंधित कार्य एजेंसी पर 2,01,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस हादसे में एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर स्थित एक निजी अस्पताल में पिछले दिनों हुए अग्निकांड मामले में बंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर सरकारी सेवा में रहते हुए निजी अस्पताल में काम करने का आरोप है। पटना जिले के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 15 किलो मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं किशनगंज जिले के कुरलीकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मकांटा चौक स्थित एक कबाड़खाने में छापेमारी कर पुलिस ने 70 लाख रुपए मूल्य की हेरोइन के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी दीपक कुमार की कल इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जेल के अंदर कैदी के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार में 30 दिन के अंदर उद्योग लगाने की मिलेगी स्वीकृति। दैनिक जागरण लिखता है, देश की सबसे बड़ी जोजिला सुरंग के मिले दोनों छोर। दैनिक भास्कर की खास खबर है, दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर बनेगा पटना रिंग रोड, इसके 8वें और अंतिम हिस्से दिघवारा से सराय को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। प्रभात खबर ने खेल की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, फुटबॉल का वर्ल्ड वार, कल से शुरू होगा फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ फीफा विश्व कप। आज अखबार की सुर्खी है, फतुहा में अमूल लगाएगी 200 करोड़ की डेयरी प्रसंस्करण इकाई, 200 लोगों को मिलेगा रोजगार। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार में स्कूल कॉलेज के समय नहीं चलेंगी कोचिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व नेताओं ने श्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बीते 12 वर्षों में बिहार समृद्ध हुआ, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आगे भी जारी रहेगी विकास यात्रा।

0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
2: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
1: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
2: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
1: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार। स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: देखिए, जब मैं बचपन में सुना करता था रेडियो और जब मुखिया जी और गीता बहन का कार्यक्रम आता था तो हम लोगों में उत्सुकता रहती थी। गांव के चौपाल पर बैठ के हम जब सुनते थे तो लगता था कि हमारे बगल में ही कोई बैठ करके यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है और बड़ा ही आकर्षण का केंद्र रहता था। और जब समाचार आते हैं, जो शाम का समाचार हो, सुबह का समाचार हो, दोपहर का समाचार हो, ये समाचार की उत्सुकता हम लोगों में रहती थी कि रेडियो की तरफ से क्या हो रहा है। जब राजनीति में आए तो राजनीति में जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते थे तो हम लोगों का पहला फोकस होता था कि आकाशवाणी से हमारा न्यूज प्रसारित हो रहा है कि नहीं। और जब आकाशवाणी से हमारा न्यूज प्रसारित होता था तो दूसरे दूसरे जगह जो हमको जानने वाले लोग हैं वो फोन करके कहते थे कि आज रेडियो पर आपका नाम आया है। और सच पूछिए, आज तो इतने नाम आते हैं कि आज उसकी बहुत कौतूहल मन में नहीं रहता है, लेकिन एक समय था जब रेडियो पर नाम आता था तो रोमांच बढ़ जाता था। और आज चूंकि डिजिटल मीडिया का जमाना है और इस डिजिटल मीडिया के जमाने में भी अभी भी आकाशवाणी बहुत प्रासंगिक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के लिए अगर किसी एक चीज को चुना तो आकाशवाणी को चुना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में देश के करोड़ों लोग जुड़ते हैं और करोड़ों लोग जुड़ते हैं तो वह कार्यक्रम पूरा ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है जो कभी हम लोगों ने न सोचा होगा न सुना होगा। हम सबको इंतजार रहता है हर महीने के अंतिम रविवार 11 बजे दिन का, जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात आकाशवाणी पर हो। इसके लिए तो हम आकाशवाणी परिवार को और भी बधाई देना चाहेंगे और 90 साल में तो बधाई स्पेशल होगी। जब 8 जून को आपका 90 वर्ष पूरा होगा तो आपके लिए बधाइयों का अंबार चलेगा। पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग आपको बधाई देंगे।
0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आरंभ में सुनिए फिल्म चक दे इंडिया का ये गीत कृष्णा और सलीम मर्चेंट की आवाज़ों में। गीत जयदीप साहनी के हैं और संगीत सलीम सुलेमान का।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
2: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: दुश्मन फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
2: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
4: बाजीगर फिल्म का गीत सुनिए, आशा भोसले और विनोद राठौड की आवाजों में। गीत लिखा है रानी मलिक ने और संगीत रचना है अनु मलिक का।

सुन रहे थे कार्यक्रम नगमे नए पुराने, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं श्यामानंद झा। इनकी आवाज में सुनिए मीराबाई का ये भजन।

सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे श्यामानंद झा, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आरंभ में सुनिए फिल्म बैराग का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: बाजार फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है मीर ताकी मीर ने और संगीत रचना है खय्याम का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: ब्रह्मचारी फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
6: छोटी सी बात, फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है योगेश ने और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
6: मजरूह के लिखे गीत को सुनिए, संगीत रचना है मदन मोहन का, फिल्म है चिराग, आवाज मोहम्मद रफी की।

सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। पेश है लोकगीत, कलाकार हैं विशेश्वर प्रसाद शर्मा। इनकी आवाज में सुनिए ये लोक भजन।

धुन करे पायल छुम छुम करी करी दिल करे घायल छुम छुम करी करी दिल करे घायल देखी चान लजली आसमान देखी चान लजली आसमान राधी के छम छम छम बेटा कान्हा बसुरिया के तान।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara with its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer. The horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
2: क्रेश
3: क्रेश
1: और बाल्टी बॉय
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रेश ट्रेश और बाल्टी बॉय
5: अब सुनिए पूर्वी कलाकार हैं विश्वेश्वर प्रसाद शर्मा

आप सुन रहे थे लोकगीत, कलाकार थे विश्वेश्वर प्रसाद शर्मा, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आओ साथ चलें कार्यक्रम हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आज का विषय है बिहार की बौद्धिक विरासत। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम, आओ साथ चलें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोता, जब हम ज्ञान, दर्शन, चिंतन और बौद्धिक चेतना की बात करते हैं तो भारत के नक्शे पर एक ऐसा प्रदेश उभर कर आता है जिसे न केवल देश को बल्कि

बिहार, यह सिर्फ दो अक्षरों का नाम नहीं या फिर एक राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं है। यह नाम इतिहास के पन्नों पर ज्ञान की स्याही से लिखा गया एक अमर दस्तावेज है। बिहार शब्द की उत्पत्ति ही विहार से हुई है, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना, रुकना।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का सबसे पहला और मजबूत स्तंभ है यहाँ का आध्यात्मिक दर्शन। ये वो भूमि है जहां विचारों की स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आज से लगभग 2500 साल पहले जब दुनिया रूढ़ियों में उलझी जकड़ी हुई थी, तब इसी बिहार की धरती पर दो महापुरुषों का अवतरण हुआ जिन्होंने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। महात्मा बुद्ध, जो ज्ञान की खोज में कपिलवस्तु से निकले और उन्हें परम ज्ञान यानी बोधत्व की प्राप्ति कहां हुई? आप जानते हैं, बिहार के ही गया जी में, यानी बोध गया में। निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे जब सिद्धार्थ को ज्ञान मिला तो वो बुद्ध कहलाए। यह मानो बुद्धि और विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी। बुद्ध ने कहा, आप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। यह बौद्धिक आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा संदेश था।

ठीक इसी दौर में इसी भूमि पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का संदेश भी गूंजा। वैशाली की पावन धरती पर जन्मे महावीर ने स्यादवाद और अनिकांतवाद का दर्शन दिया। अनिकांतवाद का सीधा संबंध हमारी बौद्धिक सहिष्णुता से है। यह दर्शन सिखाता है किसी भी सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। सोचिए, आज की आधुनिक दुनिया जिसे टॉलरेंस या सहिष्णुता कहती हैं, उसकी नींव सदियों पहले इसी बिहार की बौद्धिक चेतना ने रख दी थी।

और केवल यही नहीं, जनकपुर और मिथिला का क्षेत्र याद कीजिए, राजा जनक की सभा जहां शास्त्रार्थ की परंपरा थी, जहां याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे मनीषी उठते थे। गार्गी जो नारी चेतना और अगाध विद्वता का प्रतीक बनी, जिन्होंने भरे दरबार में उस समय के सबसे बड़े विद्वान को चुनौती दी थी। यह प्रमाण है कि बिहार की बौद्धिक समृद्धि में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही प्राचीन है जितना कि हमारा इतिहास।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का जिक्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम दुनिया के सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की बात ना कर लें। एक दौर था जब दुनिया के कोने कोने से, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया से लोग यहां पढ़ने आते थे, और भारत में ज्ञान का वह महाकेंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। पांचवीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक इमारत भर नहीं था, वह ज्ञान का एक जीवंत समंदर था। 9 मंजिला पुस्तकालय जिसका नाम धर्मगंज था और जिसमें रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक जैसे खंड थे। कहते हैं कि जब इस पुस्तकालय में आग लगी तो किताबें महीनों तक जलती रहीं। सोचिए कितना आगाध ज्ञान संचित रहा होगा वहां। नालंदा की विशेषता क्या थी? वहां की प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि द्वारपाल, यानी जिसे आज हम गेटकीपर कहते हैं, वे ही छात्रों की परीक्षा ले लेता था, और केवल तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्र ही अंदर प्रवेश पा सकते थे। ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपनी डायरी में नालंदा के इस बौद्धिक स्तर की जो तारीफ की है, उसे पढ़कर आज भी हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और केवल नालंदा ही क्यों, भागलपुर के पास स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, वज्रयान, बौद्ध धर्म और दर्शन का यह बहुत बड़ा केंद्र था। इसके अलावा उदंतपुरी और जगदल जैसे शिक्षा केंद्र भी इसी बिहार की मिट्टी पर फले फूले। ये विश्वविद्यालय इन बातों के सबूत हैं कि बिहार केवल खेती किसानी का प्रदेश नहीं रहा है, यह दुनिया का बौद्धिक पावर हाउस था।

और आइए अब बात करते हैं विज्ञान और गणित की। जब हम शून्य यानी जीरो की बात करते हैं तो पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, और भारत में इसी शून्य को देने वाले गणित और खगोल विज्ञान के महानायक आर्यभट्ट की कर भूमि भी रही है। पटना के पास तारेगना में उनकी वेधशाला थी, जहां बैठकर उन्होंने तारों और नक्षत्रों की गणना की थी। उन्होंने बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के यह बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह बिहार की वैज्ञानिक सोच की पराकाष्ठा थी। और अब चलते हैं राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य यानी कौटिल्य जैसा मस्तिष्क पैदा किया। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक मार्गदर्शिका है। एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को उठाकर सम्राट बना देना, एक अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करना, ये चाणक्य की बौद्धिक कूटनीति का ही परिणाम था।

0: और थोड़ी बात कर लेते हैं साहित्य के। साहित्य के क्षेत्र में भी बिहार का योगदान अद्वितीय रहा है। आधुनिक काल में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी को कौन भूल सकता है भला। कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल लिखकर हिंदी साहित्य की आंचलिकता को एक नई दिशा दी। राम वृक्ष बेनीपुरे, बाबा नागार्जुन और उर्दू अदब में बिस्मिल अजीमाबादी, जिनका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ा देता है। यह सब बिहार की उसी बौद्धिक उर्वरता की ही देन है। श्रोता, इतिहास गवाह है कि बिहार ने जब जब अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे वह प्राचीन काल का ज्ञान हो, मध्यकाल की सूफी संत परंपरा हो, या आधुनिक काल में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जहां बिहार की जनता ने गांधी जी को महात्मा बनाने की वैचारिक और नैतिक जमीन तैयार करके दी। आज बदलते हुए दौर में जब हम 21वीं सदी के तकनीक युग में जी रहे हैं, तब भी बिहार के युवाओं का बौद्धिक कौशल देश विदेश में अपनी चमक बिखेर रहा है। देश के सबसे कठिन प्रशासनिक परीक्षाओं यूपीएससी से लेकर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्रों तक बिहार के मेधावी छात्र अपनी बौद्धिक विरासत का परचम लहरा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने इस गौरवशाली अतीत को सिर्फ याद ना करें, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर एक बार फिर से बिहार को ज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प लें। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि बिहार की मिट्टी में एक
1: आप सुन रहे थे समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चलें। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है नई फिल्मों से कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म बॉर्डर 2 से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम, पलक मुच्छल। गीत रचना जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर की है। संगीतकार हैं अनु मलिक और मिथुन। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे थे धड़क टू फिल्म का गीत जुबिन नौटियाल एवं सुवर्णा तिवारी के स्वर में। गीतकार थे ओजील दलाल और संगीतकार तनिष्क बागची। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ऋचा शर्मा और जावेद अली के स्वर में। गीत रचना मनोज मुंतशिर की है, संगीतकार हैं AR रहमान और फिल्म है मैदान।

0: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से. कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हनी बनी और सागर के स्वर में. गीत रचना सागर की है, संगीतकार हैं हनी बनी और फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस माही.

मिथुन के स्वर में कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति फिल्म है क्रैक। गीतकार मनोज मुंतशिर और संगीतकार हैं मिथुन।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

नमस्कार दोस्तों, आज के गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुलदस्ता। दोस्तों, आज जो कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे वो एक बहुत ही अहम विषय हमने आप सबों से बातचीत करने के लिए चुना है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में है जो विषय है वो है एक ऐसा खास और अहम मुद्दा जो भर सकता है किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी, जिसके माध्यम से हम किसी के अंधकारमय जीवन को प्रकाशवान बना सकते हैं, किसी के सूनी आँखों में सपने भर सकते हैं, किसी के जीवन को इतना खुशहाल बना सकते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, किसी के नेत्र की ज्योति को लौटाकर उनका जीवन प्रकाश से भर सकना कितना ही नेक काम होगा मित्रों, और हम ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर आप सबों से बातचीत करने वाले हैं, जो कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि नेत्रदान महादान है, और आज 10 जून को विश्व मना रहा है विश्व नेत्रदान दिवस। हर साल दुनिया भर में हजारों लोग इलाज योग्य अंधापन से पीड़ित होते हैं, जिसका एक ही कारण है दान किए गए कॉर्निया की कमी। इस वर्ष भी 10 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग इस दिन के बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए हमारे मन में ये बात आई कि क्यों ना आज इसी विषय पर हम आप सबों से बातचीत करें, और इससे होगा ये कि आपको नेत्रदान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाएंगी, और इस जागरूकता भी फैलेगी कि जब किसी की आँखें किसी को वैसे किसी व्यक्ति के बारे में जब हम सोचते हैं कि वो देख नहीं पा रहा है, या फिर अपने ही बारे में आप सोच लीजिए दोस्तों कि आप अगर कुछ सेकेंड के लिए अगर हमारी आंखें बंद होती है या हम किसी कारणवश देख नहीं पाते हैं तो किस तरह से हमारा मन व्याकुल होता है। उसी तरह आप दूसरे के बारे में सोचिए मित्रों कि कितना अंधकार में उनका जीवन होता होगा, उनकी इच्छाएं लगभग मर चुकी होती होंगी, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं तो उसे महसूस करना, उसके बारे में जानना, उसको परखना कितना मुश्किल होता होगा, और अगर हम किसी के नेत्र की ज्योति को उन्हें लौटा सकें तो इससे अच्छा कोई काम तो हो ही नहीं सकता मित्रों। दोस्तों, हम नेत्रदान की प्रक्रिया के बारे में आज के कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से कोई व्यक्ति अपनी आँखें दान करने के लिए किस तरह की योग्यता रखता है, और किस तरह से कोई व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। और दोस्तों, इस चर्चा को हम आगे तो बढ़ाएंगे क्योंकि नेत्रदान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अभी भी हमारे बीच में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है कि नेत्रदान करने से जो किस तरह की भ्रांतियां हमारे समाज में हैं उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं होती बल्कि हमारे भावनाओं, सपनों और जीवन की सुंदरता को महसूस करने का रास्ता भी होता है। तो दोस्तों, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी के आँखों की रोशनी को लौटा सकें, किसी को इस खूबसूरत दुनिया का दीदार करा सकें, और जब एक एक व्यक्ति हौसला रखकर इस विषय को बहुत ही गंभीरता से समाज में रखेगा और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा मित्रों जब हमारी कॉर्निया हमारे
इस दुनिया में नहीं रहने के बाद भी हमारी इस दुनिया को, इस खूबसूरत सृष्टि को देख पाएगी। तो वो कितना सुखद अनुभव होगा कि आप इस जहाँ में रहें ना रहें, लेकिन आपकी आँखें सदा इस संसार को देखती रहेगी। इससे अच्छा अनुभव, इससे खूबसूरत एहसास और कुछ हो ही नहीं सकता है मित्रों।

दोस्तों, हम मृत्यु के बाद अपनी आँखों के कॉर्निया का दान कर सकते हैं। यह कॉर्निया किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जा सकता है, जिससे उस व्यक्ति के अंधकारमय जीवन को प्रकाश से भरा जा सकता है। दोस्तों, ये कितना नेक काम है जिसके बारे में हम आज बातें कर रहे हैं। नेत्र दान करना एक बेहद ही सुखद अनुभव है मित्रों। जब हम किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को उसकी दृष्टि वापस करा दें, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नेत्रदान करने से मृत व्यक्ति के चेहरे की सुंदरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ जाते हैं दोस्तों, लेकिन नेत्रदान एक ऐसा उपहार है जो मृत्यु के बाद भी किसी की ज़िंदगी में उजाला भर सकता है। दोस्तों, नेत्रदान करने का जो अगर किन्हीं को अगर इच्छा है कि वे अपनी आँखें किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को दें, तो उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती है जिसे पूरा कर हम इस महादान को करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अपनी आँखों का दान करने की दिशा में पहला कदम किसी पंजीकृत नेत्र बैंक में नेत्रदान की प्रतिज्ञा का हस्ताक्षर करना होता है मित्रों। नेत्र बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म में अपनी सभी जानकारी आप भर दें। इसके बाद और सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है दोस्तों, कि आप अपने प्रियजनों को ये बातें बता दें कि आपने अपने आँखों का दान किया है। तो उससे होगा ये कि आपके प्रियजन सूचित करेंगे कि आपकी मृत्यु के बाद संपर्क करेंगे उस संस्था से, और उसके बाद आप ही आपकी कॉर्निया दूसरे को प्रत्यारोपित कर दी जाएगी। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपनी आँखों का ख्याल रखें ताकि दान करते समय वे अच्छी स्थिति में हो। यदि आपने अपनी आँखें दान करने का संकल्प लिया है, तो सुनिश्चित करें कि आपके प्रियजन मृत्यु के 6 घंटे के भीतर ही दान के लिए नेत्र बैंक को फ़ोन कर दें। दोस्तों, अपने इस दान को आप कर किसी के अंधकारमय जीवन को प्रकाशवान बना सकते हैं, और उसके जीवन को ऊर्जावान बना सकते हैं। उसके जो सपने होंगे उसे आप पूरा कर सकते हैं। उसके उसने जो इस दुनिया को कभी देखा नहीं, आपकी आंखों से उस दुनिया को देखेंगे, और वो कितना खूबसूरत पल होगा जब आपकी आंखों से आपके नहीं होने के बाद कोई इस खूबसूरत दुनिया का अवलोकन कर सके।

दोस्तों, आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है। इन्हीं आंखों से हम अपने माता पिता का स्नेह देखते हैं, बच्चों की मुस्कान देखते हैं, सूर्योदय की लालिमा और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसा कि हम बातें कर रहे हैं कि उनका जीवन कितना निराशा भरा होता होगा, उनके सपने कितने मायूसी भरे होते होंगे जिनके जीवन में रोशनी नहीं आई हो, जिन्होंने कभी उगते हुए सूरज को नहीं देखा हो, ना ढलते हुए शाम के बारे में जाना हो, जिन्होंने कभी पेड़ पौधे नहीं देखे हो, जिन्होंने कभी पशु पक्षी नहीं देखे हों, बस एक कल्पना मात्र उनके जीवन में रहता हो कि कोई जो वस्तु उसके सामने है वो इस प्रकार का हो सकता है। और जब हम इस बात को गहराई से सोचें मित्रों, तो वे कल्पना भी बहुत मुश्किल से कर पाते होंगे, क्योंकि उन्होंने तो कभी अपनी आंखों से इस दुनिया का दीदार किया ही नहीं है। तो दोस्तों, विश्व में लाखों लोगों की जो दृष्टि बाधिता है उसे दूर करने के लिए नेत्रदान एक ऐसा अवसर है जिसे हम अगर अपनाते हैं तो उससे कई सारे आँखों में सपने फिर से सजेंगे, कई सारे जो आँखें हैं, कई सारे जीवन या लोग हैं जिनकी आशाओं को हम उड़ान दे सकते हैं, उनके सपनों को एक पंख दे सकते हैं हम आँखें अपना दान देकर। तो दोस्तों, आप भी इस नेक काम से जुड़िए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि अपनी आँखों की रोशनी किसी दूसरे की आँखों में देकर देखें, कितना अच्छा और सुखद एहसास होगा मित्रों। क्योंकि हमने कई सारे दान के बारे में सुना, अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, लेकिन नेत्रदान एक ऐसा दान है मित्रों जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। नेत्रदान का अर्थ है मृत्यु के बाद अपनी आँखों के कॉर्निया का दान करना। दोस्तों, नेत्रदान के बारे में जो धारणाएं हैं उससे हटकर हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि नेत्र दान के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं वो बस एक महज भ्रांति ही है, उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, नेत्रदान एक सुरक्षित प्रक्रिया है और जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी होती नहीं है इससे। तो दोस्तों, ये इसके बारे में हमें बस जानने की आवश्यकता है। और एक व्यक्ति जो कभी इस दुनिया को देख नहीं पाया हो उसकी खुशियों को लौटाने की आवश्यकता है। जब हम किसी दृष्टिहीन व्यक्ति

को अपनी दृष्टि देते हैं तो उनकी शिक्षा आसान हो जाएगी, उन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा, आत्मविश्वास उनका लौटेगा और परिवार का जीवन भी उनका बेहतर हो जाएगा। तो हम अपने रहें इस जहां में या ना रहें, ये एक अच्छा काम हमें बिल्कुल करके जाना चाहिए मित्रों। तो अब आइए सुनते हैं एक और गीत।

तो दोस्तों, जब हम इस संसार से विदा लेंगे तो हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें जाएंगी जो एक किसी के दुनिया को रोशन कर जाएंगी। लेकिन दोस्तों, हम अपने इस संकल्प को लें कि हम अपनी आँखों को दूसरों के जीवन की रोशनी बनाकर जाएं। अपनी आँखों से दूसरे की दुनिया में सूरज का वो चमक भर कर जाएं, जिससे उनका जीवन उजाला से भर जाए, उनकी जो ज़िंदगी है वो खुशियों से भर जाए। एक छोटा सा निर्णय किसी के जीवन को सबसे बड़ी खुशी दे सकता है। मित्रों, दोस्तों, हमें यह जानने और याद रखने की ज़रूरत है कि नेत्रदान केवल दान नहीं, बल्कि किसी के सपनों को फिर से देखने का अवसर है। तो आप

हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बातचीत के माध्यम से, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपने ये जाना कि किस तरह से नेत्रदान करने से किसी की दुनिया खुशियों से भर सकती है। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप अपनी जो ये नेत्रदान की प्रक्रिया है उससे आप जुड़ेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अब हम गुलदस्ता कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। अपने अगले अंक के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अभी हमें अनुमति दें। नमस्कार।

आप सुन रहे थे गुलदस्ता कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है नारीलोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं श्री पार्वती के।

0: नमस्कार बहनों, नारी लोग के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी सहेली मुनमुन। घूंघट की बंदिशों से निकलकर अब तो उड़ती नीले आसमान, डिजिटल युग की नारी की ताकत हर मुकाम। जी हाँ बहनों, आज के बदलते नवीनीकरण में नारी भी अपने आप को बेहतर बना रही है। डिजिटल युग ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए असीम संभावनाएं प्रदान की हैं। डिजिटल युग में नारी का स्थान और उसकी भूमिका समाज में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक बन चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के इस दौर ने महिलाओं को चार दीवारी से निकालकर वैश्विक मंच प्रदान किया है। आज की नारी केवल तकनीक का इस्तेमाल ही नहीं कर रही, बल्कि इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भी बन रही है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक समाज में नारी की भूमिका लगातार बदलती रही है। कभी उसे केवल गृहस्थी तक सीमित माना जाता था, तो कभी शिक्षा और बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन 21वीं सदी के डिजिटल युग ने नारी सशक्तिकरण की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे डिजिटल उपकरणों ने महिलाओं के लिए प्रगति के बंद दरवाजों को खोल दिया है। जहां घर बैठे वे बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वहीं वर्क फ्रॉम होम के जरिए अपने कार्य भी कर रही हैं। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स के माध्यम से छोटे छोटे व्यवसाय भी कर रही हैं। उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता भी है, सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य सेवा भी उनकी पहुँच में है। आज के डिजिटल दौर में महिलाएं खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। डिजिटल युग ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए असीम संभावनाएं प्रदान की हैं। हालांकि इस क्षेत्र में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक महिला डिजिटल साधनों का लाभ उठा सके। डिजिटल युग का सही उपयोग कर महिलाएं न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती हैं। बहनों, चर्चा आगे भी जारी है, उससे पहले सुनते हैं ये गीत।
1: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं।

0: नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: इंटरनेट ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया है। इस क्रांति का सबसे सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देखने को मिला है। परंपरागत रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सीमाओं में बंधी महिलाओं के लिए डिजिटल तकनीक के नए अवसरों के द्वार खोले हैं। सशक्त महिला न केवल स्वयं का विकास करती है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे लड़कियां जो सामाजिक, आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती थीं, आज डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वो भी घर पर बैठकर। डिजिटल साक्षरता ने महिलाओं को आत्मविश्वासी और जागरूक बनाया है, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझ पा रही हैं। सोशल मीडिया महिलाओं की आवाज को मंच प्रदान करता है। महिलाएं अब अपने विचार, अनुभव और समस्याएं खुलकर साझा कर सकती हैं। डिजिटल क्रांति ने महिला सशक्तिकरण को गति दी है, फिर भी कुछ चुनौतियां तो बनी हुई हैं। डिजिटल डिवाइड, सही जानकारी का अभाव, इंटरनेट की कमी, तकनीकी ज्ञान का अभाव, साइबर अपराध महिलाओं के लिए बाधा बनती है। लेकिन बहनों, चुनौतियों से लड़ना तो हम जन्म से ही सीख जाती हैं। भविष्य की बात करें तो डिजिटल क्रांति और महिला सशक्तिकरण का संबंध और मजबूत होगा। महिलाओं को डिजिटल कौशल, सुरक्षित इंटरनेट वातावरण और समान अवसर प्रदान किए जाएं, तो वे राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। डिजिटल युग ने महिलाओं को एक नई दिशा प्रदान की है। ये केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। शिक्षित, आत्मनिर्भर और जागरूक महिला ही सशक्त समाज की आधारशिला होती है। डिजिटल तकनीक का सही और समावेशी उपयोग किया जाए तो महिला सशक्तिकरण का सपना न केवल साकार होगा, बल्कि एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण भी होगा। डिजिटल युग ने महिलाओं को केवल उपयोगकर्ता से बदलकर परिवर्तनकर्ता बना दिया है। तकनीक ने उनके चिंतन, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को एक नई दिशा प्रदान की है। साइबर अपराध और डिजिटल असमानता जैसी चुनौतियां तो हैं, लेकिन यदि हम अपनी बेटियों और खुद को भी डिजिटल साक्षरता और सुरक्षित वातावरण प्रदान करें, तो ये डिजिटल युग महिला सशक्तिकरण के इतिहास में सबसे स्वर्णिम अध्याय साबित होगा। बहनों, इस चर्चा के बाद आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व प्रसारित विशेष कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा का दूसरा भाग। भेंट कर वार्ताकार हैं नौमी शांति हेम्ब्रम, भेंट करता है रागिनी रोशन।
1: श्रोताओं, इस वर्ष आकाशवाणी अपना 90 वर्ष पूरा करने को है। इसी श्रृंखला में विशेष कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा के तहत हमने अपने स्टूडियो में नौमी शांति हेम्ब्रम जी को आमंत्रित किया है, जो आकाशवाणी भागलपुर की पूर्व कार्यक्रम प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त ये आकाशवाणी के और कई पदों पर कार्यरत रहीं। आज हम इनसे आकाशवाणी से जुड़े कार्यकाल के अनुभवों के बारे में जानेंगे।
2: हमारी जानकारी के अनुसार आपने लंबे समय तक रेडियो के पत्रोत्तर कार्यक्रम से भी आप जुड़ी रहीं, तो इस दौरान आपका कैसा अनुभव रहा? हाँ,
3: ये भी एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा हमारे इस प्रसारण यात्रा, प्रसारण सेवा यात्रा का, कि हमने एक लंबे समय तक पत्रोत्तर कार्यक्रम को भी प्रस्तुत किया। जी। पत्रोत्तर कार्यक्रम को रेडियो का प्रतिनिधि कार्यक्रम माना जाता है, जहाँ हम सीधा सीधा श्रोताओं के साथ संवाद कर पाते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं, उनके साथ बातचीत, उनकी बातें हम सुनते हैं और अपनी बातें हम उन तक पहुँचाते हैं। वे हमारे कार्यक्रमों को सुन के पत्र हमें भेजते हैं और पत्र में उनकी जो भी बातें होती हैं, उन बातों के साथ हम अपनी भी बातें रेडियो की, कुछ कार्यक्रम के माध्यम से हम रेडियो की कुछ आंतरिक बातों को नहीं बता पाते हैं, लेकिन वो बातें हम पत्रोत्तर के माध्यम से अपने श्रोताओं को बता पाते हैं। कहने का मतलब, हम सीधा सीधा श्रोताओं से मुखातिब होते हैं उन कार्यक्रमों में। और समय तो रेडियो में हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और श्रोता सुनते हैं। उसको सुनने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उन कार्यक्रमों को उन्होंने किस रूप में लिया, ये भी तो जानना, फीडबैक भी जरूरी होता है। तो इसके लिए पत्रोत्तर कार्यक्रम हर केंद्र पर होता है और श्रोताओं के इतने अच्छे पत्र आते थे, आलोचनात्मक में भी आते थे, वो अपने सुझाव भी हमारे पास, अपनी राय भी हमारे पास रखते थे। और कई एक सुझाव और राय तो बहुत ही अच्छे लगते थे, महत्वपूर्ण लगता था कि इन्होंने बहुत अच्छी रीति से हमारे कार्यक्रमों को समझा है और हमें पत्र भेजा है कि इसको हम इस रूप में अगर कर सकें तो।

0: और बहुत ही नियमित होकर के
1: जी
0: कार्यक्रमों को सुना करते थे
1: जी
0: हमारे श्रोता। जैसा उनका पत्र हमें मिलता था तो ये महसूस होता था।
1: जी
0: इसके लिए हमें शुरू से ही अपने वरीय अधिकारियों से भी बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहा हमारी। जब हमने ज्वाइन किया है, उनमें से एक पूरण लाल सिंधी हुआ करते थे, भाई गुलफराज आलम, विष्णु चौधरी और खालिद अंसारी, और भी ऐसे बहुत सारे, मुन्ना खान मुन्ना, और भी बहुत सारे ऐसे बहुत लिसनर होते थे, श्रोता होते थे, जो हमें बिल्कुल कार्यक्रम उन्होंने सुना और 1 मिनट नहीं हुआ, पोस्ट कार्ड लगता था, पोस्ट कार्ड लेके वो बिल्कुल मुस्तैद
1: बिल्कुल
0: बैठे रहते थे,
1: जी,
0: कार्यक्रम सुना और उन्होंने पत्र
1: प्रतिक्रिया
0: हमें
1: लिखी।
0: हाँ लिख भेजा, तो अच्छा लगता था। कई श्रोता समय मिलने पर हमसे मुलाकात भी करते थे,
1: जी
0: तो सीधे सीधे भी हम उनसे
1: मुखातिब होते
0: मुखातिब
1: थे।
0: होते थे,
1: जी
0: तो ये भी एक अलग अनुभव रहा और बहुत ही सुखद अनुभव रहा है।
1: जी
0: जी
1: रेडियो में रूपक भी एक अपना महत्व रखता है,
0: हाँ
1: तो आपने
0: बिल्कुल
1: रूपक के क्षेत्र में क्या काम किए या फिर करवाए हैं, उसके
0: जी
1: बारे में कुछ
0: हाँ,
1: बताइए।
0: जब भी नाटकों की बात होगी तो साथ साथ रूपक की भी बात होगी,
1: जी
0: क्योंकि जो भी अमूमन आकाशवाणी केंद्रों में नाटक रूपक ये एक ही विभाग अनुभाग में रखे जाते हैं, कहीं कहीं पर उसे नाटक रूपक को अलग अलग भी रखा जाता है,
1: जी
0: लेकिन प्राय ही ऐसा होता है कि नाटक रूपक को एक
1: एक
0: ही
1: ही
0: साथ
1: विभाग।
0: एक अनुभाग के रूप में लिया जाता है।
1: जी
0: तो जैसे नाटकों की बात जब हम कर रहे थे, हमने बताया हर रूप में हमने नाटक को प्रस्तुत किया, यानी कलाकार के रूप में भी और लेखक के रूप में भी,
1: जी
0: प्रस्तुतकर्ता के रूप में भी। कई ऐसे आज भी समय समय पर नाटक प्रसारित होते हैं और
1: जी
0: मुझे अच्छा लगता है कि आज भी, अभी कुछ दिनों पहले भी एक हमारे श्रोता
1: जी
0: हैं विष्णु चौधरी जी,
1: जी
0: इन्होंने हमें फोन करके कहा कि दीदी सो आपका ये नाटक हमने अभी अभी सुना रेडियो पर, तो
1: जी
0: अच्छा लगता है। इसी तरह से रूपक भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्रसारण होता है। कह लीजिए कि रूपक एक विशिष्ट विधा है रेडियो की,
1: की जी
0: रूपक एक ऐसी विधा है रेडियो प्रसारण की जिसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, यानी आपको उसमें उच्चरित शब्द भी मिलेंगे, उसमें नाट्य अंश भी होंगे, उसमें आपको संगीत भी होगा
1: जी
0: और भेंटवार्ताएं भी होंगी, या किसी विशिष्ट व्यक्ति का कोई कथन, ये सारी चीज़ों को मिला करके बहुत ही एक विशिष्ट विधा है, जो ये रेडियो की ही ये विधा है, रूपक की
1: जी
0: विधा। और इसमें भी हमने कई रूपक भी लिखे, ज्वलंत समाज के जो ज्वलंत विषय हैं उस पर नाटक रूपक दोनों ही लिखे,
1: जी
0: और रूपक के लिए हम लोगों ने इस केंद्र से, आकाशवाणी भागलपुर से, केंद्रीय एकांश के लिए भी हमने रूपक तैयार किए और
1: जी
0: जिसकी काफ़ी सराहना भी हमें मिली,
1: जी
0: क्योंकि भागलपुर का ये जो क्षेत्र है ये डॉल्फिनों
1: क्षेत्र
0: का
1: है जी,
0: क्षेत्र माना
1: गंगा
0: जाता है,
1: जी
0: तो उस पर भी हम लोगों ने, हमें वहाँ से मांगा गया था और हमने एक रूपक तैयार करके भेजा था, गंगा का अप्रतिम आभूषण गांगेय डॉल्फिन।
1: जी
0: और इसी तरह से जो बांग्ला के एक बहुत बड़े उपन्यासकार कहानीकार हैं शरद चंद्र,
1: जी
0: उनका भी भागलपुर से बहुत ही नाता रहा है
1: जी
0: और कई रचनाएं उनकी भागलपुर की पृष्ठभूमि पर ही लिखी गई,
1: लिखी गई जी
0: तो शरद चंद्र पर भी हमने एक रूपक बनाकर भेजा था।
1: जी
0: घोरघट की लाठी,
1: जी
0: जो गांधी जी की लाठी को माना जाता है कि वो घोरघट की ही लाठी थी, जो
1: जी
0: लाठी वो लेकर चलते थे,
1: जी जी
0: तो उस पर भी हमने अंशदान किया था। केंद्रीय एकांश से, रूपक एकांश से एक विशेष कार्यक्रम तैयार हुआ था, तो
1: जी
0: भागलपुर ने उसमें भी योगदान किया था। और भी कई ऐसे हमने विशिष्ट रूपक
1: जी
0: राज्य स्तर पर भी तैयार किए,
1: जी
0: कई नाटक राज्य स्तर पर भी होते थे जो हम हर केंद्र अपने राज्य बिहार से, हर केंद्र से प्रसारित होते थे, तो
1: जी
0: उसमें भी कई हमने नाटक रूपक तैयार
1: तैयार
0: करके
1: किए जी।
0: दिए हैं। जी
1: ये केंद्र के द्वारा जो निर्धारित प्रारूप कार्यक्रम जो है वो तो प्रसारित होते थे, उसके
0: हाँ
1: अलावा क्या आपने कोई कार्यक्रम किया
0: हाँ
1: है?
0: जी हाँ, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमें हर परिस्थिति और हर प्रकार के जो विषय होते हैं उस पर कार्यक्रम करने के लिए सदैव तैयार और तत्पर रहना होता था। महानिदेशालय से हमें समय समय पर ऐसे कई विशिष्ट कार्यक्रम करने का निर्देश मिलता था और जिसको हम लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर उनको तैयार करके हम प्रसारित करते थे। और महानिदेशालय जो राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे ज्वलंत विषय होते हैं जिस पर तुरंत कार्यक्रम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि रेडियो हमेशा से जनमानस पर एक गहरी पैठ रखता रहा है। आकाशवाणी की एक बहुत गहरी पकड़ लोगों के बीच में रही है, इसलिए इस तरह के प्रसारण हमें समय समय पर करने के लिए निर्देश मिलते थे, जिसमें हम अपने स्टूडियो परिसर से बाहर जा कर के भी कार्यक्रम करते थे। अब उसमें जो महानिदेशालय से हमें निर्देश मिले, जिसको हम LWE के कार्यक्रम भी कह सकते हैं, वाम चरम पंथ पर कार्यक्रम, क्योंकि उस वक्त ये एक हम ज्वलंत विषय तो कहें, साथ ही साथ एक मानवीय विषय भी हो गया था। किस तरह से हमारी जो युवा पीढ़ी है उस ओर दिग्भ्रमित हो रही थी, तो उनको फिर वापस मुख्य धारा में, या जो उससे किसी ना किसी रूप में उनका जाने अनजाने जुड़ा हो भी चुका था, सरकार की कोशिश थी कि ऐसे लोगों को फिर से समाज की मुख्य धारा में वापस लाया जाए, जोड़ा जाए। और इसके लिए जिम्मेदारी दी गई आकाशवाणी को, बड़ी जिम्मेदारी कि इस पर भी आपको कार्यक्रम करना है, तो हमने उसे भी किया। आकाशवाणी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है विरासत को सहेज कर रखना, क्योंकि अब जैसे जैसे हम कह लें कि हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं या आधुनिक होते जा रहे हैं, पीछे की कुछ एक बातों को हम भूलते जा रहे हैं, वो भूली बिसरी बातें होती जा रही हैं। तो इस क्रम में आकाशवाणी ने एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट रखा था संस्कार गीतों का
1: जी,
0: क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, तो संस्कार गीतों को सहेजने का एक बड़ा काम शुरू किया था आकाशवाणी ने, और उसमें भी हम लोगों ने एक अच्छा खासा योगदान किया और उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी हुई राष्ट्रीय स्तर पर
1: जी।
0: ऐसे ही जैसे हमने अभी LWE की बात कही
1: जी,
0: तो इसी तरह से ऐसे ही एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी जा करके हमने गीतों का संकलन किया था, और उधर की वो जो गीतों में हम कह लें कि गीत हमेशा हमारे लिए वाचिक परंपरा की चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें समाज की और इतिहास की बहुत सारी बातें उसमें परिलक्षित होती हैं
1: है।
0: जिसको कि संग्रहित करके रखने की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने सद्दाल क्षेत्र में भी जा करके इस तरह के गीतों को संकलित किया, और हमारे जो हमारा जो अंग क्षेत्र है, अंग क्षेत्र में भी जा करके हम लोगों ने ऐसे संस्कार गीतों को संकलित किया और अपना योगदान दिया। आकाशवाणी महानिदेशालय का ये जो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था उसमें, और उसमें उसमें भी आकाशवाणी भागलपुर की बहुत ही प्रशंसा हुई थी उन सब गीतों के संकलन करने में। इसके अलावा जो अति विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं, समय समय पर हमें उन अति विशिष्ट कार्यक्रमों को भी करना होता है। मैं उन्हें याद करना चाहूँगी, जब मैं आकाशवाणी कोलकाता में थी तो वहाँ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम होता था मन की बातें तो उसको हमें संताली में अनुवाद करके उसे प्रसारित करना होता था। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, क्योंकि कभी कभी इसमें समय की कोई निर्धारित सीमा नहीं रहती थी
1: जी।
0: किसी भी समय में तक के लिए हम लोगों को अपना योगदान करना पड़ता था, उसमें काम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी हमारी हमेशा से कोशिश रही कि बिल्कुल उसे सही रूप में सटीकता से उसका अनुवाद करके श्रोताओं के बीच
1: पहुँचाया
0: जाए। और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे परीक्षा पे चर्चा या इस तरह की बहुत सारी ऐसी प्रसारण सामग्रियां होती थी जो विशेष रूप से हमें महानिदेशालय से प्राप्त होती थी कि इसको जितनी जल्दी हो सके आप इसे अपने क्षेत्र की भाषा में बोली में अनुवाद करके उसे तुरंत प्रसारित कीजिए, तुरंत एक दो दिन के अंदर उसे प्रसारण करना है। तो इस तरह से ऐसे भी बहुत सारे कार्यक्रमों को हमने किया।
1: रेडियो में बाह्य ध्वन्यांकन का भी विशेष महत्व होता है, इस दौरान आपका अनुभव कैसा रहा?
0: हाँ, रेडियो पहले और आज भी इसे फिर से हम देख रहे हैं कि उसको फिर से इसी रूप में लाने की कोशिश की जाती रही है
1: जी।
0: कि ऐसा ना लगे कि रेडियो सिर्फ एक जगह केंद्रित होकर कार्य कर रहा है
1: जी।
0: है ना, रेडियो एट योर डोर, यानी आकाशवाणी आपके द्वार
1: तक
0: जी। ये इस तरह के प्रसारण अभी भी हो रहे हैं
1: जी।
0: और एक समय था जब हम खुला मंच के रूप में इस तरह के कार्यक्रमों को करते थे, चाहे वो संगीत का कार्यक्रम हो, चाहे नाटकों का, या हम कह लें कि कवि सम्मेलनों का
1: जी।
0: और भी इस तरह के विभिन्न प्रारूप को लेकर के हम श्रोताओं के बीच जाते थे
1: जी।
0: मंच आयोजित किया था जाता था, खुला मंच जिसे हम कहते हैं, श्रोताओं के बीच ही जा करके बिल्कुल उनसे रूबरू होते हुए अपने उन कार्यक्रमों को हम प्रस्तुत करते थे। और इसमें एक हम कह लें कि विभिन्न स्थानों की जो भी इस तरह की बातें होती हैं, जैसे संगीत से जुड़ी हुई, साहित्य से जुड़ी हुई, कला से जुड़ी हुई, इस तरह की बातों का आदान प्रदान हम करते थे
1: जी।
0: देश के भिन्न भिन्न भागों से हमारे क्षेत्र में कलाकार आते थे, या हमारे यहाँ के भी कलाकारों को बाहर मौका मिलता था। और इस तरह से खुला मंच के द्वारा इस तरह के भी आयोजन किए जाते रहे हैं, और हमने भी उसमें कई बार बहुत ही सक्रियता से, चाहे मंच संचालन के द्वारा या चाहे उन कार्यक्रमों को आयोजित करने के द्वारा, हमने इन सारे कार्यक्रमों को श्रोताओं के बीच तक पहुँचाया, और श्रोताओं से हमें उसकी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, बहुत ही अच्छा लगा।
1: एक और व्यक्तिगत सवाल कह लीजिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कभी आपको लगा या कब ऐसा लगा कि रेडियो आपके लिए बना है या आप रेडियो के लिए बनी हैं?
0: मुझे बराबर ही ये लगा कि मैं रेडियो के लिए और रेडियो मेरे लिए
1: जी।
0: है ना, जब तक हम किसी माध्यम में या किसी, कह लीजिए कि अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो प्रसारण या कार्यक्रम में बिल्कुल उसमें खुद को समाहित नहीं कर देंगे, हम कार्यक्रम को सफल रूप से श्रोताओं के बीच तक नहीं पहुंचा सकते
1: जी।
0: इसके अलावा हमें ये लगता है कि अगर कोई कार्यक्रम हमें करना है तो उसमें मैं भी हूँ
1: जी,
0: या वो मेरे लिए है जी। कोई कार्यक्रम, कोई प्रसारण आ रहा है तो खुद हमें लगता है कि वो कार्यक्रम बिल्कुल जैसा मेरे लिए ही हो। और तभी ये सोच जब तक हम विकसित नहीं करेंगे, हम किसी रेडियो के किसी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अपने श्रोताओं के बीच तक नहीं पहुंचा सकते हैं
1: जी।
0: कहा भी जी, मैंने पहले तो सोचा नहीं था कि कभी मुझे रेडियो में सेवा करने का मौका मिलेगा या मुझे वहाँ योगदान करना होगा, लेकिन रेडियो में आने के बाद जिस तरह से हमारे कार्यक्रमों को या हमारी प्रस्तुतियों को लोगों ने पसंद किया, तो उस वक्त मुझे बिल्कुल यही लगा कि मैं रेडियो के लिए ही बनी और रेडियो मेरे लिए रहा।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी मुझे याद है जरा जरा का दूसरा भाग। भेंट वार्ताकार थी नाओमी शांति हेम्ब्रम, भेंटकर्ता थी रांगिडी रोशन। बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये गीत।

इस गीत के साथ ही बहनों आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है नारी लोक अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपनी सहेली मुनमुन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नारीलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
3: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
3: फिर क्या होता है,
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
3: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
3: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
3: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
2: जी।
3: फिर कॉफी परोसी जाती है।
2: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
3: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
2: जी।
3: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
2: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
3: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
2: जी।
3: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
2: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
3: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
2: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

0: केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील। चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों

0: यही तमिलनाडु में पड़ता है
1: जी।
2: अच्छा,
0: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
1: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
2: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
0: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
1: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
2: अच्छा।
1: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
2: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
3: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
2: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
3: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
3: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
3: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
3: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।

0: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
1: अच्छा।
0: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार।

0: हैं, आप भी तैयार हैं ना? अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: आप सुन रहे थे एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का एक बजा है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज लोकरंग के कलाकार हैं कविता सिन्हा। आइए इनसे सुनते हैं इनका गाया लोक वचन।

लोकरंग कार्यक्रम को हम देते हैं थोड़ी देर के लिए विराम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने दी बधाई। पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन और रक्षा आत्मनिर्भरता की सराहना की। झारखंड राज्यसभा में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर सुनवाई जारी। निर्वाचन आयोग से अंतिम फैसले का इंतजार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर राज्य के सभी 444 बालू घाट आज से 15 अक्टूबर तक के लिए बंद। परिवहन पर पूरी तरह रहेगी रोक। पाकुड़ में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों से भरी बस। दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 33 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की बेटियों का स्वागत। संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने कहा, अब सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है अगला लक्ष्य। स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बधाई मिल रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सेवा और सुशासन का स्वर्ण काल बताया। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस कार्यकाल को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती शक्ति का परिचायक कहा। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को सेवा, सुशासन और अंत्योदय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: देश के अंदर उत्पादन करना है, आत्मनिर्भर बनना है। हम सब काफी प्रयास किए यहाँ से लेके दिल्ली तक, और सरकार भी चाहता भी था, और यहाँ और नए माइंस का भी सर्वे करके गया है। उसको भी प्रयास किया है कर्मचारी करके दोस्तों विश्व है।
0: इधर हजारीबाग में सेवानिवृत्त सैन्य जवानों ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय सेना का मनोबल और मान सम्मान काफी बढ़ा है। उन्होंने आधुनिक हथियारों की उपलब्धता और रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को बेहद गर्व की बात बताया।
2: 12 साल मोदी जी का सेना के लिए तो बहुत लाभदायक है, और उसके आने के पहले सेना में सब कुछ रहते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। 2014 के बाद सेना में बदलाव भी हुआ और हर फौजी का आत्मविश्वास बढ़ा।
3: काम तो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है डिफेंस में। आने वाले समय से बदलाव जिस तरह चाहिए उस तरह हो रहा है, और मोदी जी आने के बाद जो भी हुआ सेना के लिए अच्छा विकास हुआ है। इक्विपमेंट्स, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और जितने गन डिफेंस सर्विसेज में चाहिए थे वो मिल रहे।
0: इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री का सम्मान किया और उन्हें इस ऐतिहासिक कीर्तिमान के लिए बधाई दी। झारखंड विधानसभा परिसर में राज्यसभा चुनाव की स्क्रूटनी को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन को रद्द करने की मांग को लेकर सदन के बाहर

0: प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि नामांकन पत्र में कई त्रुटियां हैं और इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए।
1: एक दलित महिला को राहुल गांधी जी ने कैंडिडेट बनाया और 100% से हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, उसके बाद भी आपने मात्र एक त्रुटि के कारण, जबकि 3:30 बजे तक आज समय है क्वायरी करने का, बताने का, आपने एक महिला का नामांकन रद्द कर दिया मध्य प्रदेश में, और यहाँ क्यों नहीं किया आपने? यहाँ 5-5 क्वेरी है, भाजपा का समर्थक कैंडिडेट है, इसलिए आपने उनका नामांकन रद्द नहीं किया, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे।
0: दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विधानसभा गेट के बाहर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नियमों के प्रतिकूल बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
2: भाजपा के कार्यकर्ता के लिए गेट बंद, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए स्थान भी सरकार ने तय किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर घुस के प्रोटेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक है दूसरे दल के लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए।
0: राजधानी रांची में आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए आंदोलनकारियों को मोराबादी क्षेत्र में ही रोक दिया है। मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन पुलिस सहित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के आदेश के तहत आज से नदियों से बालू खनन और उठाव पर पूरी तरह रोक लग गई है। यह प्रतिबंध आगामी 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में मॉनसून के दौरान नदी घाटों के पर्यावरण और जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य के सभी 444 बालू घाट बंद रहेंगे और बालू के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। गिरिडीह जिले में नक्सल प्रभावित पीर टाड़ प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत बंजर जमीन पर आम बागवानी कर किसान अपनी आय बढ़ा रहे हैं। योजना से लाभान्वित किसान शेखर महतो और तूप लाल बेसरा ने बताया कि सरकार की मदद से वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
3: बंजर भूमि था जो कृषि योग्य बिल्कुल नहीं था, उस भूमि में हम बागवानी शुरू किए और बागवानी मेरा इतना शानदार रहा कि ये चौथा साल है बागवानी का। अगला साल ही लगभग हम 1 लाख का आम बेच चुके थे और इस साल भी एकदम खेती जो उम्मीद से बढ़िया हुआ है। पेड़ से ही पका हुआ आम को मिल जा रहा है बहुत लोगों को।
4: हम भगवान जी मिला नरेगा साहब से, तब हमने लगाए हैं। अब पूरे प्रखंड का सब आ करके देख रहा है, पूरे प्रखंड में लगा रहा है। इन साल कुछ मौसम के चलते से फल नहीं आया, फिर भी मेरा हो जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपए।
0: पंचायत सचिव सरफराज अहमद ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को उचित बाजार उपलब्ध करा रहा है। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में कल देर रात बारातियों से भरी एक बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बारात सुंदर पहाड़ी क्षेत्र से लौट रही थी, तभी मालीपाड़ा ढलान के निकट यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 597 अंक चढ़कर 74,516 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 157 अंक बढ़कर 23,400 पर पहुंच गया है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 140,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 245,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 5 दिनों के लिए मॉनसून के राज्य में प्रवेश करने की संभावना व्यक्त की है। कल राजधानी रांची, दुमका, बोकारो सहित राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की 2 बेटियों का जिला मुख्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय टीम की सदस्य संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने अपनी सफलता का श्रेय कोच, परिवार और राज्य सरकार के सहयोग को दिया है।
5: मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था जिसमें हम लोग बहुत अच्छा खेले, लेकिन सेमीफाइनल में शूट आउट में लूज हो गए। कोशिश किए थे कि फर्स्ट क्वार्टर में ही गोल मारने का, पर नहीं हो पाया। और थर्ड प्लेस के लिए खेले कोरिया के साथ। हम लोग सीखे कि इंटरनेशनल में हम लोग अपना प्रेशर झेल सके।
0: और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने दी बधाई। पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन और रक्षा आत्मनिर्भरता की सराहना की। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर सुनवाई जारी। निर्वाचन आयोग से अंतिम फैसले का इंतजार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर राज्य के सभी 444 बालू घाट आज से 15 अक्टूबर तक के लिए बंद। परिवहन पर पूरी तरह रहेगी रोक। पाकुड़ में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों से भरी बस। दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 33 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की बेटियों का स्वागत। संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने कहा, अब सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है अगला लक्ष्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार से पहले आप सुन रहे थे लोकरंग कार्यक्रम। लोकरंग कार्यक्रम को अब हम बढ़ाते हैं आगे और कविता सिन्हा के स्वर में आपको हम सुनवाते हैं उनका गाया ये सोहर गीत।

कविता सिन्हा के गाए इस झूमर के साथ ही संपन्न होता है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है घर आंगन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनय वाली सभ्य बहन का राधा के नमस्कार। बहन, उम्मीद करे छे कि तो सब कुशल मंगल हो और सब काम काज बढ़िया से हो रहा होते। बहन, अखनी मौसम में बहुत परिवर्तन हो रहा छे, जना कि कखनियो खूब रौदा करी दे छे तो कभियो आंधी तूफान आरो वर्षा पड़ लगे छे। अरे यही कारण से बहन उमस वाला गर्मी करी रहा छे आरो हर रंग जे मौसम में परिवर्तन हो रहा छे तो यह सब बीमारी और आँखों सब में इन्फेक्शन सब हो के खतरा बढ़ी जाए छे। बहन, आँख से याद अले कि आए हम यहाँ एगो एहनो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करवे और संकल्प लेवे कि जैसे केकरो जीवन का पूरी तरह से बदली जावा पारवे। बहन, आए पूरे देश दुनिया में विश्व नेत्रदान दिवस मनाए रहलो छे। आँख प्रकृति के देलो सबसे अनमोल उपहार छिके, लेकिन जरा सोचो उ लोगों के जीवन कहना होते जे ई रंग बिरंगी दुनिया का कभियो देखे नहीं पारते। आए अपना देश और दुनिया में लाखों लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, जे कि कॉर्निया के समस्या के कारण अंधेरा में जीवन जिये ला मजबूर छे। बहन, एगो कटु सत्य ई भी छे कि मृत्यु के बाद हमरा सनी के आँख मिट्टी में मिली जाए छे या जली जाए छे। लेकिन अगर बहन हम सनी मृत्यु के पहना अपना आँख दान करी देवे तो केकरो अंधेरा जीवन में रोशनी आ भी जाते। एक आँख से दू लोगों का रोशनी मिली जाते। बहन, एक बात जो हमरा सनी का हमेशा याद रखना चाहिए वो ई छिके कि नेत्रदान खाली मृत्यु के बाद ही संभव छे। हेकरा लिली जीवित रहला पर ही संकल्प लेना छे आरो अपना परिवार का हेकरो बारे में जरूर बताना छे। बहन, शरीर के सभ्य अंग समान रूप से महत्वपूर्ण छे, लेकिन आँख कुछ ज़्यादा विशेष छे। ई हमरा सनी का रोशनी दे छे और दुनिया के सुंदरता के आनंद लय में सक्षम बनाए छे। हालांकि बहन, बहुते तरह के अंधापन के कारण बहुते लोग अपना रोशनी खोए दे छे और हुनका लिली दुनिया अंधकारमय हो जाए छे। यही लिए बहन हम सनी नेत्रदान एक सरल कदम से हुनका सनी का प्रकाश के उपहार दिया पारे छे। बहन, आए विश्व भर में अंधापन एगो गंभीर समस्या छिके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के बाद अंधापन के सबसे प्रमुख कारण कॉर्निया के खराबी छिके। लेकिन बहन, यह में ज़्यादातर खराबी के इलाज संभव छे, विशेष रूप से नेत्रदान के माध्यम से। हालांकि बहन, जागरूकता के कमी, सामाजिक या धार्मिक बाधा सब के कारण अपना देश में नेत्रदान का अभियो उतना महत्व नहीं मिला पा रहा छे। यही लिली जनमानस में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ावे के लिली राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनैलो जाए छे। बहन, दान करलो गेलो आँखों के उपयोग कॉर्नियल अंधत्व से पीड़ित लोगों के दृष्टि का बहाल करे लिली करलो जाए छे। कॉर्निया आँख के सामने वाला हिस्सा का ढकै वाला पारदर्शी उत्तक छिके। अगर ई क्षतिग्रस्त हो जाए छे तो रोशनी कम हो जाए छे या पूरी तरह से चललो जाए छे। एहनो मामला में केराटोप्लास्टी नामक एगो साधारण ऑपरेशन से रोशनी आबा पारे छो, जेकरा में कॉर्निया का बदली देलो जाए छे। बहन, आज तक कॉर्नियल अंधत्व का कॉर्निया प्रतिस्थापन के अलावा कोई आरो समाधान नहीं छे। बहन, नेत्रदान एगो एहनो परोपकारी काम छिके जे मरला के बाद केकरो के अंधकार में जीवन में नया रोशनी आरो आशा के किरण

भरा पारते, तोरा आँख तोरा गेला के बाद भी इ दुनिया का देखा पारते। यही लिली बहिन नेत्रदान महादान का अपना जीवन के संकल्प बनाना छे आरो अपना आसपास के लोगों का भी एकरा प्रति प्रेरित करना छे। तब बहिन कार्यक्रम में आगू आरो बातचीत करबे हमसनी, तब तक आबो एकटा देवी गीत सुने छे, कलाकार छिके रेणु भारतीय।

वाह बहिन, बड़ी बढ़िया देवी गीत सुन लिए। मोन एकदम भक्तिमय हो गेले। बहिन, महिला अब हर क्षेत्र में अपना भूमिका बखूबी निभाए रहल छे और अपना देश दुनिया के नाम रोशन करी रहल छे।

वह रंग अब महिला सनी कृषि के क्षेत्र में भी बहिन अपना योगदान दे रहा है। त अखनी हम सनी एगो प्रथम प्रसारण वार्ता के माध्यम से जानकारी लेवे। वार्ता के विषय छिके कृषि में महिलाओं की भागीदारी और वार्ताकार छिके अनु अंकिता।

0: कृषि क्षेत्र में नारी की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान है। बुवाई, निराई से लेकर कटाई, भंडारण और पशुपालन तक महिलाओं का योगदान 70% से अधिक है। आधुनिक युग में वे न केवल पारंपरिक खेती बल्कि जैविक खेती और कृषि व्यवसाय में भी महत्वपूर्ण उद्यमी बनकर उभर रही हैं। कृषि में महिलाओं की बहुआयामी भूमिका को प्रमुख रूप से निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। कृषि कार्य और प्रबंधन में, खेतों में बीज बोने, निराई गुराई, फसल की कटाई और अनाज को साफ करने जैसे श्रम साध्य कार्यों में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक होती है। पशुपालन और डेयरी में दुधारू पशुओं की देखभाल, चारा तैयार करना, दूध निकालना और डेयरी उत्पादों के प्रबंधन में महिलाएं अग्रणी होती हैं। पुरुषों के पलायन के बाद की जिम्मेदारी, ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुषों के शहर की ओर पलायन के कारण खेती की पूरी कमान अब महिलाओं के कंधे पर आ गई है। बीज बैंक और जैविक खेती में पीढ़ियों से महिलाएं पारंपरिक और स्वदेशी बीजों को सहेज कर रखती आ रही हैं। वे जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक कीटनाशकों के निर्माण में भी दक्ष होती हैं। खाद प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में कृषि उत्पादों से अचार, पापड़, जैम और मुरब्बा बनाना या अनाजों की प्रोसेसिंग कर उन्हें बाजार के लिए तैयार करना, इससे आय में वृद्धि होती है। संबंधित आंकड़े बताते हैं कि कृषि जनगणना के अनुसार 73.2% ग्रामीण महिलाएं कृषि गतिविधि में संलग्न हैं, परंतु केवल 8% महिलाओं के पास ही भूमि का स्वामित्व है। भारत मानव विकास सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 83% कृषि भूमि पुरुष सदस्यों को परिवार से विरासत में मिली है। इसके अतिरिक्त 81% महिला कृषि मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और इसलिए वे कैजुअल तथा भूमिहीन मजदूरी में सबसे अधिक योगदान देती हैं। कृषि में महिलाओं की भागीदारी के दौरान आने वाली कई समस्याएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से कृषि में लैंगिक असमानता है। महिलाओं को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो उन्हें एक कृषक के रूप में होनी चाहिए, जैसे कि खेती के लिए कर्ज, कर्ज माफी, फसल बीमा और सब्सिडी के साथ साथ महिला कृषकों की आत्महत्या के मामले में उनके परिवारों को मुआवजा ना मिलना, महिलाओं को किसानों के रूप में मान्यता ना मिलना उनकी समस्याओं का केवल एक पहलू है। महिला किसान मंच के अनुसार उन्हें भूमि, जल और जंगलों पर अधिकार के मामलों में अत्यधिक असमानता का सामना करना पड़ता है। नए कृषि कानून और संबंधित चिंताएं, जैसे महिला किसान मंच के अनुसार नए कृषि कानूनों में किसानों को शोषण से बचाने के लिए MSP का उल्लेख ना होना प्रथम मुद्दा है। इससे महिला किसानों की सौदेबाजी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही महिलाएं ऐसी स्थिति में नहीं हैं जो एक सशक्त एजेंट के रूप में व्यापारियों और कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ होने वाले समझौतों को समझ सके या उस पर बातचीत कर सके। इस प्रकार किसानों को उपज खरीदने के लिए या अन्य सेवाओं के लिए इन संस्थाओं से समझौता करने में महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्पष्ट है कि किसानों को कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कॉरपोरेट्स बिना किसी सुरक्षा जाल या पर्याप्त निवारण तंत्र के उपजों की कीमतें तय करेंगे। इससे महिला कृषक अधिक प्रभावित होंगी। परिणामतः लघु, सीमांत और मध्यम किसानों को अपनी भूमि बड़े कृषि व्यवसायिक घरानों को बेचने और मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार को महिला किसानों की परेशानियों को भी समझना होगा, क्योंकि वर्तमान में हो रहे विरोध में वे पुरुषों के साथ बराबरी में शामिल हैं। महिला कृषक नए कृषि कानूनों से भी चिंतित हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य कभी असमानता या उनकी परेशानियों को कम करना नहीं रहा। अतः महिला किसानों को डर है कि नए कृषि कानूनों से लैंगिक असमानता में और वृद्धि हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषि की अन्य समर्थन प्रणालियों जैसे भंडारण सुविधाओं, परिवहन लागत और नए निवेश के लिए नकदी या पुराने बकायों का भुगतान करने के साथ साथ कृषि ऋण से संबंधित अन्य सेवाओं में भी लैंगिक भेदभाव है। साथ ही निवेश और बाजारों तक पहुंच में भी असमानता का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ समय से चल रहे किसान विरोध के दौरान कृषि में महिलाओं की भागीदारी पर बहस प्रारंभ हो गई है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन ने कहा था कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महिलाओं ने ही सर्वप्रथम फसली पौधों का प्रयोग प्रारंभ किया और खेती की कला और विज्ञान का विकास हुआ। उस समय पुरुष भोजन की तलाश में शिकार करने चले जाते थे और महिलाएं देसी पेड़ पौधों से बीज और फल एकत्रित करती थी। इस प्रकार भोजन, खाद, चारा, फाइबर और ईंधन के लिए खेती का विकास हुआ। कृषि में महिलाएं पर आम धारणा है कि भारत में जब भी कृषि संबंधी चर्चा की जाती है तो किसान के रूप में पुरुषों के बारे में ही सोचा जाता है। महिलाओं का नाम कृषि भूमि के मालिक के रूप में दर्ज न होने के कारण उनको किसानों की परिभाषा से बाहर रखा जाता है। कृषक के रूप में मान्यता न मिलने से महिलाएं नियमानुसार सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। सरकार भी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित नहीं है और महिलाओं को कृषि कार्य में सहायक या खेतीहर मजदूर के रूप में मान्यता देती है, ना कि कृषक के रूप में। विदित है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 18.8 करोड़ कृषक और 4 करोड़ कृषि श्रमिक हैं। इस समस्या का कारण सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक है और यह इस धारणा का परिणाम है कि खेती केवल पुरुषों का पेशा है। कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के कई उपाय हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे भूमि का स्वामित्व। घरेलू और कृषि भूमि के ऑनरशिप महिलाओं के नाम पर या पति पत्नी के संयुक्त नाम पर होने चाहिए। जमीन के कागजात होने पर महिलाओं को किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण आसानी से मिल सकेंगे। आधुनिक तकनीकों और प्रशिक्षण में महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर उन्हें ड्रोन संचालन, मैकेनाइज्ड खेती, जैविक खेती और कृषि में तकनीकों का इस्तेमाल की प्रशिक्षण देनी चाहिए। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर छोटे स्तर पर कृषि व्यवसाय जैसे डेयरी, मशरूम उत्पादन और बीज प्रसंस्करण के लिए धन मुहैया कराना चाहिए। FPO का गठन, महिला किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण करना चाहिए ताकि वे मंडियों में अपनी उपज का सही दाम खुद तय कर सकें। कृषि से जुड़ी नीतियों और बैठकों में महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। महिला किसान सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। सभी कृषि योजनाओं के बजट का एक निर्धारित हिस्सा महिला किसानों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद महिला किसान हाशिए पर हैं, जो शोषण के प्रति बहुत सुभेद हैं। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसानों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। यह आवश्यक है कि खेतों में पसीना बहाने वाले इन महिलाओं को उनका वास्तविक हक, उचित मजदूरी और पहचान मिले। यदि महिलाओं को अच्छा अवसर तथा सुविधा मिले तो वे देश की कृषि को द्वितीय हरित क्रांति की तरफ ले जाने के साथ देश के विकास का परिदृश्य भी बदल सकती है।
1: वाह बहन, बहुत अच्छा जानकारी और उपयोगी जानकारी मिलले हमरा सनी का ई वार्ता के माध्यम से, और इतना अच्छा जानकारी दे लेली हम अनु अंकिता जी का बहुत बहुत

वाह बहिन, बड़ी बढ़िया झूमर सुन लिए। उम्मीद करे छी तरासनी का भी अच्छा लगला था। तो अब बहिन अपना से सब विदा ले के समय हो रहला छे। अगला दिन फेनू से कुछ नया बात पर चर्चा करबे हम असनी। तब तक हमरा विदा दिए। सभ्य का राधा के नमस्कार।

घर आंगन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम अपने पटना केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा कर

0: करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक सबसे लंबी अवधि में निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में श्री चौधरी ने कहा कि उनके कार्यकाल में भारत के साथ साथ बिहार ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी बिहार को श्री मोदी का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। श्री चौधरी आज नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यह राशि अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। श्री चौधरी ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लोगों से शीघ्र आवेदन करने तथा आधार लिंक नहीं होने के कारण पेंशन से वंचित लाभुकों से जल्द आधार लिंक कराने की अपील की। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और बुडको के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास पिछले दिनों 11,53,00,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई थी। इकाई ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद कर उनकी जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू करेगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। पीआईबी ने कहा कि आरबीआई के अनुसार इस महीने के अंत तक कागजी नोटों को बंद करने या उनकी जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू करने की कोई योजना नहीं है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के टेढ़ाघाट में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
1: कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। गढ़ में दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता है।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
6: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
6: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
7: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास।

0: ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति विनोद राठौड़ एवं अलका याग्निक के स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: आप सुन रहे हैं चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं डेंजरस इश्क फिल्म से। गीतकार हैं शब्बीर अहमद, संगीतकार हिमेश रेशमिया और गायक कलाकार हैं राहत फतेह अली खान एवं तुलसी कुमार।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कसूर से। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और कुमार सानू। गीत समीर ने लिखे हैं, इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है चित्रपट से कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है रविंद्र संगीत कार्यक्रम। आज रविंद्र संगीत कार्यक्रम के कलाकार हैं चिन्मय चटर्जी।

आप सुन रहे थे रविंद्र संगीत कार्यक्रम। कलाकार थे चिन्मय चटर्जी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:20 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब से संध्या 5 बजे तक मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। संध्या 5 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।
1: पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी, आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता

0: और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण हैं।
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली, और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है, और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारे दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो हो, लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए, किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा नियम,
0: बहुत अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना निहा, कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सबका सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ, सच कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है, इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: जब हमें बहुत तेज भूख लगती है उसमें उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही, और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणियां अक्सर असमंजस में पड़ जाती है

0: किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए, ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम, धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है, इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
1: अरे बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं सोनाली जी।
0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीठ बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
1: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बेटी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनके गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे जो मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
0: डेवलप हो जाते हैं।
1: हाँ, वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझ कर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं,
0: उसे
1: है।
0: करेला भी दीजिए।
1: हाँ, उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
0: और हम ऐसा कहते ना कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
1: हर
0: आप जो खाते
1: थोड़ी थोड़ी
0: सब थोड़ी थोड़ी दो। हाँ, अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद।
0: सुनते हैं।

मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरी नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने
1: बहुत अच्छी
0: समझदार
1: बात है,
0: इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: तो घर की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी, है
1: हाँ।
0: ना।
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़
0: संवाद को।
1: दिया। हाँ वही।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है, इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल की उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो, पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है।
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना।
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं इसलिए
0: अभी
1: ऐसी।
0: मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी, और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी, मैं वही खाऊंगी, क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डाला होता है उसमें, और
1: सादे होते
0: उसमें
1: हैं।
0: टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं, जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब
0: जब
1: आप
0: हम
1: उन्हें
0: देंगे,
1: चखाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा
0: चलेगा।
1: कि ये चीजें कैसी लगती हैं। तो
0: तो ये
1: जैसे
0: थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे,
1: हाँ
0: और
1: ये
0: दोस्त
1: तो
0: सहेली
1: है।
0: ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको, तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतू, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है। छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है। घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है।
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।

0: बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते
1: हाँ
0: कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं। कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले हैं।
1: सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को, कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे, आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा। जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे, तो भी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है, तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है, रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले। ऐसा नहीं, बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथी लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो। जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए। बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं, संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है, उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए। उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है, और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग, कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
0: या
1: ये
0: फिर
1: कर लो।
0: खाना तैयार है कि नहीं,
1: नहीं,
0: हम आए क्या
1: हाँ
0: डाइनिंग टेबल पे, इस तरह से। यानी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया। और वो रहनिया है जो, वो भी मैसेज में लिख देती है कि हाँ हाँ खाना रेडी है, आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें?
1: गाना सुन लेते हैं, संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है।
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

0: व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो

0: तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें। बचे हुए तेल में पंचफोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें। इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसें।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही है ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत टेस्टी हो
0: चाहिए।
1: गया ना। एक हमारे साथी ने लिखा है, सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है। पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना, उड़द, जो आपको पसंद है। बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे। बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे। मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी, इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले। 5 फोड़न का तड़का दे। बैगन को भून कर निकाले। अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले। अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले। पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे। थोड़ा पानी डाल दे और इसमें धीमी आंच तक पकने दे। इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियां जरूर बनती है। पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती। मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं। और आप क्या करें,
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी एक श्लोक में बड़ी मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखे स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में। तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, वो कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता है। अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय मैं इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा
1: जी रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से। रिश्ता है ही
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
2: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
2: पास।
1: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
2: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
2: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
1: जी,
2: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें

0: बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक मैं देख लूं,
1: क्या बात
0: जैसे
1: है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: जी।
0: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव्य की भांति मैं वहां से चला जाता
1: क्या
0: था।
1: बात है।
0: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहां मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था, तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह।
0: आगे देखो
1: हाँ,
0: तो रघुपति सहाय डाक रहते थे,
1: गजब।
0: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे,
1: हाँ,
0: बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था, तो
1: जी।
0: या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया। और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है,
1: जी।
0: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है,
1: जी।
0: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं।
1: जी।
0: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूं, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था, तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था,
1: जी।
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है, तो वो परिवेश का असर क्या होता है? एक असर होता है परिवार का। तो मेरे
1: जी।
0: परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था,
1: अच्छा।
0: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर
1: संबंध
0: दूर
1: नहीं
0: से
1: होता है। जी।
0: रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है, तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है, वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूं।
1: जी। क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी, और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूंगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान,
1: जी।
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी
1: 3 पेज
0: और
1: की
0: तीन पेज
1: चिट्ठी
0: की चिट्ठी,
1: सर्वेश्वर जी के
0: और हाँ
1: पास।
0: उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, और जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा,
1: लिख
0: और जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने सब लिख
1: डाला।
0: दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा, मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई? तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है, मैंने कहा नहीं।

0: लौटाई दी, बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो।
1: हाँ
0: तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी, तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्त लिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने
1: प्रयास
0: इतनी कम
1: किया।
0: कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ। तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है।
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहां रहा हूं,
1: हाँ,
0: तो वहां के पानी में कुछ ऐसा है तो वो
1: कि
0: पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी।
1: हाँ,
0: और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूं जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल।
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है। और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी, क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
0: नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की
1: ये
0: प्रस्तुति थी।
1: प्रस्तुति
0: तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। किस बोले अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे बड़ी
0: चलेगी।
1: सोच।
0: तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा, लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: जी
0: सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए, अपने को एक्सप्रेस करते करते
1: जी,
0: वो एक गवैया बन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं। और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
0: तीन लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और वो मुझे मिला नहीं।
1: अच्छा।
0: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक।
1: अच्छा।
0: और शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवमयन कौन है जो पोस्टमैन है, मैंने कहा मैं हूँ। तो बोला आई कार्ड लाओ, तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो, मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो, कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है, मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए, मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक।
0: हाँ, जो कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी
1: जी।
0: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूँ। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी, जी जी, तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
0: संग्रह वाली कविता एक
1: दो लाइन सुना,
0: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है, तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के पे जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी
1: जी,
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी पोस्ट बॉक्स में, मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली।
1: ओ।
0: और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया, उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ, और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा, मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का
1: बिल्कुल
0: सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई, उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी जी
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc Part 1 में रहा हूंगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी आप अगर सुनाए हमारे
0: हाँ,
1: को तो 4 लाइन
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, कुशल है।
1: ओह गजब।
0: घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंद और सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे।
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार,
1: दूसरी
0: साये में
1: चीज,
0: धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साये में धूप।
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था, तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं, फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं
0: हाँ,
1: तो व्यंग
0: अनकहा
1: नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा।
0: अनकहा।
1: तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए,
0: जी
1: तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो
0: वाह,
1: अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया। फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
0: जी जी
1: तो हम
0: जी
1: उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी, लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में, तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे,
0: जी जी
1: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो, और कविता का की जो रुचि है, ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
0: जी, तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक, हाँ, जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुदित हुआ, इसके बारे में बताइए, इसकी क्या
1: नाटक
0: कहानी है।
1: क्या था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभाष जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
0: जनसत्ता के संपादक थे,
1: हाँ, तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
0: जी,
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
0: जी,
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं।
0: जी,
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं, मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया तो एक उपन्यास मिला मुझे, लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
0: अच्छा अच्छा
1: कि मैंने की लंबी कविता में लिखूंगा, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
0: जी जी।
1: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे। मैं उनके पास वो नाटक लेके गया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
0: जी जी।
1: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: इसका मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है।
0: जी जी।
1: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
0: क्या बात है।
1: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा।
0: जी।
1: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनका आशीष था
0: जी।
1: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था
0: जी।
1: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने
0: कहां पर था, किस
1: वेदा कुंभा थिएटर में।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बात के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
1: जी, 9 भाषाओं में अब तक
0: ये मराठी में भी
1: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
0: जी
1: इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
0: लोई नामकरण कैसे,
1: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
0: जी। बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
1: तुमको देखा तो ये ख्याल आया।

0: जिंदगी
1: धूप
0: तुम घना
1: तुम
0: साया।
1: घना साया।
0: साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह
1: जी,
0: की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
1: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
0: जी क्या बात है, तो
1: हाँ
0: ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है
1: हाँ
0: इस बात से।

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी, हम जानना चाहते हैं अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा प्रदेश नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है। बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह
0: वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
0: वाह।
1: तो ये मलाला के लिए ये कविता। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे, मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
0: क्या बात है, अगर 4 लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
1: तो एक कविता है आंसू की खबर।
0: जी सुनाए।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
0: क्या बात है।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
0: वाह वाह, मार्मिक कविता।
1: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे, एक माँ, एक खबर।
0: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को।
1: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए। हाँ। पान खाएं सैया हमार।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहाँ की यादें ताज़ा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए, मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: जी
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात है,
1: तुझे तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी,
1: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत
1: तो हम
0: बढ़िया।
1: जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये है कि मैं पहुंच जाता हूं जब
0: जी
1: हांट करता है या उससे पहले ही। हाँ,
0: जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहां आपका
1: क्योंकि
0: बचपन
1: आपको
0: बीता।
1: लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है,
0: जी क्या बात है।
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: देखिए,
0: पहुंचे?
1: पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके,
0: जी।
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं,
0: जी।
1: वहाँ जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं,
0: बिल्कुल।
1: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
0: जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको,
1: नहीं नहीं
0: या
1: होने
0: यहाँ
1: था क्या, हम तो
0: सकारात्मक
1: समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो वो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो,
0: जी।
1: हमने क्या कहा उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम खा कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
0: कुछ करने
1: हम
0: आए हैं।
1: लगाने आए हैं,
0: जी
1: हम
0: बिल्कुल,
1: कुछ
0: क्या बात
1: बोने
0: है।
1: आए हैं, हम कुछ
0: सृजन
1: सृजन
0: करने
1: करने
0: आए
1: आए
0: हैं।
1: हैं।
0: जी।
1: तो हम इस भाव से आए, तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत यह, मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती मेरे पास, चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास, तो
0: नजरिया।
1: अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते, आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
0: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे, क्या
1: पहली
0: क्या
1: बार
0: थी सीढ़ी
1: हम
0: आपका?
1: देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा, तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया,
0: जी।
1: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा

0: 17 वर्षों से हूँ, तो एक टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए, फायदा तो होता है, उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
1: जी।
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं
1: जी,
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
1: जी,
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां
1: जी,
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
1: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप बहुत क्या करना चाहते हैं?
0: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है,
1: बिल्कुल,
0: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है, लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लीगेसी थी वो लीगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लीगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: कविता माने कविता नहीं रही
1: जी, जी।
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है तो वो फिर प्रचार की कविता है, ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे
1: जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता?
0: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो आप वो जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा
1: जी। जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
0: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है, एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा, तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक

0: बेहतर पत्रकार क्या बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत धन्यवाद नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के मेहमान।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार युवा साथियों, युवाओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शालिनी और अगले कुछ समय तक रहूंगी आपके साथ। आशा करती हूं आप सभी हमारी तरह स्वस्थ और आनंदित होंगे, साथ ही रेडियो और न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए हमसे जुड़ भी गए होंगे। आइए कार्यक्रम रूपरेखा को जान लेते हैं। साथियों, आज के युववाणी में आपके लिए हमने तैयार की है एक विशेष और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करेंगे आज की चर्चा से। विषय होगा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और युवाओं के बीच स्मार्टफोन की लत। इसके बाद होगा हमारा डेली सेगमेंट डेली ट्रिविया, जिसमें मिलेंगे आकाशवाणी और रेडियो से जुड़ा रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्य। फिर बारी आएगी साप्ताहिक स्तंभ मार्गदर्शन की, जहां विशेषज्ञों के विचार और उपयोगी सुझाव आपके भविष्य को नई दिशा देंगे। इसके बाद प्रस्तुत होगा प्रश्न मंच। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम लेकर आएंगे समसामयिकी और साथ ही फन फैक्ट। और हाँ, पूरे कार्यक्रम के दौरान आपका मनोरंजन करेंगे चुनिंदा लोकप्रिय बॉलीवुड गीत। तो बने रहिए हमारे साथ और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले प्रस्तुत है आज का पहला ट्रैक फिल्म दबंग से। इस गाने को अपनी प्यारी सी आवाज़ दी है श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने।

0: दोस्तों रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
4: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ, सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक

0: अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से।
2: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पुनः स्वागत है दोस्तों आपके अपने पसंदीदा शो युववाणी में। बढ़ते हैं आज की चर्चा की ओर। विषय है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देना है। आज के वैश्विक युग में जब दुनिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चुनौतियों का सामना कर रही है, तब संवाद शांति और सद्भाव स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम बन जाता है। यह दिवस हमें सिखाता है कि विविधता मानव समाज की शक्ति है। विभिन्न सभ्यताओं के लोग जब एक दूसरे के विचारों, मूल्यों और जीवन शैली को समझने का प्रयास करते हैं तो पूर्वाग्रह और गलतफहमियां कम होती है। संवाद के माध्यम से राष्ट्रों के बीच मित्रता, सहयोग और विश्वास को भी मजबूत किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की स्थापना इसलिए की ताकि विश्व भर में सहिष्णुता, समावेशिता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन मिले। शिक्षा, कला, साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया जाता है। आज के समय में सोशल मीडिया और संचार तकनीकों ने संवाद को और अधिक सरल बना दिया है। इन माध्यमों का सकारात्मक उपयोग करके हम विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं और वैश्विक भाईचारे की भावना को मजबूत कर सकते हैं। अंततः अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद हमें यह संदेश देता है कि शांति, विकास और मानवता की प्रगति के लिए आपसी सम्मान और संवाद अत्यंत आवश्यक है। विविधताओं को स्वीकार करके और एक दूसरे से सीख कर ही हम एक बेहतर, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व का निर्माण कर सकते हैं। श्रोता बंधुओं, ये थी आज की चर्चा। विषय था सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह विशेष चर्चा आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। सभ्यताओं के बीच संवाद हमें नई बातें सीखने और अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाने की प्रेरणा देता है। और जब बात हो ज्ञान बढ़ाने की, तो युववाणी में हमारा अगला पड़ाव भी कुछ ऐसा ही है। अब समय है हमारे रोचक और ज्ञानवर्धक खंड डेली ट्रिविया की, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एक दिलचस्प सवाल जो आपकी सामान्य जानकारी में करेगा इजाफा। तो आज का प्रश्न सुन लीजिए, रेडियो के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, रेडियो के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? आप इस प्रश्न का उत्तर सोचिए, हम अगले पड़ाव में इसका सही उत्तर बताएंगे। दोस्तों, ज्ञान और तकनीक के इस दौर में स्मार्टफोन अब हमारे दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है। जहां इसके अनेक फायदे हैं, वहीं इसका अत्यधिक उपयोग युवाओं के लिए चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के अगले खंड में हम बात करेंगे युवाओं में स्मार्टफोन की लत। आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह संचार, शिक्षा, मनोरंजन और जानकारी प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग युवाओं में एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिसे स्मार्टफोन की लत कहा जाता है। युवा दिन का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो देखने और चैटिंग में बिताते हैं। इससे उनका समय नष्ट होता है और पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लगातार स्मार्टफोन के उपयोग से एकाग्रता में कमी, स्मरण शक्ति कमजोर होना और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा देर रात तक फोन चलाने से नींद पूरी नहीं होती, जिससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए युवाओं को स्मार्टफोन का सीमित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग करना चाहिए। माता पिता और शिक्षकों को भी बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए तथा उन्हें खेल, पुस्तक, पठन और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए। समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स अपनाना भी लाभदायक हो सकता है। स्मार्टफोन एक उपयोगी साधन है, लेकिन इसकी लत युवाओं के भविष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए इसका संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग आवश्यक है। श्रोता बंधुओं, अब बढ़ते हैं आगे हमारे साप्ताहिक स्तंभ मार्गदर्शन की ओर। विषय है एक्टिंग में करियर। भेंट वार्ताकार है गौतम सिंह, भेंट करता है सौरभ कुमार।
7: नमस्कार श्रोताओं, हम मौजूद हैं आज आपके साथ एक विशेष मेहमान को लेकर। दोस्तों, यूं तो एक्टिंग को सभी लोग पसंद करते हैं। प्रतिदिन हम सिनेमा में या फिर टेलीविजन पे अभिनेताओं को अभिनय करते देख

0: देखते हैं तो हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि काश हम भी ऐसे होते और एक्टिंग करते। तो हम आज इसी एक्टिंग से जुड़े एक विषय पर आपसे बात करेंगे, यानी अभिनय में कैरियर कैसे बनाएं। और इसके लिए हमने आज एक खास मेहमान को बुलाया है, और हमारे खास मेहमान जो हैं उनको आपने कई बार देखा है टेलीविजन पे, फिल्मों में भी। जी हाँ, वे आजकल कुमकुम भाग्य सीरियल में आ रहे हैं। इसके अलावा वे काफ़ी सारे सीरियल्स में काम कर चुके हैं, आपने उन्हें फोर्स मूवी में भी देखा होगा और किक मूवी में भी। तो हमारे साथ हैं हमारे ही पास के मुंगेर जिले के गौतम कुमार सिंह। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत थैंक यू सो मच आकाशवाणी के जितने एम्प्लॉइज हैं और जितने ऑडियंस हैं, मैं सबको तहे दिल से नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच भागलपुर आकाशवाणी जो मुझे बुलाया और आमंत्रित किया, थैंक यू सो मच।
0: गौतम जी, आपने एक्टिंग को कैरियर क्यों चुना?
1: देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि एक्टर या आम इंसान या एक्टिंग फील्ड से भी अलग लोगों के बारे में देखा जाए या सुना जाए, तो सबसे पहले लोगों को अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात सुनना चाहिए। तो मेरे अंदर भी मैंने अपने मन की बात को सुना, दिल की बात को सुना, और मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक एक्टर छुपा हुआ, कहीं ना मेरे अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है जो दिल में हमेशा कशक रहता था टीवी या फिल्म देख के। शायद लगता है मैं ऐसा रोल कर सकता हूँ, ऐसी आवाज में निकाल सकता हूँ, ऐसा अभिनय में कर सकता हूँ, ऐसा एक्सप्रेशन में दे सकता हूँ, ऐसे मैं रो सकता हूँ, ऐसे मैं हंस सकता हूँ। तो डरते डरते एक्चुअली क्या है कि मैं मुंगेर जिला से हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मुंगेर एक छोटा सा टाउन है, कस्बा है बिहार में, लेकिन नाम इसका हर जगह है मुंगेर का। तो मेरे अंदर भी था कि शायद मेरी फैमिली या मेरे पेरेंट्स से मुझे चांस ना दे कि यार तुम एक्टिंग में क्यों जाना चाहते हो, ये तो हमारा फील्ड ही नहीं है, हमारे लोग, हमारे घर खानदान के लोग ऐसे फील्ड में कभी गए ही नहीं, ये हमारे सोच से भी पड़े है, हमारा समाज ही अलाउ नहीं करता है। तो मैंने दिल की आवाज को सुना और अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे एक चांस दो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो आज प्रूफ करके दिखाया, तो आप उसके सामने हो।
0: जी गौतम जी, आपने इस एक्टिंग के लिए कहीं विधिवत रूप से कोई कोर्स किया है क्या?
1: हाँ जी, अभिनय के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस बात को, जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं या जो एक्टर बनने की चाहत या सपना रखे हैं, तो अभिनय का कोर्स करना बहुत जरूरी है। और मैं लोगों को सबसे पहले भ्रम तोड़ना चाहता हूँ कि हर चीज में पढ़ाई है, डॉक्टर में पढ़ाई है, इंजीनियर में पढ़ाई है, आप फोर्स में जाते हो उसमें भी पढ़ाई होता है, अगर अपर लेवल पर जाते हो तो हर चीज में पढ़ाई, लेकिन लोग अगर एक्टिंग के बारे में सोचते हैं तो एक्टिंग में सोचते हैं मिथ्या है यार, एक्टिंग के लिए क्या पढ़ाई हो सकता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ एक्टिंग भी पढ़ाई है, एक्टिंग एक तपस्या है, और एक्टिंग को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो एक कोर्स बहुत ही जरूरी है एक्टिंग के लिए, अगर अच्छा एक्टर बनना चाहते हो और अच्छी एक्टिंग समझ में आपको आती है और अच्छी फिल्में देखना चाहते हो तो पढ़ाई लिखाई होना बहुत ही जरूरी है, और अभिनय के लिए किताबें पढ़ना अति आवश्यक है।
0: जी, आपने काफी अच्छी बातें हमारे युवाओं को बताई, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक्टिंग एज ए करियर ऑप्शन कितना सफल है?
1: एज एन करियर तो बहुत सफल है, अगर करियर नहीं होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। बहुत सारे उदाहरण है आज के लोग, आज के टाइम में के लोग अपना इसको करियर बना चुके, प्रोफेशन बना चुके, इसी की रोटी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। तो अगर आप दिल से चाहते हैं, आज का समय बदल चुका, डिजिटल इंडिया हो चुका, हर चीज आपके, इतने सारे वेब सीरीज आ चुके, इतनी सारी फिल्में आ रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट का सीरियल्स आ रहे हैं, फिल्म आ रहा है, तो और तो इसमें लोग जाकर जो काम करते हैं व्यक्ति, तो उसमें अच्छा अमाउंट मिलता है, पैसा मिलता है, और एक करियर भी है। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो अच्छे रोल मिलेंगे, बुरे एक्टर हैं तो उस टाइप के रोल मिलेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चांस बहुत खुल चुका है डिजिटल इंडिया में, और बहुत सारे लोग, मतलब कॉन्सेप्ट बदल चुका है, फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे सीरियल इंडस्ट्री हो, बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारे समाज से, हमारे लोगों के बीच से कॉन्सेप्ट उठा के और आज स्टार बन गए हैं लोग। तो करियर बहुत जरूरी है, और करियर है इसमें।
0: जी, काफी अच्छी जानकारी आपने दी। हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि जैसे आप एक छोटे शहर से इतने बड़े पर्दे पे गए, मुंबई जैसी जगह पे गए, आपने दिल्ली में भी कोर्स किया है, तो इस दौरान आपको किन किन कठिनाइयों से जूझना पड़ा है और किस तरह से आपने इन समस्याओं को दूर किया है और अपने पथ को आगे सुदृढ़ किया है?
1: देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात बोला कि मतलब किन किन परिस्थितियां, तो अगर मैं, अगर फैमिली सबसे पहले तो अलाउ, सबसे पहले एक्टिंग फील्ड में बहुत कम फैमिली है कि अब शायद करने लगे, हमारे टाइम में तो फैमिली सोच भी नहीं सकती थी यार एक्टर बनेगा, आगे करेगा क्या, एक्टिंग में करियर कैसे बना सकता है। तो बहुत सारे लोग को आज भी होता होगा जो सुन रहे होंगे, शायद इनको भी लगता होगा कि भाई बात सही कह रहे हैं ये। तो परेशानी बहुत हुई, मेरे साथ भी हुई, जब मैं कोर्स करता था तो कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं फ्री में जाता था, तो कई बार मुझे एक आध बार कंडक्टर ने भी उतार दिया भाई पैसे नहीं है, तो

0: तो मैं कई बार झूठ बोल के भी जाता था, भाई मैं दिल्ली पुलिस का स्टाफ हूँ या मैं फोर्स का काम फोर्स में हूँ, तो समझते थे कि शायद ये किसी विभाग में है तो पैसे नहीं लेते थे। लेकिन कई बार मेरे पास भी खाने के पैसे नहीं होते थे, कई बार मुझे रिहर्सल में जाना पड़ता था तो पैसे नहीं होते थे, इस कारण मैं गुरुद्वारा में भी कई बार खाना खाया हूँ। तो प्रॉब्लम तो होता है, प्रॉब्लम हर डिपार्टमेंट में है, पर लेकिन एक चाहत ज़रूर थी कि नहीं यार कुछ भी हो मुझे एक्टर बनना है, मुझे एम हासिल करना है और जो मेरे अभिनय जो कला थी उन लोगों के सामने मुझे लाना है, और आज मैंने प्रूफ किया आप लोगों के सामने।
1: जी काफी अच्छी बात आपने बताई कि हमें हर वक्त अपने एम की ओर ध्यान देना चाहिए।
0: हाँ, हाँ, डरना नहीं चाहिए, मैं बताऊं जो डरो मत, जो होगा देखा जाएगा, हार तो हार जीत तो जीत, लेकिन कभी दिल में ये कसक ना हो यार मैंने ये काम किया नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ।
1: जी आपने जो अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी वो क्या डायरेक्ट फिल्म में या फिर एक्टिंग में आ गए थे या थिएटर से किया?
0: पहले मैंने थिएटर किया, और थिएटर में भी सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में दो तीन इंस्टीट्यूशन है जो सरकारी है, जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे श्री राम सेंटर है, श्री राम आर्ट्स परफॉर्मिंग सेंटर मंडी हाउस, NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारत नाट्य तेंदु है लखनऊ में जिसको BNA कहते हैं, और आप FTI तो जानते ही है पुणे में है। तो ये चार पांच है जो सरकार के हैं, तो यहाँ से शुल्क बहुत कम है। यहाँ पे जो देश के अच्छे अच्छे जो थिएटर के डायरेक्टर हैं वहाँ बच्चों को एक्टिंग सिखाने के लिए आते हैं, इसमें बकायदा एग्जाम लिया जाता है, ऑडिशन लिया जाता है, नाटक के बारे में पूछा जाता है आपने कितने नाटक किए, नाटक के बारे में कितनी जानकारी रहते हैं आप, और एक्टर अभिनय आपने क्यों चुना, जैसे मैंने बोला तो हमारे साथ भी यही हुआ है। लेकिन सरकार के द्वारा 3-4-5 इंस्टीट्यूशन है जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है।
1: जी गौतम जी, हम अपनी बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि बातचीत जारी रखने से बीच में श्रोताओं का मनोरंजन भी हो, तो बताइए आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है क्या?
0: जरूर है, मैं हमेशा सुनता हूँ, एक बॉर्डर फिल्म आई थी, ऐसे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ एक बहुत सारा अच्छा गाना है, ऐ जाते हुए लम्हो जरा रुक जा, हमको भी जाना है कुछ बातें करना है, ऐसा कुछ एक सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग।
1: जी जी, जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। जी तो हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद से ये खूबसूरत सा गाना सुना रहे हैं, और इसके बाद हम फिर से वापस आएंगे। थैंक यू।

0: इस खूबसूरत से गाने के बाद हम फिर से आ गए हैं अपने गेस्ट के पास। हमने अभी तक बातें की है थिएटर के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपने थिएटर में एक्टिंग किया और जो अभी आप सीरियल्स में या फिर फिल्मों में जो आपने एक्टिंग की, इन दोनों में क्या डिफरेंस पाया आपने?
1: नहीं नहीं देखिए, एक्टिंग एक्टिंग है, तो चाहे फौजी बॉर्डर पर हो या किसी मतलब जिले के थाने पे हो, बंदूक चलाना वो भूलता नहीं हो, तो एक्टिंग एक्टिंग ही है। तो आप थिएटर की एक्टिंग करें चाहे आप टीवी की एक्टिंग करें, एक्टिंग है, लेकिन इसकी परिभाषा चेंज हो जाती है। थिएटर में एक्चुअली हम लाउड करते हैं, लाउड का मतलब ये होता है कि ऑडियंस आपकी दूर में होती है, जो भी आपको जेस्चर दिखाना है वो बड़ा दिखाना है, लेकिन टीवी में ऐसा नहीं है। टीवी में एक ब्लॉक फिक्स है, कैमरे के सामने आपको एक्टिंग करना पड़ता है और कुछ बातें टेक्निकल आपको ध्यान में रख के करना पड़ता है जो एज एन डायरेक्टर को समझ में आए, एज एन ऑडियंस को समझ में आए। तो एक्टिंग थोड़ा सा 19-20 का खेल है टीवी और थिएटर में, लेकिन मतलब प्रोसेस सेम है और थोड़ा सा 19-20 का है अंतर है, जो एक एक्टर को समझना पड़ेगा। कई बार मेरे साथ भी डायरेक्टर बोलते हैं यार बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है, बहुत ज्यादा नकली हो गया, थिएटरिज्म लग रहा है। तो हमें लगता है कि नहीं यार थोड़ा रियलिज्म करना है, थोड़ा सच्चाई डालना है, तो हम लोग जैसे नॉर्मल बात करते हैं तो उस तरह करना पड़ता है, रिएक्ट या एक्शन में एक्टिंग करना पड़ता है हमें, तो थोड़ा सा अंतर 19-20 का होता है बस।
0: जी, काफी अच्छी बात आपने बताई। हमारे काफी सारे श्रोता हैं जिनको एक्टिंग में बहुत ही दिलचस्पी तो होती है, लेकिन चूंकि वे छोटे स्तर पे होते हैं यानी छोटे शहरों में होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम कुछ करें एक्टिंग में, तो छोटे स्तर पे उनको क्या करना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने अपनी चाहत रखा है एक्टिंग का, जो सपने देखे हैं कि मैं टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं, तो सबसे पहले क्या है कि एक्टिंग सीखने के लिए आप किताबें जरूर पढ़ें। आपको ये जरूरत नहीं है कि आप किसी ड्रामा स्कूल में जाकर भर्ती हो जाए, किताबें पढ़े और विजुलाइजेशन करें कि हाँ यार ये जो कहानी है, ये राजा है, ये भिखारी है, या जो भी रोल है, सूबेदार है, हवलदार है, उसको सोचे कि आखिर वो कैसा हो सकता है, कैसे के किस तरह किस आवाज में उसने निकाली होगी। तो किताबें पढ़ना अति आवश्यक है। और हाँ, अगर आपके शहर में कला मंच है कुछ कि नाटक कर सकते हैं तो वहां जाएं। पहले 2-4 महीना आपको समझने में लगेगा कि थिएटर कैसे करते हैं, और थिएटर का सबसे बड़ा प्रोसेस है थिएटर जिंदगी जीना सिखा देती है। आज मैं बहुत स्ट्रांग हूं तो इस कारण हूं कि थिएटर मैंने देखा है, थिएटर मैंने सीखा है, और थिएटर में मुझे इस तरह तुरंत रोल नहीं मिला, 6 महीने मुझे बैक टू द कैमरा काम करना पड़ा, उसके बाद मुझे एक छोटा सा रोल मिला, उसमें भी मुझे प्रूफ करना पड़ा। जब कोई एक्टर नहीं आता था तो उसकी मैं प्रॉक्सी करता था बैठ के कि भाई वो नहीं आया है और आपका शो छूटे नहीं, कंटिन्यू रिहर्सल होता रहे, तब मैं डमी बन के उसकी एक्टिंग करता था ताकि दूसरे एक्टर को साथ मिल सके मेरा। तो जरूर है कि आप ड्रामा आप घर में भी कर सकते हैं, देख के भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने समाज से भी आप जरूर सीखें।
0: जी हाँ, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई। हम आशा करते हैं कि हमारे जो ऐसे श्रोता है जो एक्टिंग करना चाहते हैं वो इससे जरूर सीख लेंगे। और अक्सर हमारे आसपास ये देखा गया है कि कुछ लोग के दिल में एक भ्रम होता है कि हमारा जो पर्सनैलिटी है ये इतना अच्छा नहीं है, हम अमिताभ बच्चन की तरह नहीं है, लेकिन उनके दिल में चाहत होती है कि हम एक्टिंग करें।
1: हाँ,
0: तो उनके लिए कोई ऑप्शन है क्या इंडस्ट्री में?
1: नहीं नहीं जरूर है, ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं शुरुआती दौर में था, तो मतलब अपने ही लोग हंसते थे यार एक्टर कैसे बनेगा, कैसे हो सकता है, हमारी फील्ड के तो लोग हैं ही नहीं, हमारे घर खानदान के तो लोग हैं ही नहीं, कैसे सोच सकता है। तो लेकिन वो सारी चीजों को मैंने तोड़ा और खुद आगे बढ़ा। और जहां तक बात है कि भाई आपके लुक अच्छा नहीं है, तो आज देखिए कि बहुत सारे ऐसे एक्टर है जो नॉर्मल लुक में है। ओम पुरी साहब देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखिए, आप अभी नसुद्दीन शाह देखिए, या 2-3 एक्टर का मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और संजय मिश्रा साहब देखिए, ये लोग बहुत कमाल के हैं। तो लुक अब मायने खत्म हो गया, आप अच्छी एक्टिंग करें, लोगों को आपको पसंद आना चाहिए। अब वो 90 का 85-86 का बच्चन साहब वाला नहीं कि लड़का मतलब जो एक्टर हो वो 6 फीट का हो और लंबा चौड़ा हो, हाथे उसके मजबूत,

0: हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल भी हैं, आपको एक्टिंग अच्छी लगती है, एक्टिंग आप अच्छा करते हैं, ऑडियंस पे कैरेक्टर का छाप छोड़ते हैं, तो लोग बहुत ज्यादा प्यार करेंगे और आपको बहुत पसंद करेंगे। तो लुक वुक अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, लुक का मायना कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट आज के टाइम में कॉन्सेप्ट मजबूत है। बहुत सारी फिल्मों में देखेंगे कि हीरो मजबूत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना मजबूत है कि हीरो को मजबूत कर दिया। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आज प्रोड्यूसर भी चाहता है यार कि हीरो चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट, हीरो छोटा भी चलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा मजबूत होना चाहिए।
1: जी, आप हमारे बीच में भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इनसे फायदा मिलेगा।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर।
1: बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ युवा जाते हैं मायानगरी में और वहां पे उनका कैरियर सही से चल नहीं पाता है, कैरियर खराब भी होने लगता है। तो इस स्थिति में क्या उनको कोई बैकअप प्लान रखना चाहिए या उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं?
0: नहीं, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका करियर चल नहीं पाता है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है मेरे भाई, पेशेंस बहुत। मैं थोड़ा सा लकी था कि मुझे जाते के साथ रोल मिल गए, और जब एक रोल मिला तो दूसरे रोल में मैंने प्रूव किया, तीसरे, तो लोगों को अच्छा लगा यार अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टिंग करता है, तो इसको दूसरे रोल में ट्राई करो, इस रोल में उस रोल में डालो। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किस्मत नहीं है, रोल मिलता है बहुत दिनों के बाद फिर नहीं मिलता, उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो बैकअप का जहां बात है, बैकअप तो रहना बहुत ही अति आवश्यक है। बैकअप के लिए भी आजकल हो गए हैं, बहुत सारे एक्टर हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, रेडियो ड्रामा करते हैं, इसी तरह काम सरवाइव करते हैं। लेकिन अगर मोटो अगर सही है तो जरूर काम मिलेगा और करिए।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे मार्गदर्शन में भेंटवार्ता, विषय था एक्टिंग में करियर। भेंटवार्ताकार थे गौतम सिंह, भेंटकर्ता थे सौरभ कुमार। और अब समय है हमारे साप्ताहिक खंड प्रश्न मंच का। पहले पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हमने प्रश्न किया था, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। आज का हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किन के द्वारा की गई है? अपना उत्तर हमें अवश्य भेजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अब दैनिक स्तंभ फन फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा भारत की आवाज़, संस्कृति और विविधता की अनूठी कहानी को दुनिया तक पहुंचाती रही है। आइए अब टेलीट्रिविया का उत्तर भी जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था, रेडियो के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? और इसका सही उत्तर है जगदीश चंद्र बोस को। अब समय है दुनिया भर की ताज़ा और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आइए बात करते हैं सामसामयिक खबरों पर। प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने दुनिया में सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। श्रीलंका के भाला फेंक खिलाड़ी रुमेश थरंगा पथिरागे 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई एथलेटिक बन गए हैं। आज के समसामयिक खबरों में इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ ये खबरें आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुमूल्य साबित होंगे। अब अपनी रेडियो दोस्त शालिनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और शासा तिरुपति की आवाज में फिल्म दिल बेचारा से ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं शंकर महादेवन, सान और केके की आवाज में फिल्म दिल चाहता है का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में चलिए बढ़ते हैं एक बार फिर से आगे और सुनते हैं हनी बनी और सागर की आवाज़ में फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं सागर ने, संगीत है खुद हनी बनी का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म लापता लेडी से अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं प्रशांत पांडे ने, संगीत है राम संपत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आइए कार्यक्रम विवरण में जानते हैं हमारी आज की सभा के शेष और हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही पलों बाद यानी कि शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। आज शाम 7:10 पर आप सुनेंगे विशेष भेंटवार्ता में विधि व्यवस्था और पुलिसिंग पर श्री राकेश कुमार से भेंट करता होंगे कुसुमाकर दुबे। आज शाम 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, सुरलहरी कलाकार होंगे सुनील कुमार मिश्र। आज रात 8 बजे से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आज रात 10 बजे से आप सुनेंगे कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और आज रात 10:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। श्रोताओं, अब एक नज़र हमारी कल की सभा की ओर। हमारी कल की सभा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर, जिसमें 5:55 पर आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम। 6:05 पर आप सुनेंगे चिंतन मनन कार्यक्रम। कल प्रातः 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कल प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे बच्चों में डायरिया विषय पर डॉक्टर नवजीवन से भेंट करता होंगे श्रीनिवास सहाय। कल प्रातः 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान पाठ। कल प्रातः 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, जहां आप जानेंगे मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां और कल का इतिहास। साथ ही रसरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे शंकर मिश्र नाहर से सुगम संगीत। कार्यक्रम में आगे 7:20 से कथा सागर में आप सुनेंगे कहानी आधी रोटी पूरा आसमान। इसी कहानीकार होंगी कुमारी शालिनी। कार्यक्रम में उसके बाद 7:30 से आप सुनेंगे फिल्मी गीत। कल दिन के 9:06 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार होंगे श्यामानंद झा। कल दिन के 10 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे नाटक बदलता गांव, इसके लेखक होंगे धनंजय मिश्र और प्रस्तुतकर्ता होंगे अमित कुमार। कल दिन के 11 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत नई फिल्मों से। 11:30 से आप सुनेंगे कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कल दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। कल दोपहर 1 बजे से आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम, लोकरंग कलाकार होंगे वीरेंद्र कुमार ठाकुर। कल दोपहर 1:30 से आप सुनेंगे धारावाहिक गंगा के सुरताल, जिसके लेखक होंगे रमेश रमन। कल दोपहर 2:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत चित्रपट से। कल दोपहर बाद 3 बजे से आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग, जहां कलाकार होंगे जगजीत सिंह। कल शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। कल शाम 5:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। कल शाम 7:10 पर आप सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार होंगे वासुकी प्रसाद यादव। कल शाम 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, सुरलहरी कलाकार होंगे अभय कुमार सुमन।

कल रात 8 बजे से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। 9 बजकर आप 9:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल रात 10 बजे से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में उस्ताद विलायत हुसैन खान की प्रस्तुति राग गौर मल्हार में। कल रात 10:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रामू का नमस्कार।
1: और सभी श्रोता भाई बहन का राधा के भी नमस्कार। रामू भाई अपनों को नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार और हार्दिक स्वागत राधा बहन। और सब बताइए क्या हाल समाचार है।
1: हाल चाल तो ठीक छे रामू भाई, लेकिन ये जो मौसम में रोज परिवर्तन हो रहा छे, कभी खूब धूप करी दे छे, कभी आंधी तूफान बरसा सब हुआ लगे छे। रहे कारण से की हो छे ना, मौसम में जब है रंग परिवर्तन हो छे तो बीमार होए के खतरा ज्यादा बढ़ी जाए छे, या किसी तरह के इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, आँख में इन्फेक्शन नहीं होए के खतरा बढ़ी जाए छे। तो हमरा से कोशिश करना छे कि है समय में अपना सेहत के और साथ में अपना घर परिवार में जो भी सदस्य छे बाल बच्चा सबके ध्यान रखे के जरूरत छे।
0: बिल्कुल, और इसमें तो एक कदम हम और आगे बढ़ के कहेंगे राधा बहन
1: जी
0: कि सिर्फ अभी के समय में नहीं, हर समय में हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए।
1: हाँ वो तो अच्छा है, लेकिन हाँ।
0: अब लेकिन देखिए कि जैसे धूप है, गर्मी है, तो इससे जो बचाव के लिए जो भी तरीके हैं तो हमारे श्रोता भाई लोग सब जानते भी हैं कि क्या क्या करना चाहिए, तो वो सब तो सतर्कता बरतनी ही चाहिए। अब लेकिन अगर बारिश हो गई तो बारिश का भी अपना अलग ही आनंद है, है कि नहीं?
1: हाँ, हाँ।
0: अब इस धूप से गर्मी से तो बहुत राहत मिल जाता है।
1: मौसम के अपना एक अलग आनंद छे रामू भाई, लेकिन यह छे कि अपना वे टाइम समय पर ध्यान रखना छे, ठीक छे? कहने कि मान लीजिए कभी धूप से एलिए, ठंडा में लिए तो पानी पी लिए, ठंडा पानी पी लिए, तो इसकी वजह से शरद गर्म हो जाए छे।
0: बिल्कुल,
1: तो अपना अपना जो भी हमरा सी के भारत के यही तो खूबसूरती छे कि हर मौसम के एहसास हो छे
0: निश्चित रूप से
1: जी।
0: और देखिए राधा बहन, ऐसे तो हर दिन अपने आप में खास होता है, लेकिन आज भी जो है वो एक बहुत ही खास दिन है
1: जी।
0: आज हम लोग सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं
1: जी,
0: और ये प्रत्येक साल 10 जून को मनाया जाता है, जिसका कि उद्देश्य है कि दुनिया भर में शांति और आपसी समझ को बढ़ावा देना, है ना? और यह दिन इस बात पर भी जोर देता है कि अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं की समृद्ध विविधता मानव जाति की सामूहिक विरासत है राधा बहन, है कि नहीं?
1: जी, जी।
0: और आज पूरा विश्व जो कह सकते हैं हम लोग कि कई समस्याओं से जूझ रहा है,
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: जैसे शांति की बात कर लें हम लोग, या फिर विकास की बात कर लें, विश्वास और शासन में बढ़ती खाई, इस सब से पूरा विश्व जूझ रहा है, है कि नहीं?
1: संवाद बहुत जरूरी छे रामू भाई। आज जो दुनिया में देखे छो कहीं लड़ाई झगड़ा आतंक नफरत सब जे फैलाए रहल छे, जेना कि रूस यूक्रेन इजराइल फिलिस्तीन सब में जैसनो विवाद हो रहल छे, तो गोली चलाना या लड़ाई करना कोई हल नहीं छे, ठीक ना? एकरा में की छे, बात जब करबो तो दीवार गिरे छे, आरो आरो जब बात करे छे तो एक पुल बने छे।
0: और
1: अपना भारत में तो हजारों साल पहले से ही कहलो गेलो छे रामू भाई कि वसुधैव कुटुम्बकम, एकरा मना छे कि पूरे दुनिया एक परिवार छिके। आरो यहाँ योग, आयुर्वेद, बुद्ध धर्म, भारत सब पूरे दुनिया में गेलो छे, और वही बिरयानी, सूफी संगीत बाहर से भारत आइलो छे, तो संवाद बहुत जरूरी छे।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: और इसलिए यही सब कारण है ना राधा बहन की मानवता आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे बढ़ती अस्थिरता और परिवर्तन का भी सामना करना पड़ रहा है
1: जी।
0: एकजुटता, संवाद और सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है अभी, है कि नहीं? और सभ्यताओं के बीच संवाद जो है वो भेदभाव को समाप्त करने, आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देने, और देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने, और इसके साथ ही साथ वैश्विक एकजुटता को सुदृढ़ करने का सबसे प्रभावी तरीका है, जैसा कि अभी आप बताए भी
1: जी,
0: है कि नहीं?
1: जेना कि हम से रोज संवाद करे छे तो हमें पता नहीं चले छे, जब हम जींस पहने छे तो पश्चिमी सभ्यता के संवाद करे छे, जब विदेशी लोग समोसा खाए छे तो भारत से संवाद करे छे,
0: बिल्कुल,
1: के पॉप हॉलीवुड फिल्म, चीनी मोमोज, ये सब बतावे छे कि संस्कृति जे छे मिली का सुंदर बने छे।
0: निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही आपने राधा बहन। इसलिए अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद न केवल मानवता द्वारा साझा किए जाने वाले मूल्यों के प्रति जागरूकता और सराहना को बढ़ावा देता है, बल्कि पारस्परिक सम्मान पर आधारित शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी प्रोत्साहित करता है, है कि नहीं?
1: जी, रामू भाई 2026 के थीम छे अलग हैं पर दुश्मन नहीं
0: जी।
1: तलवार से ज्यादा ताकतवर कलम होई छे, और कलम से ज्यादा ताकतवर संवाद होई छे। अगर हम मसनी एक दूसरा के इज्जत करवे, बात करवे, तो दुनिया में कोई भी जंग कभी नहीं होते। त तो ये लिली मतलब हर चीज के हल जो छे लड़ाई झगड़ा
0: हाँ,
1: नहीं
0: है, बातचीत करके हर समस्या को सुलझाया जा सकता है ना। इसलिए सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो सभ्यताओं की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संवाद, आपसी सम्मान और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है राधा बहन, जिससे कि अधिक सामंजस्यपूर्ण और परस्पर जुड़ी हुई दुनिया को बढ़ावा मिलता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि एक ऐसा मानव परिवार बनाया जा सके जो विविधता से समृद्ध हो, एकजुटता में एक हो और गरिमा और मानवाधिकारों में समान हो, है कि नहीं। और इसलिए सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सभ्यताओं की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पारस्परिक सम्मान और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रदान करता है,
1: जी,
0: है ना?
1: जी।
0: और जिससे एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और परस्पर जुड़ा हुआ विश्व जो है राधाबहन, वो विकसित होता है कि नहीं। आज देखिए संचार की लागत पहले से कहीं कम होने के बावजूद सभ्यताओं का टकराव और सभ्यता की श्रेष्ठता जैसी धारणाएं जो है वो विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा देते रहती है। आज आप कई देशों में देखेंगे कि इन सब मतलब प्रतिस्पर्धा में लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, है ना? इसलिए वैश्विक परिवर्तन और क्षेत्र
1: जना कि ये इसने इस सब कहना हुए चे कि अफवाह पर लोग ज्यादा ध्यान दे चे, ओकरा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना सूझबूझ से अपना की सही चे की गलत से ओकरा से काम लेना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: ये नहीं कि अफवाह कुछ होले ओकरा पर अपना लड़ाई झगड़ा पर उतरी गई।
0: जी, इसीलिए तो वैश्विक परिवर्तन और क्षेत्रीय तनावों के इस दौर में दुनिया को पहले से ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है राधा बहन। मानवता को टकराव नहीं बल्कि समझ और सहयोग की आवश्यकता है कि नहीं। आज लोग देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले से कहीं अधिक विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, और यह सभ्यतागत संवाद में नई ऊर्जा का संचार करता है और भविष्य के लिए

0: असीम संभावनाओं का संकेत भी देता है,
1: जी,
0: है ना।
1: जी।
0: इसलिए मानव सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान और मेलजोल को बढ़ावा देना, साथ ही आपसी ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन एक बेहतर दुनिया और सभी देशों के लोगों के लिए बेहतर जीवन की दिशा में एक अनिवार्य मार्ग है, राधा बहन, है ना।
1: जी।
0: इसलिए सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस न केवल एक आरंभ है, बल्कि हम लोग यह कह सकते हैं कि एक ऐसी कड़ी है जो हर सभ्यता को संवाद में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी करती है,
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल,
0: कि नहीं।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए, ये तो अभी सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे राधा बहन। कार्यक्रम में और भी अच्छी अच्छी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। पहले एक बढ़िया सा शिव भजन से हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

0: जी
1: हाँ, बड़ी बढ़िया भजन सुन लिए हम असनी रामू भाई जी।
0: तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे और भी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे राधा भवन, पहले कुछ जरूरी संदेशों को सुन लेते हैं।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90

0: प्रतिशत तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
3: Canada देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
5: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
7: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
0: Pata hai? दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 km, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: Nexa.
9: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
10: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: जी जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत में। राधा बहन
12: जी,
11: देखिए डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको कि हम लोग दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, वो एक लचीली शिक्षा प्रणाली है जिसमें कि जो भी विद्यार्थी होते हैं वो नियमित रूप से, मान लीजिए कि जो अपने कक्षा में नहीं जा सकते हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उस तरह के विद्यार्थी इस तरह का शिक्षा पा करके उससे बहुत लाभ होता है उन लोगों को, है ना। और जो भी विद्यार्थी हैं वो घर में रह के या अपने कार्यस्थल पर रह के या फिर डिजिटल तरीके से आजकल ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं या फिर पत्राचार के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो इसी विषय पर हम लोग एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से और विस्तार से जानकारी सुनते हैं।
12: ठीक।
13: दूरस्थ शिक्षा का महत्व। भारत प्राचीन काल से अपने सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ अपने अप्रतिम शिक्षण पद्धति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। हमारा गुरुकुल शिक्षण पद्धति नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में प्रसिद्ध थे। मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसान, इत्सिंग जैसे विदेशी यात्रियों ने इन विश्वविद्यालयों की शिक्षण प्रणाली की विशेषताओं को रेखांकित किया, बल्कि उनमें से कईयों ने इन प्राचीन एवं महान भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा भी प्राप्त की। भारत ने प्राचीन काल से शिक्षा को बहुत ही व्यापक अर्थ में लिया है। संस्कृत भाषा में शिक्षा के लिए पर्यायवाची शब्द विद्या है, जो विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। यहाँ जानने को न केवल भौतिक जगत के ज्ञान से तात्पर्य है, बल्कि यह आध्यात्मिक ज्ञान से भी संबंधित है। संक्षेप में, भारतीय मनीषियों ने विद्या को लोक परलोक को जानने का एक सशक्त माध्यम माना था। परिणाम स्वरूप प्राचीन भारत में शिक्षा दूरस्थ प्रकल्प में गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। अरण्य में स्थित गुरुकुल राजा के बच्चों के साथ साथ सभी लोगों के लिए उपलब्ध था। शर्त केवल ये एक था, अपने निवास स्थान से दूर, अपने राजधानी से दूर, ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था तक जंगल में अवस्थित गुरुकुल में समानता की महान भावना के साथ सभी गुरुकुल के आदिवासियों के साथ रहना और गुरुकुल के सान्निध्य में शिक्षा प्राप्त करना। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुकुल की धर्म प्रधान शिक्षा के साथ साथ युद्ध विद्या, शरीर कौशल, रसायन और पदार्थ विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी जैसे धर्मनिरपेक्ष विद्या भी प्रदान किया जाता था। अतः यह हम कह सकते हैं कि भारत में आज के दूरस्थ शिक्षा के विपरीत घर से दूर पर आश्रम में गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली ने भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य दृष्टिकोण से पूरे विश्व में एक महान राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था। मध्यकाल में भी शिक्षा का स्तर ग्राम प्रकल्प तक व्यवस्थित था। अंग्रेजों ने आकर भारतीय शिक्षण पद्धति को आंतरिक रूप से कमजोर और व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में मिथ्यावादी तथा पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण की ओर धकेल दिया। परिणाम स्वरूप भारत का शिक्षित समाज बेरोजगारी, मिथ्याभिमान और भारत की सभी अच्छी बातों का विरोधी बन गया। यह औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति का निर्माण मैकॉले ने किया था। भारत की आत्मा को ही कमजोर कर दिया। आज भी भारत का शिक्षण पद्धति आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी औपनिवेशिक माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाया है। यह हम आप सब जानते हैं कि आधुनिक युग में शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही कारगर हथियार माना जाता है, और ऐसे में गुणात्मक शिक्षा के लिए एकेडमिक इनपुट के साथ साथ विश्वविद्यालयों के आचार्य, इंटर स्तर पर शिक्षकों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों के स्तर तक स्वतंत्र भारत में शिक्षण संस्थानों के एक जटिल पर कारगर अधोसंरचना विकसित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। परिणाम स्वरूप न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय छात्रों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में ही भारत ने नई तकनीक यथा इंटरनेट, कंप्यूटर आदि की उपलब्धता के पूर्व ही पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर से लेकर ओपन स्कूल के राष्ट्रीय बोर्ड का गठन कर शिक्षा की एक प्रभावी दूरस्थ शिक्षण प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित किया है। दूरस्थ शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा छात्रों को स्थान विशेष

0: अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रणाली में अध्यापन शिक्षण सामग्री के रूप में एक रूपता राष्ट्रीय स्तर पर सभी विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाती है। इस प्रणाली की एक और खास बात है कि बिना शिक्षण प्रणाली की गुणवत्ता को प्रभावित किए हुए यह विद्यार्थियों के प्रवेश मानदंड के संबंध में भी काफ़ी उदार है। भारत की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में आज राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालय, शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं तथा विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। दूरस्थ शिक्षण प्रणाली रोजगार में लगे लोगों, अपने निजी दक्षताओं और तकनीकी ज्ञान के अपग्रेड करने का प्रशिक्षुओं को अपनी सुविधा के अनुसार अवसर, समय और शैक्षणिक विकल्प प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956-1960 की अपनी रिपोर्ट में सायंकालीन महाविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम आदि शुरू करने का सुझाव दिया था। 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय शुरू हुआ। 1982 ईस्वी में हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1985 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई, जिसने दूरस्थ शिक्षा का अवसर विद्यालय स्तर तक उपलब्ध करा दिया। सूचना क्रांति और इंटरनेट की गतिशील उपलब्धता ने दूरस्थ शिक्षा को काफ़ी प्रभावशाली बना दिया है। इसके साथ ही स्थानीय और क्षेत्रीय शिक्षण केंद्रों की स्थापना कर दूरस्थ शिक्षा को परंपरागत शिक्षा की व्यक्तिगत ठोस संबंधों के रूप में पाटने का भी प्रयास किया जा रहा है। विजुअल क्लासरूम लर्निंग, इंटरैक्टिव ऑन साइट लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थी देश के किसी भी राज्य में रहकर राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम दूरस्थ शिक्षा के सीमाओं पर बात करें तो यह कह सकते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षकों के व्यक्तित्व, व्यक्तिगत अनुभवों और उनके मानवीय समाज के साथ अंतःक्रियाओं के लिए अर्जित अनुभवों का लाभ नहीं मिल पाता है। अतः दूरस्थ शिक्षा शिक्षार्थियों में अनुकूल व्यक्तित्व विकास में योगदान एक सीमा के बाद नहीं कर पाता है। मशीनीकरण के इस अंधाधुंध दौड़ में दूरस्थ शिक्षण प्रणाली का अपने मानवीय स्वरूप पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली कम खर्चीली, सर्वसुलभ, प्रशिक्षुओं के अनुरूप समय सारणी प्रस्तुत करता है। रोजगार में लगे लोगों, प्रौढ़ों, महिलाओं और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक बेहतर और कारगर विकल्प प्रस्तुत करता है। साइंस और तकनीकी के एक इस समकालीन युग में दूरस्थ शिक्षण प्रणाली का लाभ उठाकर विद्यार्थियों ने सभी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी परचम लहराया है। साथ ही वोकेशनल प्रशिक्षण सामग्री और शिक्षा ने अनस्किल्ड वर्कफोर्स को प्रशिक्षित करने में सफलता पाई है। धन्यवाद
1: जी। निश्चित रूप से दूरस्थ शिक्षण प्रणाली, इस विषय पर इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए वार्ताकार के सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राधा बहन
2: जी,
1: और अब कुछ मौसम की भी जानकारी दे दीजिए
2: जी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्व अनुमान अवधि 10 से 14 जून के बीच जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के और हल्का वर्षा होए के अनुमान छे। 13 जून का भारी वर्षा होए के संभावना छे। अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे। सापेक्ष आर्द्रता भोर में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहे के संभावना छे। अगले दो दिनों तक 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चले के भी अनुमान छे। रामू भाई, तब और कुछ सलाह दे दो अपने किसान भाई सुनी का।
1: निश्चित रूप से राधा बहन
2: जी।
1: और अभी देखिए जैसे ये है कि खड़ी फसल में जो सिंचाई है उसको स्थगित करना है और खाद कीटनाशक का छिड़काव जो है वो आसमान साफ रहने पर ही करना है
2: जी।
1: इसके साथ ही साथ खरीफ मक्का की बुआई केवल आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की खड़ी सड़ी हुई जो खाद है वो प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करना है और इसके साथ ही साथ बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन 60 किलो स्फूर और 50 किलो पोटास का व्यवहार करना है और अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुमान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 गंगा 11 है। और अब तो समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का राधा बहन, तो आइए हम लोग सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम। पारा मेडिकल है पारस।
2: ठीक।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरा मेडिकल है पारस। जी हां, पैरा मेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं, राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। उनकी तरफ से उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप चाहे तो डायल कर सकते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी हम हाँ जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में बताइए।
5: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं।
4: हाँ।
5: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है।
4: जानकारियों का अभाव है। हाँ।
5: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
4: जी,
5: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
4: जी।
5: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
4: जी।
5: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
4: जी,
5: है
4: जी।
5: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
4: बिल्कुल।
5: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
4: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
5: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
4: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?

0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है, और उस जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक और बढ़ ही रही है, मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने को मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए, हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा के ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि अब नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जब आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में, अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा?
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे, जो तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया।

0: प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं, जिनको करियर निर्माण करना है, 1-2-3 साल के अंदर आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें, 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी,
1: फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
2: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का?
2: 2023 से
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
2: जी,
1: में
2: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
2: बिल्कुल, मैं तो पहले ही, इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
2: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए, उसकी इच्छा कहीं भी। नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह है डॉक्टर साहब ने कहा, इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
2: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
2: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है, उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया ऐसा समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
2: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
2: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन,
2: जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
1: अच्छा,
2: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जात नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशनल है जिसको वो समझाता और बताता और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
0: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी, हाँ, जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं, 9155558888, 9155558888, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233 ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: जी तो अभी हम लोगों ने सुना प्रायोजित कार्यक्रम और राधाबहन, देखिए जैसे हम मनुष्य में भी तरह तरह की बीमारी होती है और उसका हम लोग इलाज कराते हैं।
5: जी बिल्कुल।
4: तो हमारे जो भी पशुधन है उनका भी समय समय पर इलाज कराना बहुत ही जरूरी है, बीमारी उनको भी होती है तो उनका ध्यान रखना हम लोगों का ही काम है कि नहीं। तो आइए एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से हम लोग विस्तार से जानते हैं कि पशुओं में कृमि एवं बचाव। वार्ताकार हैं डॉक्टर राजेश कुमार, आइए इनकी बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक सुने।
6: पशुओं के कृमि या अंतः परजीवी एक कोशीय या बहुकोशीय जीव हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन संरक्षण करते हैं। इनका जीवन चक्र जलवायु, आर्द्रता, तापमान, पोषक तत्वों, जीवों की प्रचुरता तथा स्थानीय पशुपालन के तौर तरीकों पर निर्भर करता है। शरीर के अंदर पाए जाने वाले एक कोशीय परजीवी में प्रोटोजोआ या प्रजीवा प्रमुख है। यह दो प्रकार का होता है, पहला जो रक्त में पाया जाता है जिसमें थलेरिया, बबेसिया, ट्रिप्नेसोमा एवं ट्राइकोमोनस इत्यादि आते हैं। इनका संक्रमण किलनी या टिक्स के द्वारा होता है। थलेरिया, बबेसिया, ट्रिप्नेसोमा एवं ट्राइकोमोनस इत्यादि से संक्रमित टिक्स जब स्वस्थ पशुओं को काटते हैं तब ये प्रजीवा स्वस्थ पशुओं के रक्त में प्रवेश पा जाते हैं और क्रमशः थैलेरियासिस, बबेसियासिस या रेड वाटर, ट्रिप्नोसोमियासिस या सर्रा एवं ट्राइकोमोनियासिस या परजीवीय गर्भपातक नामक रोग उत्पन्न करते हैं। इन रोगों से बचाव हेतु किलने या टिक्स के प्रजनन वाले स्थानों को साफ सुथरा रखना, गौशाला के गोबर एवं अन्य गंदगों को गौशाला से दूर रखना चाहिए, कीटनाशक दवाओं जैसे DDT, गैमेक्सेन, 1% मालाथियन या बुपारभाक्यून या साइपरमेथ्रिन इत्यादि दवाओं का प्रयोग कर इन टिक्स को नष्ट किया जा सकता है एवं इन रोगों से बचा जा सकता है। परंतु पशुओं के रोग ग्रस्त हो जाने पर निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क कर उपचार करवाना चाहिए। पेट में पाए जाने वाले प्रजीवा कोक्सीडियोसिस की कई प्रजातियाँ पशुओं में कोक्सीडियोसिस उत्पन्न करती हैं। कोक्सीडियोसिस या खूनी दस्त से ग्रसित पशुओं में उशिष्ट मल के साथ अपरिपक्व रूप में बाहर आते हैं। ये उशिष्ट 2-3 दिन में हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में परिपक्व हो जाते हैं तथा इससे दूषित चारा दाना, पानी या चारागाह के द्वारा ये उशिष्ट दूसरे स्वरूप में पशुओं के पेट में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार इनका संक्रमण हो जाता है। इससे बचाव हेतु पशुओं को सूखी जगहों पर रखना चाहिए तथा वैसे जगहों पर जहाँ खूनी दस्त की अधिकता पाई जाती है वहाँ स्थान को 2% कार्बोलिक एसिड के घोल से उपचार करने पर कोक्सीडियोसिस के उशिष्ट नष्ट हो जाते हैं। परंतु खूनी दस्त हो जाने पर पशु चिकित्सक की सलाह से इनका उपचार करवाना आवश्यक है, अन्यथा पशुओं के बछड़ों की मृत्यु भी हो सकती है। प्रोटोजोआ या प्रजीवा के बाद दूसरा प्रमुख वर्ग मेटाजोआ या बहुकोशीय परजीवी है। इसके अंतर्गत पेट में पाए जाने वाले कृमि आते हैं। इस वर्ग के कृमि का जीवन चक्र प्रायः एक समान होता है। मादा परजीवी अंडे देती है जो मल के साथ बाहर आकर लार्वा के रूप में फूटते हैं। अनुकूल वातावरण पाकर ये लार्वा विभिन्न संक्रमण अवधि के पश्चात खाने पीने के माध्यम से पशुओं के शरीर में प्रवेश पाकर अंग विशेष में अड्डा जमा लेते हैं। मुख्यतः यह परजीवी अपने आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ट्रिमाटोडा या चपटे कृमि, सिस्टोडा या फीता कृमि एवं निमाटोडा या गोल कृमि। ट्रिमाटोडा या चिपटे कृमि पत्ते सा चौड़ा, कुछ लंबा, कुछ शंकु सा कृमि है जिसे फ्लुक्स भी कहा जाता है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरियों के पित्तनली, शिराओं, आमाशय एवं आंतों में पाए जाते हैं। इनमें प्रायः पतले दस्त की बीमारी होती है। इस वर्ग की कृमियों में फैसियोला, पारा एम्फिस्टोम एवं सिस्टोसोमा प्रमुख हैं जिनसे क्रमशः फैसियोलोसिस या लिवर फ्लुक्स, पारा एम्फिस्टोमियसिस या छेरा एवं सिस्टोसोमियसिस या नकला नामक रोग होता है। इस वर्ग की कृमियों के संक्रमण होने पर पशुओं के निचले जबड़े के नीचे सूजन हो जाता है। ट्रिमाटोडा वर्ग के कृमि के संक्रमण से बचाव हेतु अपने पशुओं को वैसे पोखर,

0: क्लोरोथेन का 10 से 15 मिलीग्राम छोटे पशुओं में एवं 75 से 100 ग्राम बड़े पशुओं में देने से लाभ होता है। इसके अलावे ऑक्सीक्लोजनाइड की 10 से 15 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर एवं रेफ्लेक्सोनाइड की 7.5 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर देने से लाभ होता है। इन दवाओं में से किसी एक दवा को नियम पूर्वक साल में 2 बार देने से ट्रिमाटोडा या चपटे कृमि से आप अपने पशुओं को बचाए रख सकते हैं। सिस्टोडा या फीता कृमि समूह के कृमि लंबा एवं फीता के समान होते हैं। यह अधिकतर गाय भैंस के बछड़े, भेड़ बकरियों के मेमने एवं कुत्तों के छोटी आंत में पाए जाते हैं। सिस्टोडा वर्ग की कृमियों में टीनिया, एकाइनोकोकस तथा मल्टीसेप्स प्रमुख हैं, जिनसे क्रमशः टीनिएसिस, एकाइनोकोकोसिस या हाइडेटिडोसिस एवं गिड या भेड़ बकरियों में चक्कर नामक रोग होते हैं। इस रोग से बचाव हेतु मांसाहारियों को खूब पका हुआ मांस देना चाहिए। एकाइनोकोसिस एवं गिड होने पर शल्य चिकित्सा द्वारा ही उपचार संभव है, परंतु टीनिएसिस या फीता कृमि से बचाव हेतु हेक्सोक्लोराथेन नामक दवा का 2 ग्राम छोटे पशुओं में, निक्लोसामाइड नामक दवा का 30 से 100 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर तथा बुनामाइडिन ग्रुप की दवा का 100 से 200 मिलीग्राम खाली पेट में छोटे पशुओं को देने से लाभ होता है। निमाटोडा या गोल कृमि लंबा गोल कृमि गाय भैंस बकरियों कुत्तों सूकरों घोड़ों एवं ऊंट इत्यादि के आमाशय एवं आंत में पाया जाता है। इस वर्ग के कृमि से आमाशय एवं आंत में खरोच हो जाता है तथा पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। अतिसार, पेट दर्द, दुर्बलता, रक्तहीनता इत्यादि निमाटोड या राउंड वर्म से ग्रसित पशुओं के अन्य लक्षण हैं। इस वर्ग की कृमियों में हिमोंकस, एस्केरेसिस, डिक्टोकोलस, ओसोफेगोस्टोमम, ट्राइचुरिस, एकाइनोकोलोस्टोमम, स्ट्रंगाइल्स एवं ऑक्सीयूरिस इत्यादि प्रमुख हैं, जिनसे क्रमशः हिमोंकोसिस, एस्केरेसिस, पैरासिटिक ब्रोंकाइटिस इत्यादि रोग गाय भैंस भेड़ बकरी एवं इनके बच्चे में होते हैं। हुकवर्म से एकाइनोस्टोलोमियासिस या हुकवर्म तथा घोड़ों में स्ट्रंगोलोसिस एवं ऑक्सीयूरिसिस या पिनवर्म नामक बीमारियां होती हैं। पशुओं के मल की जांच से इस प्रकार के कृमियों का पता लगाया जा सकता है। इस वर्ग के कृमि से बचाव हेतु समय समय पर गोबर की जांच करवाना आवश्यक है। इस वर्ग के कृमि रोगों से थायोबेंडाजोल ग्रुप की दवा का 50 से 100 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर, एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल ग्रुप की दवा का 5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर या थायोफिनेट 15 से 30 मिलीलीटर प्रति 45 किलो शरीर भार पर या मोरेंटल टार्ट्रेट ग्रुप की दवा का 5 से 25 मिलीलीटर प्रति 50 किलो शरीर भार पर देने से लाभ होता है। इन जानकारियों के बाद अंत में मैं पशुपालकों को कुछ सलाह देना चाहूँगा, जिस पर अमल करके पशुपालक भाई अपने पशुओं को अंतः परजीवी या कृमि से बचाव कर सकते हैं। पशुओं के साफ सुथरा रहने के स्थान को साफ सूखा हुआ एवं साफ सुथरा रखें। पशुओं के खाने के नाद को जमीन की सतह से ऊपर रखें। पशुओं को स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। साल भर में कम से कम 2 बार बरसात शुरू होने के पहले एवं बरसात के बाद एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल की टिकिया 5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर देना चाहिए। गाय एवं भैंस के बछड़ों को एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल की 150 मिलीग्राम की टिकिया पहले महीने में 1, दूसरे महीने में 2 गोली, तीसरे महीने में 3 एवं चौथे महीने में 4 टिकिया देना चाहिए तथा इसके बाद प्रत्येक वर्ष में 2 से 3 बार कृमिनाशक दवा देना चाहिए। इस प्रकार इन बातों को अगर आप अमल में लाएंगे तो अपने पशुओं को कृमि से बचाए रख सकते हैं।
1: जी, निश्चित रूप से पशुओं में कृमि एवं बचाव, इस विषय पर इतनी अच्छी और विस्तार से जानकारी देने के लिए डॉक्टर राजेश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ ही कुछ पशुपालक भाइयों के लिए विशिष्ट सलाह भी है राधा बहन
2: जी,
1: कि गलघोटू और लंगड़ी रोग से बचाने के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण निश्चित रूप से कराएँ और नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पहले करीब 2 घंटा जो है वो पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला करके पशुओं को देना है ना
2: जी।
1: तो निश्चित रूप से अगर इस तरह से पशुपालक भाई खिलाते हैं अपने पशुओं को तो पशु स्वस्थ भी रहेंगे और वो दूध भी अधिक मात्रा में देंगे, है ना
2: जी।
1: तो चलिए इसी के साथ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे राज्य केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दिल्ली से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिया जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र। 3 प्रस्ताव स्वीकृत। राज्यपाल ने शर्तों के साथ राज्य सूचना आयोग में 4 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को दी मंजूरी। मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति पर बल। राज्यसभा चुनाव में NDA समर्थित परिमल नाथवाणी का नामांकन वैध घोषित। नाम वापसी का कल आखिरी दिन। जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान। राज्य में 3-4 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की संभावना। कई इलाकों में 16 जून तक बारिश के आसार। और रांची के JSCS स्टेडियम में आयोजित JPL के पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक में विकास और जन कल्याण के 3 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में स्थापित किया है। युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए। बीते 12 वर्षों में वुमेन लेड एम्पावरमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा से जुड़ा है। आपने देखा, करीब करीब हर कैबिनेट मीटिंग में हमारे अन्नदाताओं के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम होता ही होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने श्री मोदी को इस ऐतिहासिक कीर्तिमान के लिए बधाई दी है। उन्होंने रांची में प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने हर मोर्चे पर सफलता पाई है।
2: मुद्रा लोन योजना के माध्यम से 25 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। एक गरीब माँ बाप का बेटा प्रधानमंत्री बना है जो गरीबों की चिंता करने का काम विगत 12 वर्षों से किया।

0: केवल 100 रुपए भूख मिटाता था। अब किसानों से पूछे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिव पूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक चेतना तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना भी है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 2 दिनों तक चली जांच और आपत्तियों के बाद श्री नाथवानी के नामांकन को वैध मानते हुए उसे मंजूरी दे दी है। इससे राज्यसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके लिए कुल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रत्याशी कल तक नाम वापस ले सकते हैं, जबकि आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि किसानों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए विभाग कड़े कदम उठा रहा है। केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण पर जोर दे रही है।
2: यूरिया डीएपी जो है और फर्टिलाइजर जो है वो केंद्र सरकार से ही हम लोगों को अलॉटमेंट प्राप्त होता है। वैश्विक स्तर पे युद्ध चलने के कारण भी इन चीजों का निर्यात में कमी आया है। राज्य के किसानों को भी अपेक्षाएं हैं, केंद्र सरकार को किसी न किसी रूप से इन अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली रवाना हुए। राज्य भर में SIR की प्रक्रिया जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि राजनीतिक दलों ने विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए 59,340 बूथ लेवल एजेंट BLA 2 की नियुक्ति की है। इधर झामुमो की ओर से बोकारो में BLA के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने SIR से संबंधित जानकारी दी।
3: अगर किसी भी तरह का उनको परेशानी हो तो उनको सहयोग करने के लिए पंचायत कर्मी भूल का मिलते और BLA 2 के साथ में कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगी। पंचायत कमेटी को सहयोग करने के लिए प्रखंड कमेटी, प्रखंड कमेटी को सहयोग करने के लिए जिला कमेटी और जिला कमेटी को सहयोग करने के लिए केंद्रीय समिति के लोग रहेंगे।
1: हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड का आरा गांव आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी कनेक्टिविटी से दूर है। गांव की मुखिया सुनीता देवी का कहना है कि 2 वर्ष पहले पुल निर्माण को लेकर निविदा हुई थी, लेकिन राज्य सरकार की विफलता के कारण काम शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पुल और पक्की सड़क के लिए क्षेत्र के लोग तरस रहे हैं।
4: पोखरिया से आरा जाने के लिए रास्ता बहुत ही खराब है, जिसमें लकड़ी का पुल बनाया गया है, उसी से आवागमन अभी हो रहा है। यहाँ पे टेंडर लगभग 2 साल पहले हो चुकी है, जो अभी तक कार्य स्टार्ट भी नहीं किया गया है। यह कार्य को तो 2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए, जो अभी बहुत विलम्ब हो रहा है और वहाँ के जनता को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है।
1: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून के अगले 3-4 दिनों में राज्य में प्रवेश करने की संभावना है। केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस अवधि में कई जिलों में आंधी और वज्रपात की आशंका है, जिसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड T20 प्रीमियर लीग का आज से आगाज हो गया। रांची के JSCA स्टेडियम में आज खेले गए पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से पराजित कर दिया। रांची टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए। लक्ष्य हासिल करने उतरी छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम 150 रन ही बना सकी। लीग का दूसरा मुकाबला रात 8 बजे से कोयलांचल सुपर किंग्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच होगा। अब से थोड़ी देर में JPL का औपचारिक उद्घाटन होगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मौजूद रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिया जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र। 3 प्रस्ताव स्वीकृत। राज्यपाल ने शर्तों के साथ राज्य सूचना आयोग में 4 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को दी मंजूरी। मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति पर बल। राज्यसभा चुनाव में NDA समर्थित परिमल नाथवानी का नामांकन वैध घोषित। नाम वापसी का कल आखिरी दिन। जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान। राज्य में 3-4 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की संभावना। कई इलाकों में 16 जून तक बारिश के आसार। और रांची के JSCA स्टेडियम में आयोजित JPL के पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम में सुनिए विधि व्यवस्था और पुलिसिंग पर से राकेश कुमार, जो कि पुलिस उपाधीक्षक और विधि व्यवस्था में है, उनसे भेंट वार्ता और भेंट करता होंगे कुसुमाकर दुबे।
6: श्रोताओं नमस्कार। विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं राकेश कुमार। आप भागलपुर के DSP लॉ एंड ऑर्डर हैं। आपका हम अपने स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं राकेश जी।
7: जी शुक्रिया।
6: और हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आज हमारी बातचीत का जो विषय है वो है विधि व्यवस्था और पुलिसिंग, इससे जुड़ी कुछ बातें करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे श्रोतागण अक्सर सुना करते हैं ये शब्द विधि व्यवस्था, तो ये है क्या? विधि व्यवस्था हम किसे कहते हैं? और समझिए कि पुलिस की भाषा में या आम जनता को सही ढंग से समझा सकें उसके लिए आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे?
7: विधि व्यवस्था से आसे वैसी व्यवस्था से है जिसमें कानून का अनुपालन हो।
6: जी जी।
7: कोई भी गैर कानूनी कार्य ना हो।
6: जी।
7: और समाज में जो अमन चैन कायम है।
6: जी जी।
7: उसमें कोई व्यवधान ना हो।
6: जी।
7: तो जब भी समाज में किसी भी रूप में यदि वहाँ का अमन चैन डिस्टर्ब होता है
6: जी,
7: तो इसका मतलब वहाँ विधि व्यवस्था की समस्या है।
6: जी।
7: मसलन एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए।
6: हाँ।
7: और जनता सड़क पे आ जाती है।
6: जी जी। कुछ लोग घेराव कर
7: देते हैं,
6: कुछ लोग तोड़ फोड़
7: या किसी अपराध से जनित कुछ

0: घटनाएं घट जाएं।
1: जी जी
0: तो जहां भी समाज में अमन चैन प्रभावित होगा वो विधि व्यवस्था की समस्या कहलाएगी।
1: जी, एक जिले में मुख्य रूप से कौन कौन से अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं जो विधि व्यवस्था संभालते हैं?
0: जिले के तमाम पदाधिकारी
1: जी
0: सभी लोग इसके लिए उत्तरदायित्व हैं
1: जी
0: और सभी की जवाबदेही है कि विधि व्यवस्था का संधारण करें।
1: बनी रहे, लेकिन एक पुलिस विभाग से एक विशेष अधिकारी को जैसे आपको इसके लिए लगाया जाता है?
0: कह सकते हैं, लेकिन
1: जी
0: पुलिस में निचली पंक्ति से लेके सभी पंक्ति के
1: जी
0: लोग, सभी लोग इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हैं।
1: जी तो वहाँ पर एक एकदम निचली व्यवस्था, जैसे मान लीजिए आपके कांस्टेबल हैं, तो उनकी क्या भूमिका होती है जब विधि व्यवस्था की कोई समस्या आती है तो?
0: एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा कि यदि एक ट्रैफिक सिपाही है
1: जी
0: और यदि वो किसी चौराहे पे खड़ा है
1: जी
0: और यदि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करेगा
1: जी
0: तो वहाँ की जो व्यवस्था है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चलेगी। यदि वो अपने कर्तव्य में थोड़ी सी भी कोताही बरतेंगे तो वहाँ की व्यवस्था जो है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की, वो
1: जी
0: गड़बड़ हो सकती है। तो
1: हाँ
0: इसमें वहाँ उनकी भी भूमिका है।
1: जी, तो ये तो एक अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग मिल के शहर में अमन चैन कायम रखने की कोशिश करते हैं। और अब आपसे एक व्यक्तिगत सा प्रश्न कि आप इस शहर में कब से हैं?
0: इस शहर में मैं जुलाई 2014 में मेरी पदस्थापना हुई है,
1: जी,
0: तब से मैं हूँ।
1: और तब से ये विधि व्यवस्था काम देख रहे हैं, तो आप पहले भी कहीं रह चुके हैं इससे पहले पोस्टिंग आपकी?
0: जी, खुशी की बात है कि भागलपुर ज़िला में मेरा प्रोवेशन भी यहीं रहा है।
1: अच्छा
0: अक्टूबर 2011 से जून 2012 तक मैं इसी ज़िले में
1: जी
0: अपनी
1: जी
0: सेवाएं
1: जी
0: दी थी एज ए
1: जी
0: प्रोवेशनर।
1: जी
0: उसके बाद मेरी पदस्थापना जो है वो हुई मधुबनी ज़िले में फुलपरास अनुमंडल में,
1: जी
0: तदुपरांत 1 साल की सेवा हमने वहाँ दी।
1: जी
0: उसके बाद खगड़िया ज़िले में
1: जी
0: गोगरी अनुमंडल में SDPO के रूप में कार्यरत था।
1: जी
0: तत्पश्चात फिर भागलपुर में पुनः सेवा करने का मौका मिला।
1: जी तो उन जगहों से और यहाँ की जब आप तुलना करते हैं, लगभग 1 वर्ष आपको होने को है यहाँ, आपको कैसा लगता है यहाँ? आम तौर पर विधि व्यवस्था के बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगे? कैसा महसूस होता है यहाँ अन्य जगहों की तुलना में?
0: मुझे लगता है भागलपुर अपने आप में एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन है।
1: जी,
0: यहाँ पे बिल्कुल बहुआयामी और बहुस्तरीय तरीके की चीज़ें सीखने और समझने को मिलता है। चाहे आप विधि व्यवस्था की बात करें, चाहे अपराध नियंत्रण की बात करें, या ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, या फिर कॉमनल एंगल से बात करें, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट पुलिसिंग का एक इंस्टीट्यूशन है भागलपुर। तो ये सौभाग्य की बात है, यहाँ पदस्थापना हुई मेरी और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है।
1: जी, तो यहाँ पर आप व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास करते हैं कि अमन चैन बना रहे?
0: मेरा प्रयास दो स्तरीय है, एक समाज के स्तर पर, एक विधि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के स्तर पर। समाज स्तर पर ये है कि मेरा हमेशा प्रयास होता है कि पुलिस और जनता के बीच की जो दूरियां है, जो
1: जी
0: खाई
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: उसको मैं किस प्रकार कम कर सकूँ। इसके लिए मेरा माध्यम खेल होता है। खेल के
1: अच्छा
0: माध्यम से मैं लोगों से जोड़ता हूँ। कुछ
1: जी
0: सामाजिक कार्य है,
1: जी
0: गरीब बच्चों के लिए या फिर बेसहाराओं के लिए कुछ हम लोग के स्तर से प्रयास किए जाते हैं कि उनके जीवन में कुछ गुणात्मक परिवर्तन आए।
1: जी
0: तो इन माध्यम से जनता और पुलिस की जो दूरी है उसको कम करने का प्रयास करता हूँ। और विधि व्यवस्था में जो अपराध है, अपराधियों के प्रति नियंत्रण लगाने के लिए हम लोग हमेशा सचेत रहते हैं।
1: जी आप किस खेल से व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हैं?
0: जी, मैं व्यक्तिगत रूप से बैडमिंटन और क्रिकेट से यहाँ जुड़ा हूँ।
1: अच्छा, तब तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं जाके मैदान में खेलते होंगे।
0: जी, मेरा सुबह का समय जो है सैंडिस कंपाउंड में
1: अच्छा,
0: कुछ घंटे
1: वहीं
0: मेरा व्यतीत होता है।
1: बैडमिंटन में भी और थोड़ा क्रिकेट में भी,
0: जी
1: तो कुछ लड़कों को लेके आपने टीम भी बना ली होगी,
0: जी जी
1: तो उससे मैच वगैरह भी होते रहते हैं आपस में या दूसरी टीमों से कुछ?
0: नहीं, बेसिकली ये मैच तो एक खिलाड़ियों के स्तर पे है। अमूनन होता ये है कि हम जिस थाना क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों
1: हाँ
0: वर्सेस प्रशासन का मैच रखते हैं, तो
1: अच्छा
0: वहाँ पे उनका अच्छा पार्टिसिपेशन होता है
1: जी जी
0: और
1: जी
0: वो सहज रूप से हमसे जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि
1: जी
0: पुलिस प्रशासन हमारे बीच का अंग है। जो एक दूरी है, एक जो झिझक है पुलिस के
1: जी
0: प्रति, वो उनके अंदर से खत्म हो जाती है।
1: जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आमतौर पर देखा जाता है कि जो

0: शहर के विभिन्न थाने हैं, तो वहाँ आम लोग जाने से कतराते हैं, लोग मतलब एक डरते हैं, एक माहौल भय का है। इसमें आपको क्या लगता है, कैसे माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है और इसके लिए क्या होना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि काफ़ी प्रयास किया जा रहा है इस दिशा में कि पुलिस जो है वो संवेदनशील रहे,
0: जी
1: और काफ़ी इसमें सकारात्मक जो है इसमें सुधार भी हुआ है। कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे पुलिस पर्सनल हैं
0: जी
1: जिनको और सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है,
0: जी
1: उस दिशा में हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं,
0: जी
1: और ये तभी संभव है जब हर वो संवेदनशील व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में हो दूसरे व्यक्ति को संवेदनशील बनाए। सिर्फ ट्रेनिंग के माध्यम से ये संभव नहीं है,
0: नहीं है, एक
1: उसमें सेंसिटाइजेशन उसके अंदर वो डालना होगा, उसे समझाना होगा।
0: जी, आप जैसे युवा और कर्मठ पदाधिकारी की भूमिका यहाँ उभर के आती है। एक बात और देखना होगा कि प्रायः हमारे जो कांस्टेबल हैं उनके रहने की जो दशा है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, उनके क्वार्टर प्रायः मेंटेन नहीं होते हैं, बरसात में तो चूते रहते हैं, खाने पीने की भी दिक्कत होती है, इसलिए वो स्वभाव से उग्र हो जाता है और थोड़ा एक अजीब सा व्यवहार करने लगता है। तो इसमें भी पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों की कुछ भूमिका हो सकती है कि उनको रहने सहने की ठीक ठाक व्यवस्था दी जाए, ड्यूटी के घंटों का ख्याल रखा जाए कि ज़्यादा लोड नहीं पड़े उन पर। और अभी हाल में तो कुछ भर्तियों का रिजल्ट आ गया है, उसके बाद क्या स्थिति होने वाली है?
1: इस दिशा में काफ़ी प्रयास हो रहा है,
0: जी
1: और जो व्यवस्थाएं थी उसमें काफ़ी गुणात्मक सुधार भी हुआ है,
0: जी
1: और हम मानते हैं कि इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है,
0: जी
1: लेकिन ऐसा नहीं है, पहले से बहुत सुधार हुआ है।
0: एक ट्रैफिक पुलिस पर कितने घंटे की ड्यूटी उसकी रहती है, कांस्टेबल की जो ट्रैफिक में होता है आमतौर पे आप विधि व्यवस्था संभालने के लिए?
1: अमूनन तो 8 घंटे की ड्यूटी दी
0: जी
1: जाती है, पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एक पुलिस पर्सनल जो है
0: जी
1: उसका ड्यूटी का आवर कोई नहीं, ही इज ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प।
0: अच्छा, जहाँ भी जब भी ज़रूरत पड़े। तो भागलपुर ज़िले को कुछ नए पुलिस के जवान मिलेंगे, तो उसके बाद तो फिर ट्रैफिक की भी दशा को सुधरनी चाहिए और पुलिस वालों की भी कुछ सुधरनी चाहिए, कुछ भार कम होगा क्या?
1: हाँ जी, ठीक कह रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है यदि वो फुलफिल हो जाता है, मैन पावर यदि बढ़ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट सर की प्लेसिंग पे दिखेगा ही।
0: जी, यहाँ पर भागलपुर में वैसे तो आप लोगों ने विधि व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत कुछ किया और हमेशा संभालते हैं, यहाँ वैसी कोई बड़ी समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती, जैसा आपने कहा ही है बहुत सेंसिटिव है, उसके बावजूद तो आप लोगों की भूमिका सराहनीय है। लेकिन एक क्षेत्र है ट्रैफिक का, वहाँ प्रायः दिक्कत आती है, आमतौर पर लोग कहते हैं अरे भागलपुर शहर अब गाड़ी लेकर चलने लायक नहीं रहा, मतलब इस टाइप की ये बन जाती है माइंडसेट, और कभी कभी आए दिन हम देखते हैं ट्रक ने फलां को रौंद दिया, ये किया, तो इसमें कुछ सुधार होगा आने वाले समय में?
1: देखिए, मुझे लगता है ट्रैफिक व्यवस्था को एक बहुआयामी स्तर से देखना होगा।
0: जी,
1: जिस प्रकार की भागलपुर में सड़कें हैं,
0: जी,
1: इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे
0: जी,
1: कि जितना इसका चौड़ीकरण होना चाहिए
0: हाँ,
1: वो है नहीं,
0: है नहीं।
1: जो डेंसिटी है जनता की और यहाँ के व्हीकल्स की, जो मूवमेंट की है,
0: जी,
1: हर घर व्यक्ति के पास गाड़ी है,
0: हाँ,
1: और सड़कें तो उतनी ही है,
0: जी
1: मूवमेंट हो रही है, मतलब छोटी छोटी आप लोगों ने ट्रेंड बना लिया कि यदि उन्हें 100 मीटर की भी दूरी तय करनी है तो बाइक लेकर जाएंगे, सही। तो इसमें फुल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन तो काम कर ही रही है, साथ साथ यहाँ की जो जनता है
0: जी
1: उनको भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, जो यहाँ के हमारे दुकानदार भाई हैं
0: जी
1: उनको
0: जी
1: भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि व्यवस्था के वो भी पार्ट है, उस व्यवस्था में वो भी अपना सहयोग दे।
0: हाँ, वो सड़क पर दुकानें
1: एक
0: लगा देते
1: डिसिप्लिन
0: हैं।
1: वे में यदि हर व्यक्ति रिफ्लेक्ट करेगा तो उसका असर सब जगह दिखेगा।
0: जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिना जनता की भागीदारी के व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती है, और अगर विधि व्यवस्था अच्छी रहती है, शांति बनी रहती है, निश्चित रूप से ये जनता की भूमिका है, लेकिन ट्रैफिक वगैरह वगैरह सब संभालने के लिए पुलिस के साथ मिल के काम करना। अगर आप मान लीजिए कोई आता है आपके पास किसी शिकायत को लेकर, तो वक्त देते हैं किसी आदमी को, उपलब्ध रहते हैं? आपका कार्यालय कहाँ पर है?
1: मेरा कार्यालय कोतवाली में है,
0: अच्छा,
1: और हमारा नंबर सभी जगह उपलब्ध है, किसी भी वक्त रात के 2 बजे 3 बजे जब भी ज़रूरत होता है लोग मुझे कॉल करते हैं,
0: हाँ
1: और हम
0: हाँ
1: उनकी बात सुनते भी हैं, और कई बार दफ़ा ऐसा हुआ कि पर्सनली हम रिस्पॉन्ड भी मैंने किया है।
0: देर से भी जाना, रात में भी जाना पड़ता होगा,
1: जी
0: कहीं
1: जी जी
0: अचानक जाना पड़ता होगा, तो एक बार फिर से नंबर बता दें हमारे श्रोताओं के लिए, जो आपसे चाहें तो कभी भी

0: मिल लें, फोन कर लें।
1: जी मेरा नंबर है 9431
0: जी
1: 822601।
0: जी तो 9431822601
1: जी।
0: श्रोताओं आपने ये नंबर सुना, आपको जैसा कि श्रीमान ने बताया, जब भी कभी आवश्यकता हो और लगे कि आपको पुलिस की ज़रूरत है, मदद चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राकेश जी उसे उठाएंगे और आपकी भरपूर सहायता करेंगे, जैसा कि आपने बताया है। तो राकेश जी, अब पुलिसिंग से संबंधित बहुत सारी बातें हुई विधि व्यवस्था में आपके प्रयास से भी, अब हम चाहते हैं अपने श्रोताओं को कुछ आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाए। आप युवा हैं, आपकी आपका व्यक्तित्व बहुत ही जिसे कहेंगे आकर्षक वो है, और उम्र कम है, तो आप ये बताएं कि आपने बिहार लोक सेवा की परीक्षा कब पास की थी, आपने कुछ चर्चा भी की 2010 की।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विशेष भेंटवार्ता में विधि व्यवस्था और पुलिसिंग पर श्री राकेश कुमार से भेंटवार्ता भेंट करता थे कुसुमाकर दुबे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

This is All India Radio, the news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया। देश विदेश के नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को DBT के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में एक पूर्व IAS अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली समेत 14 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है, जो एक रिकॉर्ड है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। गरीब कल्याण एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण हेतु उनके नेतृत्व में हुए कार्यों के लिए आभार व्यक्त करता है। उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सराहना करता है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, तो सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था, एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में श्री चौधरी ने कहा कि उनके कार्यकाल में भारत के साथ साथ बिहार ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी बिहार को श्री मोदी का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्र भारत के दीर्घकालीन प्रधानमंत्री होने का कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि करोड़ों देशवासियों के विश्वास की जीत है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने भी प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी मौजूद हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात

0: है तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
0: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। श्री चौधरी ने नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यह राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर महीने की 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी।
3: बिहार में आज लगभग 1 करोड़ हमारे जो दिव्यांग जन है, विधवा बहने हैं और जिनको भी सभी तरह का पेंशन सरकार के द्वारा देने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक महीने के 10 तारीख को ये इंश्योर करना है कि हमारी जो बहने हैं, चाहे वृद्धजन हो, विधवा बहने हो या दिव्यांग जन, सबको पेंशन हर हालत 10 तारीख को उनके खाते में दे देना है।
2: मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लोगों से शीघ्र आवेदन करने तथा आधार लिंक नहीं होने के कारण पेंशन से वंचित लाभुकों से जल्द आधार लिंक कराने की अपील की। राजस्व महाभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से कल से शिविर का आयोजन किया जाएगा। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि ये शिविर सभी हलका में 17 जून तक आयोजित होंगे।
4: बिहार के अंदर जो करीब 46 लाख लंबित आवेदन बचे हुए हैं और उसके लिए एक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। 11 जून से लेकर 17 जून तक ये विशेष अभियान राजस्व विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग, पोर्टल पर अपलोडिंग और निष्पादन का अभियान होगा और इस कार्य को अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में गूगल इंडिया के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि GCC नीति के तहत गूगल को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पटना में बिहार राज्य भंडार निगम में नियमित नियुक्ति प्रक्रिया के तहत PCDO पद पर चयनित 15 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वर्ष 1958 के बाद पहली बार निगम में नियमित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और बुडको के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास 11,53,00,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई थी। इकाई ने इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने समस्तीपुर जिले के राजचक बहाउद्दीन ग्राम पंचायत के मुखिया सियाराम राय को 1,20,000 रुपये रिश्वत देते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुखिया शिकायतकर्ता शिक्षक से निलंबन समाप्त करने के एवज में घूस दे रहा था। इधर ब्यूरो की टीम ने गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र से चौकीदार मनीष कुमार को 9,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चौकीदार एक केस में नाम हटवाने के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के टेढ़ा गाछ में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली समेत राज्य के 14

0: जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
1: राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेज गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान एवं वैशाली जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: अररिया नगर थाना क्षेत्र के कुसियार गांव के पास NH-57 पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 अन्य घायल हो गए। दरभंगा जिले के कीरतपुर प्रखंड में कोसी नदी में एक नाव पलट गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया। देश विदेश के नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को DBT के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में एक पूर्व IAS अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली समेत 14 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

आकाशवाणी एट 90 आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
1: बक्सर जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए बक्सर जिला प्रशासन ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी साइला ने बैठक कर अधिकारियों को आम लोगों, श्रमिकों, बच्चों, पशुओं को गर्मी में बचाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, स्वास्थ्य संस्थानों में कूल रूम की व्यवस्था करने को कहा गया है। मजदूरों के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक काम का रोक लगाने, पेयजल, ORS और शेड की व्यवस्था सूचित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है ताकि आम राहगीरों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही लू और डिहाइड्रेशन जैसे गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जिले के आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों जिला प्रभारी मंत्री नंद किशोर राम और जिलाधिकारी साहिला ने सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। चिरावनपुर, रामपुर, कला और तेरा पंचायत में आयोजित शिविरों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक माह प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इसमें राजस्व, पेंशन, राशन, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि, आवास से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिकायतों के निपटारे का लक्ष्य 30 दिनों के भीतर रखा गया है।
2: महीने के हर पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में किया जाएगा। हम लोग ये अपील करना चाहते हैं सभी जिलावासियों से कि वो बढ़ चढ़कर सहयोग शिविर में उपस्थित हों, भाग लें और उनकी जितनी भी शिकायतें हैं, न केवल शिकायतें बल्कि अगर वो कोई सुझाव भी अगर सरकार को देना चाहते हैं तो सहयोग शिविर के माध्यम से दिए जा सकते हैं।
1: जिले के डुमराव प्रखंड के नुआ पंचायत और ब्रह्मपुर प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। शिविर का उद्घाटन ऊर्जा सचिव अजय यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बक्सर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 26 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सूचना प्रणाली, CCTV कैमरे, प्लेटफार्म विस्तार, वायरलेस ट्रैक और क्विक वाटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिव्यांग जन अनुकूल व्यवस्था, रैप और आधुनिक शौचालय के निर्माण कराए जाएंगे। जिले के डुमराव स्थित वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय में स्टार्टअप और GST को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को व्यवसाय शुरू करने की कानूनी प्रक्रिया, कर व्यवस्था एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त सचिव तेजकांत झा ने GST नियमों की जानकारी दी। निबंधक असित कुमार सिंह ने कंपनी पंजीयन प्रक्रिया को समझाया। वहीं जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक ज्योत्सना वर्मा ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 और युवाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने छात्रों को रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। राज्य सरकार के ऊर्जा सचिव अजय यादव और जिलाधिकारी साहिला ने बीते दिनों बक्सर थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्लांट की कार्यप्रणाली, बिजली उत्पादन क्षमता, तकनीकी व्यवस्था, सुरक्षा मानकों की व्यवस्था समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मशीनों की स्थिति, उत्पादन की प्रक्रिया और संचालन व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया। जिला नियोजनालय की ओर से आगामी 27 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त श्रम भवन परिसर में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक यह कैंप लगेगा। इसमें कई निजी कंपनियां शामिल होगी। मेले के विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 395 पदों पर भर्ती की जाएगी। 10वीं, 12वीं और ITI डिप्लोमा, स्नातक, बीटेक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न राज्यों में नौकरी का अवसर मिलेगा। जिले में आगामी बाढ़ और सुखाड़ से निपटने की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। प्रभारी सचिव अजय यादव ने बैठक के दौरान नाव की जांच, गोताखोरों की सूची और राहत सामग्री एवं आपात सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जल निकासी, घाट सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। बक्सर जिले में बकरीद का पर्व शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक माहौल में सम्पन्न हो गया। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या में विभिन्न दरगाहों और मस्जिदों में पहुंचे और सामूहिक रूप से ईद उल जहा का नमाज अदा की। नमाज अदा करने वाले लोगों ने दूसरे को गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी और अमन चैन, भाईचारे की दुआ मांगी।
0: अभी आप सुन रहे थे बक्सर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शिखर।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं सुनील कुमार मिश्र। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में इनसे सुनते हैं गोपाल दास नीरज का लिखा ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार थे सुनील कुमार मिश्र। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में सुने नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में फिल्म धड़कन का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रमण का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं फैज़ अनवर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
1: श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में चलिए बढ़ते हैं आगे और अब सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में फिल्म दिल तो पागल है का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा है इस गाने को उत्तम सिंह ने।

0: बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: श्रुता और रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं शान और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म एक विवाह ऐसा भी से ये गाना, जिसके बोल और संगीत दोनों हैं रविंद्र जैन के।

श्रोताओं, रजनी गंधा कार्यक्रम में अब आइए अगला गाना सुनते हैं। आनंद राज आनंद की आवाज में फिल्म हद कर दिया अपने से। इस गाने के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है खुद आनंद राज आनंद का।

0: श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, फिल्म हेलो ब्रदर से सलमान खान और अलका याग्निक की आवाज में।
1: मैं तोड़ता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार और कार्यक्रम चर्चा का विषय हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज

0: नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या

0: 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत

0: in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वजीर आजम बनने पर वजीर आजम मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। वजारत दिफा पैरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफे के लिए 20 एडवांस्ड जैमर्स खरीदेगी। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दिलाया कि मुल्क की 140 करोड़ शहरियों की उमंगों को यकीनन पूरा किया जाएगा और जोर देकर कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के एतमाद को मुस्तहकम किया है। जनाब मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के आवाम ने कांग्रेस की एतमाद शिकनी के बाद एनडीए सरकार में अपना एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क के आवाम ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज रफ्तार से होती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला जाना इस बात का इजहार है कि एनडीए की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और उनकी सिमत सही है।
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि ये आवाम की पुख्तगी और शऊर का सबूत है कि उन्होंने मुझे इतने तवील अरसे तक अपनी खिदमत करने का मौका फराहम किया।
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे, इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी विकसित भारत का ख्वाब देख रहा है और ये ख्वाब अब किसी एक फर्द, हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत की इक्तिसादी और ढांचा जाती इस्लाहात नजरियाती यकीन का नतीजा हैं, न कि सियासी मजबूरी का।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण।
1: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर मुसलसल खिदमात अंजाम देने का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद हुई थी। करारदाद पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये एक तारीखी खराज तहसीन है। मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मोदी सरकार के विजन पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी काबीना ने उस करारदाद को मंजूरी दी है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगातार मुद्दत के लिए सबसे तवील अरसे तक फरायज अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर सताइश की गई है। बतौर वजीर आजम मजमुई तौर पर 4,399 दिन तक लगातार खिदमात अंजाम देते हुए जनाब मोदी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 4,398 दिन तक फरायज अंजाम दिए थे। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह करारदाद मुल्क के तहीं जनाब मोदी के लगातार खिदमत में तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है और कई अहद बस्तगियों और हुसूलियाबियों को उजागर करती है। अवाम की भलाई के तहीं हुकूमत की तवज्जो को उजागर करते हुए यह करारदाद इस बात को भी उजागर करती है कि गरीब को हुक्मरानी में मरकजी हैसियत हासिल है और ये फराहम की गई खिदमात के गैर मुतवक्के पैमाने की भी अक्कासी करती है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस दौरान मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी दी जो कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर का अहाता करेगी। इस प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर का हो जाएगा जिससे हवाई अड्डे के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और आवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
3: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के 2 बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क्यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंद डाल रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के अवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वजीर आजम मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगे मील से वजीर आजम मोदी की फर्ज शिनासी के साथ खिदमत और क्यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वजीर आजम मेड फ्रेडरिसकिन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने बरसों से भारत की इकतसादी और तरक्याती पेशरफ की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वजीर आजम टोनी एबॉट ने कहा कि भारत ने वजीर आजम मोदी की क्यादत वाली सरकार के तहत बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजली और सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी लाई है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाई के, पपुआ न्यूगिनी के वजीर आजम जेम्स मरापे और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने भी वजीर आजम मोदी की बदलाव की हुक्मरानी, आलमी खिते जुनूब के लिए उनकी कोशिशों और सबकी शमूलियत और इकतसादी एतबार से गोनागोनियत वाले भारत के विजन को सराहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

0: विकास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोबा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन।
2: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा नए कारोबारी अफराद ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज से फ़ायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज़ मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोज़गार और खुद इन्हिसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोज़गार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोज़गार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबार ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तकरुलनामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप्स कायम किए गए हैं, जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। पीएम सेतु स्कीम के तहत 1,000 IITs की जदीदकारी के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम PLI के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमूई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है, जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा टर्नओवर का अंदाज़ा है। मंजूरशुदा दरख्वास्त गुजार PLI स्कीम के अहम शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें मैनमेड फाइबर, MMF फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं, जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 770 करोड़ रुपए के कर्ज जात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निज़ाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाज़ों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वजीर आजम बनने पर वजीर आजम मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई स्कीम की

पिछले दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
2: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ये कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत

0: की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, PM किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
0: देखिए, जो केंद्र सरकार

0: जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से, जो हेल्प आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म एमएसपी रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने एमएसपी को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हुई। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर आप देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, सीधे एक एक व्यक्ति के

0: और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सब से बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा हुआ पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधा दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में,

0: हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र के लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कुनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापिस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र जो राम मंदिर का अयोध्या में

जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था।

0: गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदल कर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भारत, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है आनंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद,
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के किसकी श्रृंखला की 10वीं कड़ी में आतंकवाद के प्रति भारत की नई नीतियों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ विशेष

जी हाँ श्रोताओं, इसी के साथ चलिए कार्यक्रम बढ़ते हैं आगे और अब सुनते हैं फिल्म हिमालय की गोद में से मुकेश कुमार की आवाज़ में ये गाना। इस गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महबूब की आवाज़ में फिल्म छाया से ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं शैल चौधरी ने, संगीत है राजेंद्र किशन का।

जी हाँ श्रोताओं, इसी गाने के साथ चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अजनबी का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है आर डी वर्मन का।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

जी हाँ दोस्तों, इस गाने के बाद बढ़ते हैं आगे और अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गाना।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
3: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़

0: ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place.

0: is at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
1: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.